मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। सुबह के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। जल्दी से स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

और सबेरा हो गया है। चलिए उठिए, जागिए, अपनी नींद को त्यागिए, आंखें खोलिए और फटाफट से ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ। और उससे भी पहले आभार व्यक्त कीजिए उस परम पिता परमेश्वर का कि उसने आपको एक नई सुबह दी है, एक नया अवसर, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें, नई आशाएं अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो पूरे मनोयोग के साथ, पूरे उत्साह के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए स्वागत कीजिए इस बहुत ही खूबसूरत सी सुबह का, आभार व्यक्त करते हुए अपने इष्ट, अपने आराध्य का। और फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, तो आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले

साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्कार लखनऊ, और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रमों को। अपने नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में, नमस्कार लखनऊ इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ हैं। और तो आज की जो जानकारी है, सबसे पहले वो कृषि से संबंधित है। तो कृषि चर्चा के अंतर्गत आज का जो विषय है वो है नए बाग लगाने की तैयारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर, और आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सघन बागवानी की क्या कुछ संभावना है, और इसकी योजना और रेखांकन में क्या कुछ करें किसान भाई इस समय?
2: किसान भाइयों के लिए जिस तरह से हमारी दिन प्रतिदिन एक तरह से जो हमारा जोत है वो लगातार घटता जा रहा है, और आम तौर से जो बागवानी की फसलें हैं, आम का बाग हो, लीची हो, अमरूद हो, ये माना जाता है, आम तौर से किसान भाई ये समझते हैं कि जिसके पास बड़ी जोत है वही इनकी खेती कर सकता है, वही इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए एक तकनीक विकसित की गई है, सघन बागवानी। बड़ी जोत का भी इसको कर सकता है, यदि छोटी जोत है वो भी इसका फायदा उठा सकता है और इससे अच्छी तरह से लाभ ले सकता है। जहाँ तक सघन बागवानी है, नाम से ही इंगित है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या अधिक रखी जाती है, तो ये तरह तरह के प्रयोग किए गए हैं, और उन प्रयोग करने के उपरांत ये पाया गया कि हम किस तरह से सघन बागवानी कर सकते हैं। ऐसी किस्मों का चयन करते हैं जो छोटी रहें, जो ज़्यादा वृद्धि ना हो, फैलाव कम रहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उसमें लगाए जा सके। ये इस सिद्धांत पर आधारित रहती है कि हम उसका जितना सरफेस एरिया है, जो फलत का क्षेत्रफल है, वो किस तरह से अधिक कवर कर सकें। और साधारण तौर से आप जब आप देखेंगे, जैसे आम का पेड़ यदि आपका 40 फीट ऊंचा है, अगर 40 फीट ऊंचे से आप फल तोड़ते हैं, किसी भी तरह से ऊपर से फल गिर जाता है तो चोटग्रस्त हो जाएगा और वो खराब हो जाता है। लेकिन यदि वही फल हम 2 मीटर के ऊपर से तोड़ते हैं तो हम अच्छी तरह से उस फल को तोड़ सकते हैं और आपके सभी फल जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें हम पौधों की किस्मों का भी ध्यान रखते हैं, और इसके साथ साथ हम उसका फैलाव, उसमें कटाई छटाई इसकी व्यवस्था करते हैं, तभी हम उसको ये बनाते हैं। अन्यथा अगर आप ये काम उसमें नहीं करेंगे तो वो सघन बागवानी नहीं, फिर वो घने जंगल की तरह से बन जाता है और उसमें फलत की समस्या आ जाती है, फलत उसमें नहीं हो पाती है। पहले ये सिद्धांत था कि जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही फलत अधिक होगी, लेकिन पौधे जैसे ही बड़े होते गए और उसमें बहुत घने होते चले गए तो उसमें अंधेरा रहने लगा, तरह तरह के इंसेक्ट पनपने लगे, और उस घने अंधेरे के कारण उसमें फलत की समस्या हो गई और उसको उपज अच्छी तरह से नहीं मिल पाती थी।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भी सघन बागवानी की योजना है तो किसान भाई शुरुआत में क्या कुछ करें इस समय?
2: किसान भाई जैसे कोई बाग लगाना चाहता है, आम या अमरूद, इस तरह से बाग लगाने के लिए वो पहले से ही डिसाइड कर ले कि उसको किस तरह का बाग लगाना है। यदि वो सघन बागवानी में करना चाहता है, उदाहरण के तौर पर यदि वो अमरूद की सघन बागवानी में करना चाहता है, तो अमरूद के अंतर्गत 3 तरह के स्पेसिफिकेशन या डिस्टेंस मानक दिए गए हैं।

0: पहला नॉर्मल है जो 6 × 6 मीटर पर पौधे लगाए जाते हैं, दूसरा 3 × 3 मीटर पर है, तीसरा एक इसको मिड ऑर्चर्डिंग कहते हैं,
1: यानी अति सघन
0: अति
1: बागवान।
0: सघन बागवानी, इसमें 2 × 1 मीटर पर। ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे आपने देखा होगा पार्क के चारों तरफ जैसे हैज बनी रहती है, इस तरह से है। और एक छोटा सा किसान यदि 1 एकड़ से कम भी उसकी जोत है तो वो इसको आप बड़ी अच्छे खूबी तरीके से कर सकता है। और इसके अंतर्गत नवीन तकनीकी का जिसमें ड्रिप इरिगेशन और से फर्टिगेशन का भी काम करता है तो बहुत अच्छा उससे फ़ायदा वो उठा सकता है। अमरूद की जो फसल है वो सघन बागवानी में सबसे सफल रही है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सघन बागवानी की योजना और रेखांकन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो
0: किसान भाई, मेरा मोबाइल नंबर है 9415520162, 9415520162, 94-155-20-162।
1: चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या कुछ कहना चाहते हैं किसान बागवान भाइयों बहनों से?
0: सघन बागवानी से एक छोटी जोत वाला भी अपने सपने पूरे कर सकता है बागवानी के।
1: तो डॉक्टर आर के तोमर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सघन बागवानी की योजना और रेखांकन कैसे करें बागवान भाई बहन इस समय, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कृषि चर्चा में आज नए बाग लगाने की तैयारी के विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। और अब नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, समय हो गया है एक बढ़िया से उत्तम से विचार का। तो आज का सुविचार है प्रेम।
3: जिसमें ऊंचा आदर्श और शुद्धता हो वही सच्चे प्रेम के योग्य होता है। भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, सभी संबंधों में यदि प्रेम सत्य है तो वो एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाला, आत्मा को उन्नत करने वाला होना चाहिए। सच्चा प्रेम तभी होता है जब वो त्याग और अनुशासन से भरा हो। यदि वो वासना, स्वार्थ या मोह से जुड़ गया तो उसका स्वरूप बदल जाता है। मोह, लालसा और आसक्ति से प्रेरित प्रेम बंधन होता है जिससे न तो आत्मिक उन्नति होती है न ही वास्तविक सुख की अनुभूति। प्रेम का उद्देश्य आत्म विकास और दूसरों की आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना है। इसके लिए संयम, विवेक और पवित्रता नितांत आवश्यक है। सच्चे प्रेम में न तो अधिकार का भाव होता है और न ही स्वामित्व का, उसमें होता है केवल देने का भाव, निस्वार्थ सेवा और त्याग। यदि कोई व्यक्ति प्रेम में डूबा है तो उसमें एक पवित्र आकर्षण होता है जो प्रेरणा देता है, बंधन नहीं बनाता। लेकिन यदि वही आकर्षण शारीरिकता या भावनात्मक निर्भरता में बदल जाए तो वो पतन का कारण बनता है। इसीलिए प्रेम का प्रयोग केवल उच्च स्तरीय होना चाहिए जहां आत्मा की पुकार, सेवा का भाव और आदर्शों की रक्षा होती है। नारी पुरुष, माता पिता और संतान, गुरु शिष्य, देश और समाज के लिए प्रेम उसी समय सार्थक होता है जब वो लोक मंगल से जुड़ा हो। छोटे स्वार्थों, वासनाओं और लालसाओं से परे उठकर जब प्रेम का स्वरूप निर्मल, आदर्श और त्यागमय हो तब वो यथार्थ में प्रेम कहलाने के योग्य बनता है। ऐसा प्रेम न केवल दो आत्माओं को जोड़ता है बल्कि समूचे समाज को दिशा देने में सक्षम होता है। सच्चे सहृदय और सज्जन लोग दूसरों के साथ निष्ठा, समर्पण और स्नेह भाव से जुड़ते हैं। इस जुड़ाव में अपने स्वार्थ या लाभ की कोई भावना नहीं होती। ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के दुख को भी अपना ही दुख मानकर उनकी सहायता करता है। ये संबंध आत्मीयता, संवेदनशीलता और करुणा पर आधारित होता है। जैसे साहित्य, संगीत, नाटक, चित्र आदि के माध्यम से भावनाएं व्यक्त होती हैं, वैसे ही सामाजिक जीवन में भी ये भावुकता लोगों के बीच सत्य संबंध बनाने में सहायक होती हैं। जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी करते हैं तो समाज में आत्मीयता और सौहार्द का वातावरण बनता है। अक्सर देश और समाज में ये भावना कमजोर हो जाती है। लोग अपने स्वार्थ, आराम और सुविधाओं में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वे दूसरों की सहायता करेगा तो ये दुनिया एक बहुत बेहतर स्थान बन सकती है। दूसरों के दुख को महसूस करना, उनकी सहायता करना और उन्हें सहारा देना सच्ची मानवता ही नहीं वरन दैवीय स्थान तक पहुंचने का रास्ता है। मानवता का यह गुण व्यक्ति को न केवल सामाजिक रूप से मूल्यवान बनाता है बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। इसके विपरीत जो लोग केवल अपनी सुविधा और सुख के बारे में सोचते हैं

0: वे अंततः अकेले और असंतुष्ट रह जाते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाता है तो वो दूसरे के कष्टों को समझने और हल करने की क्षमता पाता है। ये केवल दान या सेवा की बात नहीं बल्कि एक संवेदनशील जीवन दृष्टि की आवश्यकता है। यही सच्चा धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें अपने भीतर की मानवता से जोड़ता है। गिरते और थकते व्यक्ति को ऊर्जा देने के लिए प्रबल शक्ति की जरूरत होती है। प्रेम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे मनुष्य को थकान, निराशा और असफलता के अंधकार से निकाल सकता है। ये एक सशक्त प्रेरणा है जो मनुष्य को चलाने और ऊंचाई तक ले जाने वाली सर्वोत्तम शक्ति है। मन को जीतने और प्रसन्न रखने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। किसी को रास्ते पर लाना हो, सच्चाई के पथ पर चलाना हो तो प्रेम पूर्ण व्यवहार से किया जाए। शुष्क नैतिक प्रवचन की अपेक्षा प्रेम भरा व्यवहार अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए जीवन में प्रेम भावना का विस्तार करना नितांत आवश्यक है। प्रेम करना कोई कमजोरी नहीं, ये उच्चतम शक्ति है। सच्चा प्रेम साहस, संयम, सहानुभूति, त्याग, सहिष्णुता और उदारता जैसे श्रेष्ठ गुणों से भरा होता है। हमारा प्रेम सीमित, स्वार्थ से प्रेरित और परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रेम को सच्चे अर्थों में जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है कि हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपमान, क्रोध, मोह और संकीर्णताओं से ऊपर उठें। हमें लोगों की कमजोरियों को क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। जब व्यक्ति समाज, देश और समस्त मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है तो उसका प्रेम व्यापक हो जाता है। उसे किसी एक व्यक्ति, जाति या समुदाय तक अपने प्रेम को सीमित नहीं रखना चाहिए। ये तो वो सच्चा दीपक है जो बिना तेल के भी जलता है, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रकाश होता है।
1: तो अभी आपने सुना आज का सुविचार, विषय था प्रेम। स्वर एवं आलेख डॉक्टर शीबा राकेश का। और इसी सुविचार के साथ, इस उत्तम विचार के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नमस्कार लखनऊ में आरंभ करते हैं, प्रवाहित करते हैं अपनी आज की भक्ति धारा को, यानी आज की आराधना।

ईश्वर की आराधना, उनका पूजा, उनका वंदन मन को एक असीम शांति और शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए वो जीवन में एकाग्रता भी बढ़ाता है। इसीलिए अगर आप पूरे सच्चे मन के साथ बैठकर ईश्वर की आराधना करें या अपने नित्य कर्मों को करते हुए भी अपना मन ईश्वर की भक्ति में रमाएं, तो निसंदेह ये जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी और उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति आने लगेगी।

जब मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर का वास है, तो वो दूसरों के लिए ना गलत सोचता है और ना ही कभी कोई भी गलत कार्य करता है। इसीलिए सबका सम्मान करें, सबके साथ वही व्यवहार करें जो आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें। अगर आप इस बात को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निसंदेह जीवन बहुत ही खूबसूरत और आनंदमय हो जाएगा।

जीवन में एक बात अवश्य ध्यान रखें कि ईश्वर की आराधना, उनकी भक्ति, पूजा अर्चना अवश्य करें, लेकिन जो साक्षात हमारे देवता, हमारे ईश्वर, हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता इस धरती पर रहें, उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखें, सम्मान करें, और जब तक संभव हो, जब तक वो इस धरा पर हैं, उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करें। अगर आप ये कार्य करते हैं तो ये भी किसी ईश्वर, किसी देवता की पूजा अर्चना से कम अच्छा कार्य न होगा।

और इसी के साथ अपनी आज की आराधना संपन्न करते हैं इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें। इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीत में प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 189 और आज इसमें हम आपको सुनाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें राज्यसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए मुनि वशिष्ठ द्वारा नीतिगत वचन कहने का संदर्भ आता है।

की कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आपने सुना इसका भाग 189। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और शोभना राव और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव

0: नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अंतिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब पारी है कि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बढ़िया बढ़िया जानकारियां दे दें। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेय की जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर उम्र के इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहा है। वो सफेद पोषक अमृत जिसे हम दूध कहते हैं। और खास बात यह है कि आज का दिन यानी 1 जून विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा घोषित किया गया था ताकि पूरी दुनिया को दूध के पोषणात्मक महत्व और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। भारत में तो दूध न केवल एक आहार है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का भी हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो या रात की थकान का अंत, एक गिलास गर्म दूध हमेशा ऊर्जा देने वाला, सुकून देने वाला रहा है। हमारे यहाँ दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है क्योंकि इसमें लगभग वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी हमारे शरीर को रोजाना आवश्यकता होती है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी, पोटेशियम और कई सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों और यहाँ तक कि मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद आवश्यक हैं। बचपन में दूध बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। युवावस्था में वो मांसपेशियों की ताकत और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। और बुजुर्गों के लिए ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के झरझराने से बचाव करता है। कई लोग दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं जिसे हम हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क कहते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। वहीं अगर दूध में केसर, इलायची या खजूर मिलाया जाए तो ये स्वाद और पोषण दोनों के स्तर पर और भी समृद्ध बन जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि दूध केवल बच्चों या बुजुर्गों के लिए है, लेकिन ये एक तरह की गलतफहमी है। युवा वर्ग, विशेष रूप से जो लोग ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं, तनाव में रहते हैं या नींद पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी दूध एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है। रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध पीना शरीर को शांत करता है, नींद को बेहतर बनाता है और मानसिक थकावट को दूर करता है। यही नहीं, महिलाओं के लिए गर्भावस्था के समय और बच्चों को स्तनपान कराने के दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब जब हम दूध की बात कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि हम इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू को समझें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और यहाँ करोड़ों किसान परिवार दूध उत्पादन पर निर्भर करते हैं। गाय, भैंस, बकरी जैसे पशु ग्रामीण परिवार की अर्थव्यवस्था का आधार भी हैं। गांवों में चलने वाली दुग्ध सहकारी समितियां आज भी लाखों घरों की आजीविका का साधन हैं। लेकिन जहां दूध से हमें इतनी शक्ति मिलती है, वहीं आजकल मिलावटी दूध और कृत्रिम रसायनों से बने उत्पादों की समस्या भी बड़ी हो गई है। हमें इस बात की सतर्कता भी रखनी चाहिए कि जो दूध हम पी रहे हैं वो शुद्ध हो, स्वच्छ हो और सही स्रोत से प्राप्त हो। ये भी देखा गया है कि अब बहुत से लोग गाय का A2 दूध, देसी नस्ल के दूध या ऑर्गेनिक फार्म से प्राप्त दूध को प्राथमिकता देने लगे हैं, जो एक अच्छी पहल है। शुद्ध और संतुलित दूध सेवन से शरीर को न केवल पोषण मिलता है बल्कि कई रोगों से भी बचाव होता है। दूध को लेकर कई मिथक भी चलन में हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि दूध मोटापा बढ़ाता है या फिर दूध और कुछ फलों का सेवन साथ नहीं करना चाहिए। दरअसल दूध को किस समय किस

रूप में और किस उम्र में पीना है, ये व्यक्ति विशेष की जरूरत और पाचन क्षमता पर निर्भर करता है। यदि शरीर को लैक्टोज से एलर्जी है तो विकल्प के तौर पर दही, छाछ, पनीर, टोंड मिल्क या प्लांट बेस्ड विकल्प भी आजमाए जा सकते हैं। मगर ये समझना बेहद जरूरी है कि दूध केवल एक पेय नहीं है, बल्कि एक पोषण पैकेज है और इसका सही रूप में सेवन करना हमारी सेहत को वर्षों तक संबल दे सकता है। श्रोताओं, आज विश्व दूध दिवस के इस अवसर पर क्यों न हम ये संकल्प लें कि हम अपने और अपने परिवार के आहार में दूध या उसके उत्पादों को सम्मानजनक स्थान देंगे। बच्चों की हड्डियां, बुजुर्गों की ताकत और पूरे परिवार की ऊर्जा, सब कुछ एक गिलास में समाया हुआ है। अपनी परंपरा, अपनी प्रकृति और अपने पोषण को जोड़ने का ये एक सरल लेकिन असरदार माध्यम है दूध। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, दूध का महत्व समझिए और एक साधारण से पेय के असाधारण गुणों को अपनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

तो श्रोताओ, आज की स्वास्थ्य चर्चा में आपने जाना कि दूध हमारे लिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अब नमस्कार, लखनऊ में बारी है कि हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 11:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल गरीब कल्याण। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 8 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है साहित्य में नारी चेतना का उदय, आलेख डॉक्टर आराधना अस्थाना का, और वाचन और कार्यक्रम का संपादन किया है सुरेंद्र राजेश्वरी ने।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य मैगजीन स्वास्थ्य वार्ता, जिसमें पहले डॉक्टर वैभव जैन से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। विषय होगा मोतियाबिंद की समस्या और समाधान। इसके अलावा डॉक्टर अंबुज शुक्ल से बातचीत का विषय होगा होम्योपैथी में संक्रामक रोगों से बचाव। आप दोनों ही विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे आशीष चतुर्वेदी। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा चित्रकूट और मैनपुरी जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में आज का मौजू होगा अहदे हाजिर में वालदेन की जिम्मेदारी। इस मौजू पर सुनिएगा मुबाहिसा। शुरका होंगे डॉक्टर परवीन शुजात और मोहम्मद खालिद बांधवी। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में विश्व अभिभावक दिवस के अवसर पर आज का विविधा का विषय होगा तने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 पर। दिन में 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। इसमें डॉक्टर राम प्रताप सिंह सिक्की की भेंट वार्ता सुनिएगा। विषय होगा धान की संकर प्रजातियां। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5:00 और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आज अनिल प्रताप सिंह की वार्ता सुनिएगा आयुष्मान भारत योजना से गांवों में बदलाव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा गर्मी में पशुओं के रोग कारण और निवारण। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत

कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा पखावज वादन। कलाकार होंगे शशिकांत पाठक। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गोपाल सिन्हा के गाए कुछ गीत। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा दिग्विजयनाथ सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आज की विविधता।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री रामचरित मानस के बालकांड की एक अत्यंत प्रसिद्ध चौपाई है, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अर्थात श्री राम अपनी माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, वही पुत्र सौभाग्यशाली है जो अपने माता और पिता के वचनों को प्रेम पूर्वक उनका पालन करता है, जो पुत्र अपनी आज्ञाकारिता और सेवा से माता पिता को संतुष्ट रखने वाला होता है, ऐसा पुत्र इस संपूर्ण संसार में दुर्लभ है। ये चौपाई माता पिता के प्रति संतान के कर्तव्य, सेवा और आज्ञा पालन के सर्वोच्च महत्व को दर्शाती है।

आज 1 जून अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है, उन लोगों की जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, गिरकर संभलना सिखाया और हर मुश्किल में हमारा हाथ थामे रखा। जी हाँ, आज बात होगी हमारे और आपके माता पिता की। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, ना कोई पहचान, ना कोई उपलब्धि, लेकिन उसके माता पिता उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। माँ अपनी नींदें त्याग देती है, पिता अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं। बच्चे की एक मुस्कान के लिए वे हजारों हजारों परेशानियां सह लेते हैं। कभी आपने सोचा है, जब हम छोटे थे और रात में रोते थे तब माँ कितनी बार अपनी नींद छोड़कर हमें चुप कराती थी? जब स्कूल की फीस जमा करनी होती थी तब पिता कितनी चिंताओं को अपने चेहरे से छुपा लेते थे? जब हम गिरते थे तो सबसे पहले दौड़कर कौन आता था? हमारे माता पिता। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार उन हाथों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया। आज हमारे पास समय है दोस्तों के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मोबाइल के लिए, लेकिन कई बार माता पिता के साथ बैठकर 5 मिनट बात करने का भी समय नहीं होता। हम सोचते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन ऐसा भी आता है जब हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे हाथों से निकल चुका होता है। एक छोटी सी कहानी आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बेटा नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में वो रोज अपनी माँ को फोन करता था, फिर फोन हफ्ते में एक बार होने लगा, फिर महीने में एक बार। माँ हर दिन उसके फोन का इंतजार करती।

जब भी फोन की घंटी बजती वो मुस्कुरा कर दौड़ पड़ती, लेकिन कई बार फोन किसी और का होता। एक दिन बेटे को खबर मिली कि माँ अस्पताल में है। वो भागते हुए घर पहुंचा। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ माफ कर दो, मैं बहुत व्यस्त था। इस पर भी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा मुझे पता है तुम व्यस्त थे, मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इतना कहकर माँ की आंखें बंद हो गई। दोस्तों, कुछ रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रहते। माता पिता का प्यार दुनिया का एकमात्र ऐसा प्यार है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वे हमें सफल देखना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हम उनसे आगे बढ़ें। हमारी हर उपलब्धि उनकी खुशी बन जाती है और हमारी हर परेशानी उनकी चिंता। कई बार पिता अपने दर्द छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार परेशान हो जाएगा। कई बार माँ खुद तकलीफ में होती है लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराती रहती है। यही तो माता पिता है, वे अपनी खुशियों से पहले हमारी खुशियाँ रखते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस पर आइए एक संकल्प ले गई। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनसे बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ चाय पीजिए, उनकी पुरानी यादें सुनिए। यकीन मानिए, उन्हें किन्हीं महंगे उपहार की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ आपका समय चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए। और यदि किसी कारणवश आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो उनकी यादों को सम्मान दीजिए। अगर वो आपके पास हैं तो उन्हें अपने गले लगाइए और उनसे कहिए, माँ पिताजी आप मेरे लिए दुनिया के सबसे खास इंसान हैं, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपका धन्यवाद। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता बनाए। तो दोस्तों, ये थी आज की विविधा। तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति, विविधा के एक और अंक में एक नवीन विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता

0: बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
3: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।

0: के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए जिससे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी

0: के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। तो आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पखावज वादन। वादन कलाकार है शशिकांत पाठक। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं पखावज पर ताल तीव्रा।

एक दो धागे ते टकड़ धागे ते धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते धागे ते टकड़ धागे ते धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़ धागे ते टकड़

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे पखावज वादन। कलाकार थे शशिकांत पाठक। आज आपने प्रस्तुत किया पखावज पर ताल तीव्रा। और अब आइए आपको सुनवाते हैं पखावज पर ही आपका बजाया आदिताल।

Tagging a dog,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे शशिकांत पाठक का पखावज वादन। पहले आपने सुना आपका बजाया पखावज पर ताल तीव्रा, और उसके बाद आपने प्रस्तुत किया पखावज पर ही ताल आदि ताल। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है, साथ ही संपन्न होता है हमारा आज का नमस्कार लखनऊ। फिलहाल सुबह के 8 बजने वाले हैं, आइए आपको सुनवाते हैं समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा

0: में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हफ्ते के रोज़ बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ़द भी है, जिसमें बहुत से काबीना वज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी गुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िराअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। 1 महीना तवील ये मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेतारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज़, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों

0: से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल

0: दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौक़ों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फ़रोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौक़ों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमायां तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज़ और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इक़दामात पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज़ किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज़ रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब
1: से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
4: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर की आवाज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलुकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: पत्र जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक ज़ेरेआब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फ़रोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार।

दोस्तों, कार्यक्रम में अपनी शिरकत दर्ज कराने के लिए आपको भेजना है हमें अपना एक मेल, और भेजनी है उसमें लिख भेजनी है अपनी फरमाइश, आपको कौन सा फिल्मी नगमा सुनना है उसकी फरमाइश आप लिख भेजें। हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो बस फटाफट अपनी फरमाइशें हमें भेजिए और हम आपको सुनवाएंगे आपके मनपसंद नगमे। सबसे पहली जो फरमाइश हमारे पास वो आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, आप सब ने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश आई है। अगली फरमाइश आई है हमारे पास गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की, और फरमाइश आई है हमारे पास गांव टोरोवाल ज़िला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी की। अगली फरमाइश आई है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख की। समस्त राजे जाधव, देशमुख और वायाल परिवार ने अपनी फरमाइश भेजी है कार्यक्रम में। और एक और फरमाइश पढ़ दे रहे हैं जल्दी से, यह है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। आप सब सुनना चाहते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में फिल्म जिंदगी और ख्वाब का ये गीत।

वन बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाई चाहिए ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की आपने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास अगला मेल आया है ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की फरमाइश आई है। और फरमाइश आई है हमारे पास ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह की। आप सब ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है, अपना मेल भेजा है, उसके हम आभारी हैं। इसके अलावा नागचुंड रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये हमारे पास फरमाइश आई है अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी की फरमाइश आई है। और एक मेल और जल्दी से पढ़ दें, यह आया है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा और राहुल शर्मा का। आप सब सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हमारे अधिकतर श्रोताओं ने आज फरमाइश की है सुमन कल्याणपुर करके गीतों को सुनने की, तो ये गीत भी उन्हीं का और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और हमारे पास भारी संख्या में आपके मेल्स आ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मेल्स हम शामिल कर लें अपने इस कार्यक्रम में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, फरमाइश है उदयभान पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनका पूरा परिवार, उसने फरमाइश भेजी है आप सभी ने। इसके अलावा फिल्म अगली जो फरमाइश हमारे पास आई है वो है ये मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से फरमाइश आई है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े की फरमाइश आई है। इसके अलावा आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया कार्यक्रम में एक बार में एक ही फरमाइश अपनी भेजें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा हमें फरमाइश भेजी है विजय पाल यादव जी ने ललहुआ लखीमपुर खीरी से, ये फरमाइश उनकी आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, ये है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री की आप सबने भी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, अशरफ अब्बासी, आप सब ने सुनना चाहा है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म अनजाना का ये गीत।

और श्रोता, लगातार आपके मेल्स हमारे पास आ रहे हैं और कार्यक्रम में बस आखिरी गीत सुनवाने से पहले इसकी जो फरमाइश हमारे पास आई है उन श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें। ये फरमाइश आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता की। आपने ये फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है दतरेंगी पाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा की फरमाइश है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है गाँव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर व करमजीत कौर की फरमाइश आई है। और एक और जल्दी से हमारे पास अगली फरमाइश जो है वो हम आपको पढ़ के सुना दें। आइए, एडवोकेट वारिस अली खां साहब की इस्लामुल निशा शकील अहमद शहनाज खां और बेबी नुसरा खां की संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से फरमाइश इन्होंने भेजी है।

इसके अलावा लगातार और भी बहुत सारे मेल्स आपके हमारे पास आ रहे हैं। ये है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह की। आप सब सुनना चाहते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म चालाक का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं, आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति फिर किसी दिन नए गानों के साथ, आपकी नई फरमाइशों के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन

0: प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकर भी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल है। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS, ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के एवं सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर, करवी, मऊ, राजापुर व मानिकपुर तहसील परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, PG कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गर थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गांव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जन जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी, बांगर, सिलौटा, मुस्तकिल और रायपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गांव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुंचा, वहां अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज 1 विकल्प चुनें, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांववार जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
1: अगर कोई विशेष कार्य हुई आप इस समय बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत 2 मिशन समाधान दिवसों में

0: ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टानिस्ट हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी और मसरूफ तर्ज़ ज़िंदगी ने इंसानी

0: जिंदगी को यकसर बदल दिया है, वहीं वालिदैन की जिम्मेदारियां भी पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। सामीन, आज का बच्चा सिर्फ घर और स्कूल तक महदूद नहीं, बल्कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के वसी असरात के दरमियान परवान चढ़ रहा है। ऐसे हालात में वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी औलाद की न सिर्फ बेहतरीन तालीम और तरबियत करें, बल्कि उनकी अखलाकी, दीनी और समाजी रहनुमाई का भी खास ख्याल रखें। दोस्तों, बिलाशुबा वालिदैन बच्चों की शख्सियत साजी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मोहब्बत, शफकत, एतमाद और अच्छे अखलाक के जरिए वो बच्चों को एक जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में जहां नौजवान नस्ल मुख्तलिफ फिक्री और अखलाकी चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहां वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करें, उनकी जहनी कैफियत को समझें और सही और गलत में फर्क समझाएं। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहसे का। मौजू है मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जनाब मौलाना मोहम्मद खालिद बांदवी नदवी साहब, अरबी लेक्चरार, दारुलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ। मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, मुमताज पीजी कॉलेज, लखनऊ। और नाचीज सैयद मोहम्मद उमर। हम सबसे पहले अपने दोनों खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर मोहम्मद खालिद साहब से सवाल है। मौ साहब, पेश करदा मौजू के मद्देनजर मौजूदा दौर में वालिदैन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में क्या किसी तरह की तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है, आप हमारे सामीन के सामने मुख्तसरन इसकी वजाहत फरमाएं।
1: मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले के ज़माने से काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। पहले मसाइल चैलेंजेस वैसे नहीं थे जो आज तेज़ रफ्तार तरक्की याफ्ता दुनिया ने पैदा कर दिए हैं। आज वालिदैन को बच्चों की तरबियत में ख़ास तौर से ये चीज़ें भी शामिल हो गई हैं कि नफ्सियाती एतबार से उनका हौसला बढ़ाया जाए। डिजिटल हिफाजत भी आज की जिम्मेदारी वालिदैन की बन गई है और इसके अलावा भी दीगर तब्दीलियाँ जो हमारी तहजीबी तरक्की का नतीजा हैं, और उनमें बेशुमार बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो तरबियत के नुक्ते नज़र से काबिल तवज्जो हैं, हमें उस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। यकीनन तब्दीलियां हमगीर हैं, तहजीबी भी हैं और सकाफती भी हैं, तालीमी भी हैं, फिक्री भी हैं, मजहबी भी हैं। ये तब्दीलियां पहले इस पैमाने पर मौजूद नहीं थीं और हमें उसकी ज़रूरत है।
0: बहुत अच्छा कह रहे हैं आप कि मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियों में बच्चों की तालीम, तरबियत, अखलाकी रहनुमाई और मजहबी नशो नुमा शामिल हैं। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के बढ़ते असरात के बाइस वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए वालिदैन को इस तरफ खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। अभी मौआ साहब ने डिजिटल का तज़किरा किया तो एक सवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा। हम परवीन साहिबा से एक सवाल करेंगे। यहाँ पर आज के डिजिटल दौर में बच्चों की अखलाकी और तालीमी तरबियत के लिए वालिदैन का किरदार कितना अहम है, इस पर आप क्या कहती हैं?
2: जी उमर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि डिजिटल दौर में वालिदैन का किरदार बहुत अहम हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। अभी जैसे मौलाना साहब ने बताया कि पहले का दौर और था और अब का दौर और है। घर के माहौल बदल गए हैं और बच्चों के तालीम के सिलसिले में भी, स्कूल में भी और जगहों पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं पहले के मुकाबले में। तो यह वक्त ऐसा है जब वालिदैन का किरदार उनकी तरबियत के लिए बहुत अहमियत रखता है और बचपन से ही अखलाकियात के उसूल में जैसे है कि सुबह जल्दी सो के उठना, उठते के साथ ही घर के सभी बुजुर्गों को और बड़ों को सलाम करना, खाने के वक्त पहले जब तक घर के बड़े ना शुरू करें खुद नहीं शुरू करना। और ये आजकल के दौर में एक ये चीज बहुत हो गई है बच्चों में जो ये मैनर्स की कमी है कि बड़ों से बात करेंगे, ख्वाह वो घर के बड़े हों चाहे बाहर के कोई भी हो, अगर जो बड़ा है हमारा वो बड़ा है, हमसे बड़ा है, हम कभी भी उनसे बैठ के ना मुखातिब हों, जब भी बात करें उनसे खड़े होके बात करें। तो ये तमाम चीजें हैं, किसी के घर में बगैर नॉक किए ना दाखिल हों, किसी घर में ही किसी के कमरे में खटखटाए बगैर ना दाखिल हों, ये सब बच्चे बचपन से सीखते हैं और ये सब इखलाकियात के उसूल हैं। इसके लिए

0: हमें ये भी चाहिए कि वालदैन खुद भी अपना किरदार उसी तरह रखें, क्योंकि वालदैन बच्चों के लिए आइडियल होते हैं, वो जो कुछ करेंगे बच्चे उसी पर अमल करेंगे। तो खाली उनको तालीम देना, उनको दर्स देना कि आप ऐसा करो ये सही नहीं है, खुद भी वैसे ही करें, अपने बुजुर्गों से अपने बड़ों से वो भी खड़े होकर मुखातिब हों। डिजिटल दौर में वालदैन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बच्चों का स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें, स्क्रीन टाइम उनका कितना है, कितना टाइम वो स्क्रीन पर गुजारते हैं।
1: जी, तो बहुत अच्छा आपने कहा कि आज के डिजिटल दौर में वालिदैन का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि वही बच्चों को सही और गलत के इस्तेमाल का शोर दे सकते हैं और उनकी अखलाकी तरबियत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, जैसा कि आपने अपने अल्फाजों में जाहिर किया। यहाँ पर आपने अभी डिजिटल का तस्करा ही किया था, तो डिजिटल में बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल्स है, इंटरनेट है। तो सवाल यहाँ पर मौलाना साहब से करेंगे कि मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बढ़ते असरात के पेश नज़र वालिदैन को किन किन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: अभी इन्होंने तस्करा किया, बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे हमारे आमतौर से अपने बड़ों से देख करके सीखते हैं, और उलमाए नफ्सियात ये कहते हैं

0: ध्यान दें
1: जी,
0: स्क्रीन टाइम उनका कितना है, कितना वो टाइम वो स्क्रीन पे गुजारते हैं।
1: जी जी तो बहुत अच्छा आपने कहा कि आज के डिजिटल दौर में वालिदैन का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि वही बच्चों को सही और गलत के इस्तेमाल का शोर दे सकते हैं और उनकी अखलाकी तरबियत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, जैसा कि आपने अपने अल्फाजों में जाहिर किया। यहाँ पर आपने अभी डिजिटल का तस्करा ही किया था, तो डिजिटल में बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल्स है, इंटरनेट है, तो सवाल यहाँ पर मोहम्मद साहब से करेंगे कि मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बढ़ते असरात के पेश नज़र वालिदैन को किन किन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: अभी इन्होंने तस्करा किया, बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे हमारे आमतौर से अपने बड़ों से देख करके सीखते हैं, और उलमाए नफ्सियात ये कहते हैं कि तकरीबन 10 साल की मुद्दत बच्चों की वो होती है जिसमें वो बहुत तेज़ी के साथ लोगों के रवैये को, उनके बर्ताव को, उनके रहन सहन के अंदाज को, उनके अखलाक को, उनकी फिक्र को वो अख्ज़ करते हैं, सीखते हैं, और ये कुव्वत उनमें बहुत तेज़ी के साथ होती है। तो इस एतबार से वालिदैन दरहकीकत बच्चों के आइडियल होते हैं, नमूना होते हैं। वो जिस अंदाज में देखेंगे उसी अंदाज में दरहकीकत वो अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे। तो वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे पहले तो ये हो जाती है कि वो इन बरकी जो तरक्कियाँ हुई हैं उनसे पहले खुद अपने आप को जिस हद तक महफूज रख सकते हो खुद रहकर अपना अमली नमूना पेश करें, पहली बात तो ये है, और इन चीज़ों को बदरजे मजबूरी ही इस्तेमाल करें। पूरे तौर पर पाबंदी तो मैं समझता हूँ कि नहीं लगाई जा सकती है, इसलिए कि जिंदगी की बहुत सी जरूरियात उसी से वाबस्ता हैं और हमारा माशी निज़ाम खासतौर से उसी पर मुनहसर हो गया है आज के दौर में, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जरूरत से ज्यादा इन चीजों के इस्तेमाल से पहले अपने आप को रोकें और बच्चों पर जहां तक हो सके पाबंदी आयद करें। जरूरत के तहत उनको मोबाइल वगैरह की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर भी हमारी निगरानी रहे, वो किन प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या चीजें देखना पसंद करते हैं। मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सूरत में रद्द अमल की नफसियात जन्म लेती हैं जो बसा अवकात बड़ी मुजिर होती हैं, बगावत की कैफियत एक पैदा हो जाती है, वो मुनासिब नहीं है। अलबत्ता प्यार से और अपने किरदार से जहां तक हो सके हम उनकी हिफाजत करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये बरकी तूफान है, एक सैलाब है जिसमें हमारी अखलाकियात, हमारी अपनी तहजीब, हमारे अपने कल्चर, ये तमाम चीजें बहाए लिए चला जा रहा है। फहाशी का दौर दौरा है, और अगर सही बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि हमारे अंदर से इंसानियत की जो खूबियां हैं उसे निकालने में ये चीजें बहुत मुजिर असरात पैदा कर रही हैं। इसलिए बहुत ही एतदाल के साथ, तवाजुन के साथ, और इस तौर पर कि बगावत न पैदा हो, रद्द अमल न पैदा हो, नफसियाती दबाव का शिकार न हो बच्चे, हमें उस इस्तेमाल की इजाजत बहुत महदूद पैमाने पर देनी चाहिए।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर गहरी नजर रखें और उनका वक्त मुतय्यन करें कि कितना वक्त वो मोबाइल के लिए खास कर रहे हैं, और उन्हें मुस्बत मवाद की तरफ लेकर जाएं और उसी की तरफ रागिब करें कि वो अच्छी चीज देखें ताकि वो एक अच्छा किरदार पेश कर सके। बहुत अच्छी चीज आपने बताई यहाँ पर, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ है। एक सवाल आपसे मसरूफियत का करेंगे, क्या मौजूदा मसरूफ तर्ज जिंदगी वालिदैन और औलाद के दरमियान फासला पैदा कर रही है, इस पर आप रोशनी डालिए।
0: मेहर साहब, ये तो बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और आज के दौर से ही ताल्लुक रखता है। देखिए, वालिदैन की जो जिंदगी है मसरूफ तरीन हो गई है और बच्चों पे वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, इसमें किसी हद तक वालिदैन की मजबूरी भी शामिल है, क्योंकि आजकल का ये तालीम और दूसरी जरूरियात जिंदगी इतनी महंगी हो गई है कि माँ और बाप दोनों का ही काम कर जाना होता है। लेकिन उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि बच्चों पे तवज्जो दें। अगर काम पे गए तो भी वो दरमियान में बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाएं तो उनको फोन करके उनकी खैरियत लेते रहें, कभी वालिद फोन कर लें, कभी वालदा फोन कर लें कि स्कूल का टाइम आज कैसा रहा, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया और क्या कर रहे हो अभी, क्योंकि वालिदैन की गैर मौजूदगी में या तो बच्चे अकेले रहते हैं और या फिर नौकर के सहारे रहते हैं। अब एक नौकर के साथ रह के तो नौकर उनकी किस तरह से तरबियत करेगा, ये बात भी काबिले गौर है। दूसरी बात कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा लगाएं, फिजिकल एक्टिविटीज, खेल कूद, इसमें ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जंक फूड का भी बहुत रिवाज हो गया और इसी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। इसकी वजह भी यही है कि दोनों घर में नहीं है, काम पे होते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी मंगा लिया, खा लिया, तो इससे उनकी सेहत भी खराब हो रही है। तो इसके लिए तवज्जो देने की जरूरत है, बच्चों के दोस्त बन के रहें।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि मौजूदा मसरूफ तर्ज जिंदगी की वजह से वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले जरूर पैदा हुए हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को वक्त कम मिलता है, इसलिए वालिदैन को बच्चों के साथ मियारी वक्त गुजारना वक्त का अहम तरीका

0: शौक़ भी होता है कि हमारा बच्चा हमारे उस शौक़ को पूरा करने में, कि हमारे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में वो बुनियादी किरदार अदा करे। लेकिन उसूल तरबियत के एतबार से ये मुनासिब रवैया नहीं है। आपने जैसा कि तस्किरा किया कि सबकी सलाहियतें अलग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि सबको अलग अलग सलाहियतों इस्तेदाद का हामिल बनाया है इस पैदा करने वाले ने। तो हमें देखना चाहिए कि बच्चा जब छोटा है और जिस हद तक अभी उसकी सलाहियतें वाजे नहीं हो रही हैं, तब तक तो ठीक है, हम उसको एक खास नहज पर लेकर के चलते हैं और उसमें बुनियादी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। मादियत के इस दौर में आमतौर से हम, जैसे कि मोहतरमा तस्करा कर रही थी, कि हम तवाजुन पैदा करने की कोशिश करें, इसलिए कि वालदेन की जिंदगी मसरूफ है। मसरूफियत की बुनियादी वजह यह है कि हमारे पेशे नजर ये है कि पैसा ज्यादा आ जाए, हम मादी एतबार से कामयाब इंसान कहलाएं, खुद भी ये पसंद करते हैं। इसी वजह से बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसमें भी बुनियादी चीज यही होती है कि हमारे पेश नजर मादियत है, बच्चों की तरबियत सानवी चीज हो जाती है जी। तो जरूरी यह है कि हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी जिसके अंदर अखलाकियत हो, इंसानियत हो, हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, इन चीजों से पैदा करदा एक अच्छा शहरी बनाने की बच्चों को कोशिश करें, बुनियादी मकसद ये। इसके बाद जो सानवी मकासद हैं, तालीमी मैदान के मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और मुख्तलिफ मैदान हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, फलाँ हैं फलाँ हैं। एक डॉक्टर हो, एक अच्छा शहरी भी हो ज़रूरी नहीं, एक इंजीनियर हो, एक अच्छा शहरी भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं। तो तालीमी मैयार में वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इंसानी एतबार से भी वो अच्छा है, ये ज़रा सोचने की चीज़ है। तो मकासद भी दो तरह के हैं, एक बुनियादी, वो असली ये है कि वो एक अच्छा इंसान हो। तालीम सानवी दर्जे की है ताकि वो किसी भी फील्ड में जाए तो एक बेहतरीन डॉक्टर, एक अच्छा और बेहतरीन डॉक्टर वो होगा जो अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा इंजीनियर वो होगा जो एक अच्छा इंसान होगा। हम उसे वो बनाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से तरबियत भी बच्चों की अच्छी होगी और वो शहरी जो उसूल आदाब हैं, इंसानी अकदार हैं, उसका हामिल वो बनेगा।
1: बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने कहा कि वालिदैन को अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सलाहियत और दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है। बच्चों को उनकी काबिलियत के मुताबिक आगे बढ़ाने का मौका फराहम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मुख्तसरन डॉक्टर साहिबा से करेंगे कि आज के प्रोग्राम के पेश नज़र हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे।
2: मुख्तसरन तो बस यही कह सकते हैं कि वो तवाजुन रखें, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि तवाजुन रखना चाहिए अपने काम में और बच्चों को अपनी तवज्जो देने में, और वालिदैन घर का माहौल सही रखें।
1: तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि वालिदैन एक अच्छे माहौल के साथ में जिंदगी गुजारें ताकि बच्चों पर उसके अच्छे असरात पड़े और खुसूसी तवज्जो दे ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे और बच्चे जो है एक अच्छे शहरी बनकर दुनिया के सामने आए। बहुत अच्छा आपने कहा और बहुत ही उम्दा पैगाम भी आपने दिया। सामीन, आज के मुबाइसे का लुब्बे लुबाब निचोड़ यही है कि बिलाशुबा मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां सिर्फ बच्चों की परवरिश तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि उनकी बेहतर तालीम, अखलाकी तरबियत, जहनी रहनुमाई और मुस्बत शख्सियत साजी भी वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन मोहब्बत, तवज्जो और शूर के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें तो एक साले बाकिरदार और कामयाब नस्ल की तामीर मुमकिन है। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब मौलाना मोहम्मद खालिद बांदवी नदवी साहब और मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
3: उर्दू प्रोग्राम खत्म हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए दिग्विजयनाथ सिंह के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

0: लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे दिग्विजय नाथ सिंह के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। हम आपको याद दिला दें कि दिन में 2:45 पर एक बार पुनः लोक माधुरी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे दिग्विजय नाथ सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ अब हमारा आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.6 meters यानी 747 kHz पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 kHz आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद और मन्ना डे साहब की आवाजों में कवि प्रदीप के बोलों को धुन बनाई है दत्ताराम वाडकर ने और फिल्म का नाम है जिंदगी और ख्वाब।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर, गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
8: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
9: श्रोताओं, अब सुबह के 10 बजने वाले हैं और 10:10 होने वाले हैं और अब से थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद चित्रपट से कार्यक्रम में पुनः आपको सुनवाएंगे फिल्मी नगमे। फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं न्यूज़ दर्पण विश्व दर्पण न्यूज़ बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों

0: देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की दूसरी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी CDC अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि यह सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजी गई। ये चिकित्सा सहायता कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में राहत कार्यों के लिए भेजी गई है। CDC ने अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार और लोगों का आभार व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक होगी। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार सीमा पर बाड़बंदी, अवैध प्रशासन और कथित सीमा हत्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जल बंटवारे के मुद्दे, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और ड्रोन घुसपैठ जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश व्यापार, जहाजरानी, काउंसुलर मामले और जल संसाधन सहयोग पर चर्चा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिनमें से लगभग 860 किलोमीटर भौगोलिक बाधाओं के कारण बाढ़ रहित है। 4 दिवसीय बैठक के समापन पर 11 जून को चर्चाओं के संयुक्त अभिलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: नेपाल के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। वे भारत में नेपाली समुदाय से मिलेंगे और अयोध्या की भी यात्रा करेंगे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में सांसद बिपिन कुमार आचार्य, दीपक बोरा, निकिता पौडेल और प्रदीप आचार्य शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ये चुनाव पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक प्रावधानों के कारण दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए उन्हें इवान सेपेडा को उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाया है।
3: प्रारंभिक रुझानों के अनुसार दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबेलार्डो देला एस्प्रियेला सबसे आगे हैं, जबकि वामपंथी सीनेटर इवान सेपेडा दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसलिए 21 जून को दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना है। इवान सेपेडा राष्ट्रपति पेट्रो की शांति वार्ता नीति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबेलार्डो देला एस्प्रियेला और पालोमा वेलेंसिया अपराध और हिंसा से निपटने के लिए कड़े सैन्य रुख का समर्थन करते हैं। चुनाव परिणाम से कोलंबिया की सुरक्षा नीति, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रणनीति और अमेरिका के साथ

0: बंधों की दिशा तय होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए प्राची वाजपेयी।
1: इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल ने कहा कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना ने ब्लूफोर्ट किले पर इजरायल का ध्वज फहराया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को सरकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने IDF को लेबनान में कार्यवाही बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा गया है। और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।
3: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। वे 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम ने गोवा के मरगांव में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वियतनाम में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदकों सहित कुल 10 पदक जीते। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला एथलीटों ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण और 4x100 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, जबकि पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता।
1: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $89.73 प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.28 प्रति बैरल हो गई। इसराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 743 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक?

0: एक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
3: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
2: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर, गूंजे सफलताओं की आवाज।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: श्रोता प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम में कुछ नए फिल्मी तराने। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म बेशरम का ये गीत। बोल है राजीव बरनवाल के और धुन बनाई है ललित पंडित ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चित्रपट से। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रईस का ये गीत, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत है जैम 8 का।

0: किस्सा सुनो,
1: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: श्रोताओ आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अन्विता दत्त के बोलो को सुहेल सेन की धुन पर गीत को स्वर दिया है केके और पलक मुच्छल ने और

नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटोयूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: चित्रपट से कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं इरशाद कामिल के बोलों पर अरिजीत सिंह और अरमान खां की आवाजों में फिल्म का नाम है धुरंधर।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं कौसर मुनीर के बोलो को विशाल शेखर की धुन पर। गीत को स्वर दिया है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने, और फिल्म का नाम है तशन।

चित्रपट से कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, आइए अब आपको सुनाते हैं शंकर एहसान लॉय की धुन पर कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में जावेद अख्तर के बोलों को। फिल्म का नाम है कुछ ना कहो।

0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के गाए फिल्म कुछ न कहो के इस गीत के साथ ही आज का ये चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारे श्रोता कहेंगे अपने दिल की बात, हमसे सुनेंगे अपनी पसंद के गीत। ये सब करने के लिए आपको डायल करना होगा नंबर 0522-223-8825 यानी 0522-2228825। और कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं चित्रकूट धाम से दिनकर जी का। हेलो।
1: अच्छा दोस्त हो तो उस दोस्त की एक झलक चाहिए दीदी जी, और अगर घर नहीं है तो उसको एक सुंदर घर चाहिए। हमें शुक्ला जी जैसे दोस्त मिले, बाबा दीन निषाद जैसे दोस्त मिले, तो इन दोस्तों का उम्र भर साथ चाहिए, साथ चाहिए।
0: बहुत अच्छी
1: बात। आपकी ये आवाज रेडियो में हर वक्त गूंजती रहना चाहिए, गूंजती रहना चाहिए।
0: नमस्कार। नमस्कार, हर वक्त तो नहीं लेकिन हाँ आज थोड़ी देर के लिए जरूर गूंजेगी। और लेकिन आप लोगों की आवाज आती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है मैं मुलाकात करके आया हूँ, ये रेडियो से ही हमारी दोस्ती हुई है, तो उनके गांव से मैं गुजर रहा था।
0: अच्छा।
1: तो इतना उन्होंने अपना स्नेह बरसा दिया कि जीवन भर वो पल याद रहेंगे हमारे जो है ये निषाद जी, बाबा दीन निषाद जी मिले और हमारे जो है आपके शुक्ला जी मिले, जो टीचर रहे, प्रोफेसर रहे और इसके बाद जो है प्रिंसिपल भी रहे।
0: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।

0: बहुत खुशी हुई।
1: का उन्होंने पूरा स्नेह, मेरे पिता तुल्य है,
0: हाँ।
1: तो उन्होंने पूरा स्नेह एक ही पल में उड़ेल दिया।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है।
1: होता कि आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर लेना चाहता हूँ गुरु जी का, और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, इसी बात की हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारा ये कार्यक्रम आप सबको आपस में भी जोड़ता है और आप सबको हमसे भी जोड़ता है। तो ये
1: दीदी जी, एक और बता दूं कि इसके मिनिस्टर हमारे जो है फूलचंद पाल जी थे, मैं जब जा रहा था तभी उन्होंने सूचना दे दिया था, तो उनका फोन आया तब हम मुलाकात कर पाए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट जाना था मुझे एक काम में।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ऐसे ही रिश्ते जुड़ते हैं, ऐसे ही संबंध बनते हैं और ये संबंध हमेशा कायम रहते हैं। तो बस इसी बात पर, और हम आपको आपका पसंदीदा नगमा जो आपने सुनना चाहा है,
1: थोड़ा परिचय दे दूं।
0: जरूर,
1: चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से जी सिंह बात कर रहा हूँ, और प्रेमदास बाबा विजय पांडे के साथ जो है
0: जी
1: गीत, और बेटा सिंह है हमारे मांझीलाल चंदेल जी है
0: जी,
1: इसके साथ गीत सुनूंगा, जय जय शिव शंकर, क्योंकि यहाँ शंकर जी की स्थापना भी हो रही है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, आज सोमवार भी है,
1: मैंने गीत भी वही चूज किया।
0: वाह बहुत बढ़िया, और तो आप हमारे साथ भी तो सुनेंगे
1: जी बिल्कुल, आपके साथ, और हमारे पंडित जी लल्ला महाराज जी हैं, और हमारे जो भतीजे जो है गौरव हैं जो इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनके साथ मैं गीत सुनूंगा।
0: सबके लिए सुनवाते हैं ये आपकी कसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। धन्यवाद कॉल करने के लिए दिनकर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी जी,
0: नमस्कार।
2: जय जय शिव शंकर।

0: कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से हमारे अगले कॉलर का। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप दीदी?
0: बढ़िया हैं। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए।
1: दीदी, मैं सुनील कुमार।
0: सुनील
1: ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर
0: जी, आपका एड्रेस तो हमने बता दिया।
1: जी,
0: सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ दीदी, और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिग्गज वो जो गायिका थी
0: सुमन कल्याणपुर जी,
1: उनका निधन हो गया था, तो मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
0: हम सब यही, हमारी भी यही दिली तमन्ना है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और देखिए, जो ये आवाज़ें होती हैं ना, ये कभी नहीं मरती, ये हमेशा ज़िंदा रहती हैं और अमर हो जाती हैं। और इतनी खूबसूरत आवाज़ की वो मलिका।

0: रही हैं कि उनके गाने बहुत ही सुने जाते हैं, बहुत
1: जी जी वो काफी पुरानी फिल्मों में काफी गाने दिए हैं उन्होंने और काफी अच्छे उनके गाने लगते थे।
0: बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत बढ़िया गाया उन्होंने।
1: मोहम्मद रफी जी की साथ में उन्होंने काफी गाने गाए हैं,
0: तो
1: तो उन्हीं से
0: हम
1: रिलेटेड ये गाना है,
0: ठीक
1: जिंदगी
0: है।
1: इम्तिहान लेती है, ये गाना सुनना चाहता हूँ दीदी।
0: जरूर सुनवाते हैं आपको।
1: और ये गाना दीदी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे त्रिपुरा से अविनाश तेली जी हैं,
0: जी
1: ओमकार सीतापुर से हैं,
0: जी
1: और हमारा छोटा भाई मनु राजवंशी है, और पूनम जी कानपुर से हैं, और जितने हमारे छोटा सुन रहे हैं सभी को सुनाऊंगा
0: सबके
1: दीदी।
0: लिए ठीक है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का नसीब फिल्म का ये गीत।
1: जी जी
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: कॉल
1: दीदी।
0: करने के लिए, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हसीना जी से। हेलो।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, और जिसका लगता है आकाशवाणी लखनऊ में फोन, वो अपनी किस्मत पे नाच करता है।
0: क्या बात कही है आपने, क्या बात कही है, सही बात है। ये दौलत दौलत सब पीछे छोड़ दीजिए, बस हम लोग आपस में मिले और बातें करें, अच्छी अच्छी बातें हों और गाने सुने, है ना।
1: तो इसी से दुनिया चलती है मैडम।
0: हाँ, यही तो है रखा, बाकी तो सब छोड़ ही जाना है, है
1: नहीं? वो भी गाना है ना मोहब्बत का, आंसू से नहीं कदमों से नहीं
0: मोहब्बत से
1: चलती
0: है
1: दुनिया।
0: सही बात, और मोहब्बत ही बाद में याद रहती है, जो हमारा व्यवहार है ना वही रह जाता है। बाकी देखिए, खाना तो हर एक अपने हिस्से का खाता है, और जो रहता है कोई महलों में कोई झोपड़ी में, वो भी अपने ही हिस्से का, और जो जब जाते हैं ना तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाते हैं, कोई कुछ भी एक पैसा भी साथ में नहीं ले जाता है, ठीक है ना। तो जो कमाई है ना वो यहीं रह जाती है, और जो रह जाता है सबसे बड़ी चीज, हमारा व्यवहार, है ना। तो हमें
1: आप सही कह रहे हो कि खाना पीना ही सब रह जाता है मैडम। जैसे कभी खाना खाते वक्त भी हम फोन लगाते तो खाना ही छोड़ देते हैं।
0: ये आपका प्यार है, चलिए यही मोहब्बत है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो सुनवा

0: हैं आपकी पसंद का गीत, आप किसी को याद करना चाहते
1: फिल्म
0: हैं?
1: का नाम मैडम मस्ताना और गाने के बोल हैं, जब जब हम तुमको देखे हैं रिसेला मन मोर मचावे सोर सोर सोर, ऐसा काहे को होवत है रिलेला मन मोर मचावे
0: शोर शोर शोर। वाह बहुत बढ़िया गाना, चलिए तो सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

0: ई का जानै हमरा प्रेम है पहिला मन मोर मचाबै शोर शोर शोर मचाबै शोर शोर
1: शोर। तो अब मिलते हैं बस्ती से हमारे कॉलर से, जो कि बहुत समय बाद जिनका कॉल लगा है और उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, बोलिए, कहाँ चले गए?
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए, अपना नाम बताइए सबको, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो बोलिए भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो, फिर आप कहेंगे कि फोन बड़ी मुश्किल से लगा और हमारी बात भी नहीं हुई आपसे, कहाँ चले गए? हेलो हाँ बोलिए,
2: हेलो
1: जल्दी से बोलिए, अपने बारे में बताइए।
2: हेलो
1: हाँ बोलिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका।
2: हाँ मैं जनपसरा बस्ती से बोल रहा हूँ जी।
1: बस्ती से? हाँ नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
2: कार्यक्रम कोई धार्मिक फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
1: अरे वो तो सुनवा देंगे, लेकिन कार्यक्रम में कुछ आपको कहना भी होता है, अपने बारे में बताइए।
2: अपने बारे में क्या बताएं जी, हम तो नेत्रहीन है, दरवाजे पर बैठे रहते हैं, खाना खा लेते हैं।
1: कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं, रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुन के कैसा लगता है ये तो बताइए।
2: रेडियो तो सुबह स्टेशन खुल जाता है।

अच्छा तो रेट चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपको रेडियो आपका सहारा है, आपको दिन भर जो है आपको एंटरटेन भी करता है, मनोरंजन भी करता है, आपको ज्ञान भी देता है, खबरें भी देता है। आप सुबह कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही से आप लगा के बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये बातें सुन के, और आपका पूरा ध्यान रख रहा है रेडियो, इस बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। और अब आपकी पसंद, आप धार्मिक गाना सुनना चाहते हैं तो गणेश जी का ये गाना सुनवाते हैं हम आपको, ठीक है? धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में अब मिलते हैं विजय पांडे जी से। जी,
1: किस्मत से आई है बहार, आज आपसे मुलाकात भी है, दिल मसर्रत से खिल उठा है, जो आपसे वार्तालाप भी है।
0: वाह वाह,
1: आपसे बात कर पाऊँ मैं हरगिज, हर दिन जतन करता हूँ, ईश्वर दे खुशियाँ आपको, सदा निवेदन करता हूँ।
0: बहुत
1: आदरणीय दीप्ति जोशी साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी दिल से बहुत बहुत नमस्कार और आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत आभार। अब बताइए। हाँ जी, आगे बताइए, क्या कहना चाहेंगे
1: जी। आज अभिभावक दिवस है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा।
0: जरूर, स्वागत है आपका।
1: कहा गया है कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम खुद कमाते हैं, अपना खाते हैं, बल्कि दूसरों को भी खिलाते हैं, यानी माँ बाप को भी खिलाते हैं, हर तरीके से आजाद हैं, तो फिर किसी के दबाव में क्यों रहे। ऐसी सोच रखने वाले मर्द भी हैं और औरतें भी, मगर ऐसा सोचते वक्त लोग यह भूल जाते हैं कि इस काबिल उनको बनाया किसने, निखारा किसने।
0: बिल्कुल सही।
1: ऐसे लोग हकीकत से दूर होते हैं और ऐसे ही लोगों पर हर वक्त गुस्सा सवार रहता है। सच तो ये है कि हम लोग हर वक्त एक जात एक ताकत के पाबंद हैं, उसी ईश्वरीय बुजुर्गों बरतर यानी माता पिता के एहसानों के तलबगार हैं, और ईश्वर ऐसे तमाम लोगों पर अपना कर्म करें जो इस सच को भूल जाते हैं।
0: सही बात है।

0: ये समझना चाहिए कि ईश्वर क्योंकि स्वयं अपने रूप में नहीं, तो वो माँ बाप के रूप में ही आते हैं हमारी जिंदगी में, और हमको लाने का काम तो माँ बाप ही करते हैं ना, जीवन दिखाने का काम, जीवन तो वही दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो उनका हमारे ऊपर एक एहसान माँ बाप कर रहे हैं, हालांकि माँ बाप ये कभी नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना ही करना है। और एक बात और, माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है ना कि बच्चे चाहे कुछ भी करें, अत्याचार करें, कुछ भी करें, लेकिन माँ बाप के दिल से हमेशा उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं। तो ये बात सबको समझनी चाहिए कि अगर आज आप इस लायक बने हैं, इस काबिल बने हैं कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, तो ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप इस लायक बने हैं। अगर उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता, ईश्वर से आपके लिए दुआएं नहीं मांगी होती, तो कैसे हो सकता था ये समझना चाहिए लोगों को, है ना? तो अगर ऐसा हर बच्चा समझे ना, तो दुनिया में किसी भी माँ बाप को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, बुढ़ापे में जो लोग बेचारे संघर्ष करते हैं उनके साथ कभी ऐसा ना हो। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बात सबको समझनी चाहिए। कल को वो बच्चे भी माँ बाप बनते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस वो महसूस करने में इतनी देर हो जाती है कि सिर्फ पछतावे के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं आता। तो आप ऐसा मौका क्यों छोड़ें? आप अपने माँ बाप की, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया, सेवा करिए दिल से, दिल से। तो जो वो आप सेवा करेंगे ना, तो उनका जो आशीर्वाद है ना, वो आपकी जीवन भर काम आएगा। बस चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात से, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि हमको भी काफी कुछ विचार हमारे भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। ये तो है,
1: मिल जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं। चलिए तो
1: आज जो गाना आप
0: हाँ
1: सुनाए जी, वो गीत अपने हर दिल अजीज बाबा प्रेमदास जी के लिए और सभी दोस्तों के लिए समर्पित रहेगा
0: जी। चलिए तो सुनवाते हैं, ये माँ बाप फिल्म का गीत आपने पसंद किया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धन्यवाद विजय पांडे जी, बहुत अच्छा लगता है आप जो बातें हैं और आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: करते हैं भगवान जी। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। भगवान जी, ग्राम हीरापुर,
1: जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका। स्वागत है भगवान जी, कैसे हैं
1: धन्यवाद
0: आप?
1: दीदी, और कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रही हैं आप, और
0: धन्यवाद
1: बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम दीदी।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम ना आप सिर्फ हम अकेले प्रस्तुत नहीं करते हैं, हमारे श्रोता भी तो
1: जी,
0: प्रस्तुत करते हैं ना। आप लोग जब
1: और
0: साथ
1: दीदी
0: में।
1: मैं
0: हाँ
1: जी बताना चाहूंगा आज को आपको कि मैं एक नया मोबाइल लेके आया हूँ। पहला कॉल मैंने आकाशवाणी लखनऊ को ही मिलाया उस मोबाइल से दीदी।
0: वाह, बधाई हो आपको, बधाई हो, और बधाई हो आकाशवाणी लखनऊ को भी कि आपके फोन से, नए फोन से पहला कॉल लगा है। वाह, मजा आ गया।
1: जी,
0: तो चलिए, बड़ा अच्छा है। और आप ध्यान रखिए अपना, खूब कॉल लगाते रहिए, फोन का इस्तेमाल करते रहिए, ठीक है? तो
1: दीदी।
0: तो सुनवाए फिर आपको आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ दीदी, फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा, और गाने के बोले भीड़ में तन्हाई में, और दो तीन मित्रों को
0: हाँ
1: याद
0: हाँ
1: करना
0: याद
1: चाहेंगे
0: करिए,
1: दीदी।
0: बिल्कुल
1: पहले
0: नए
1: आपको डेडिकेट
0: नए
1: रहेगा
0: नए
1: प्रेमदास
0: फोन से याद करिए। हाँ
1: जी, पहले आपको डेडिकेट रहेगा प्रेमदास बाबा जी हैं, विजय पांडे जी हैं, और देवी शंकर शुक्ला जी प्रिंसिपल साहब हैं, वो
0: जी
1: गुंजन तिवारी जी हैं अयोध्या से, वो पूनम दीदी है, और अविनाश जी, और केसे सिंह राजपूत जी, मांगीलाल चंदेल जी, और रामबाबू शर्मा जी।
0: और जितने सारे लोग सुन रहे हैं सबके लिए, है ना?
1: धन्यवाद दीदी आपका
0: धन्यवाद। सुनिए,
1: जी।
0: ये है तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत, आप सुनना चाहते हैं, सुनिए।

0: हमें भी याद आते हैं हमारे सभी श्रोता, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में बार बार बताते हैं अपना फ़ोन नंबर, और हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-228825। कार्यक्रम का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो आइए सुनते हैं अब अगले कॉलर हमारे हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी, शिमला से राकेश जी कैसे हैं?
1: बहुत बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस समय जो है हमारी इधर बारिश हो रही है।

0: लगातार और प्रचंड गर्मी से जो है बिल्कुल राहत मिल गई हमारे
1: हाँ
0: यहाँ।
1: हाँ थोड़ी बहुत राहत यहाँ भी मिली है, कल बारिश हुई है हमारी तरफ भी तो, लेकिन जून का महीना है और हमें पता है ये छोटी मोटी बारिशें तो कोई इतना फर्क नहीं पैदा करती हैं। थोड़ी देर के लिए एक लग जाता है कि अरे वाह शिमला में भी बारिश ऐसी ही हो रही
0: जी,
1: होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शिमला में भी बारिश अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे जो आपके जो लखनऊ का प्रोग्राम ऐसे उफान पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सभी के जो
1: अच्छा
0: है कॉल, नए पुराने कॉलर सभी आ रहे हैं और सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं।
1: सही बात है, और आप लोगों के विचार बहुत मायने रखते हैं, इतनी अच्छी बातें आप लोग कहते हैं ना कि हमें भी
0: जी
1: खुशी
0: जी
1: होती है आपसे जुड़ने में, आपसे बात करने में, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आइए हमारे कार्यक्रम में, अपनी बात रखिए, अपने विचार हमको बताइए, और हमारे सभी श्रोताओं के विचार बहुत अनमोल होते हैं, बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है।
0: तो मैं विचार एक बात कहना चाहता हूँ,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: कहिए।
0: कि आज जो है अभी दिवस है, तो मैं हर युवा से कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो नए युवक है, तो कृपया करके आप अपने माता पिता का
1: बहुत
0: पूर्ववत
1: अच्छे,
0: ध्यान रखिए, क्योंकि
1: देखो
0: क्योंकि आप जब आप जीवन साथ जीवन में शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो अच्छी बात है, आप जीवन साथी को आप स्नेह देते हैं, उतना प्यार देते हैं, उतना सम्मान देते हैं, लेकिन उनसे पहले साथ साथ है, तो जब आप शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे युवा की है कि अपने माँ बाप को दरकिनारे कर लेते, तो ऐसा
1: गलत
0: नहीं
1: है,
0: करना चाहिए,
1: बैलेंस बना के चलना चाहिए ना
0: बैलेंस
1: जिंदगी
0: बना के चलना
1: में,
0: चाहिए,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: जरूरी
0: देखो
1: है। हाँ
0: जीवन साथ तो चलो ठीक है कि मानो कि वो लड़की आती है हमारे जीवन में, वो भी
1: हाँ
0: किसी की बेटी है,
1: तो
0: तो
1: साथ
0: लेकिन
1: मिलके
0: इसके
1: ना
0: साथ
1: एक
0: साथ जो
1: साथ
0: है
1: सेवा
0: सेवा
1: करें ना, ये भी तो अच्छा है
0: करें ना,
1: ना।
0: दोनों की सेवा
1: और
0: करें,
1: क्या,
0: कह
1: आप
0: देना कि
1: उधर जिनकी बेटी आप लेके आ रहे हैं वो भी माँ बाप
0: जी
1: हैं, इधर भी माँ बाप, आप तो कितने लकी हो कि आपको दो दो मतलब माँ बापों का आपको आशीर्वाद मिलेगा,
0: आशीर्वाद मिलता है
1: गाइडेंस मिलती
0: जी।
1: है। क्या होता है ना कि ये जो माँ बाप होते हैं जो इस उम्र में आ जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है जिंदगी का, तो बहुत
0: और
1: चीज़ें ऐसी होती
0: आकाशवाणी
1: हैं।
0: लखनऊ के माध्यम से हर बहनों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, हमारा जो हमारी बेटियां भी हैं, बहनें हैं, अगर जिन जो सुन रही हैं, कृपया करके आप जब आप किसी के साथ अपने जीवन बिताती हैं, तो कृपया करके आप इस तरह से जो है अपने माता पिता की सेवा तो करते हैं, अपने सास ससुर की सेवा भी करें, और
1: बिल्कुल
0: यह ना
1: करनी
0: सोचे कि
1: चाहिए।
0: जैसे कि कई कई लोग माता पिता कई बोलते हैं कि हम अपनी अपनी दुनिया बसाएंगे, हम अलग रहेंगे, लेकिन जब लड़की अपने माँ बाप की सेवा कर सकती है शादी के बाद, तो फिर वो लड़कों को भी साथ भी उस तरह से पेश आना चाहिए
1: अरे
0: कि
1: ये
0: अपने
1: तो
0: माँ
1: हम
0: बाप
1: कह
0: की
1: रहे हैं कि
0: सेवा भी करे।
1: कितना अच्छा लगता है, दो दो तरफ के माँ बाप आपके जीवन में आते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है, उनका अनुभव आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव उसमें देखें ना तो कितना अच्छा है। और अगर आपने
0: बिल्कुल
1: थोड़े दिन सेवा की बहुत मतलब तो खुशियां ही तो आपको मिलेंगी, है ना।
0: जी
1: जब हम
0: जी
1: किसी
0: जी
1: को
0: जी जी
1: अच्छा देते हैं ना तो हमको
0: जी
1: अंदर से खुद अच्छा महसूस होता है, और अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं ना तो सबसे
0: जी
1: पहले
0: जी
1: हमारी आत्मा ही हमको कचोटती है, तो हम
0: कष्ट
1: क्यों उसको कष्ट दें अपनी आत्मा को, क्योंकि
0: दे
1: आत्मा
0: तो
1: किसी की
0: हर
1: बुरी नहीं होती है, हम अपने
0: जी
1: विचारों को अच्छा बनाएं, अच्छे
0: जी
1: तरह सबके साथ में व्यवहार रखें, तो खुशियां
0: जी
1: ही खुशियां मिलेंगी आपको भी हमको भी, और चारों तरफ बड़ा अच्छा वातावरण होगा, और अगर
0: जी
1: लड़ाई
0: तो
1: झगड़ा
0: जी
1: करेंगे तो कितना बुरा होता है नहीं, तो
0: क्योंकि
1: इसलिए।
0: हर हर बेटों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि गाना भी इस तरह से कि भी देखो एक गाना ये संदेश देता कि तुझे सूरज का हुए चंदा,
1: हाँ इतना
0: तो मेरा
1: अच्छा
0: नाम
1: आपने,
0: करेगा रोशन, लेकिन
1: हाँ
0: अपने माँ बाप का हर बेटा रोशन नाम रोशन करे और सब बड़ी
1: और
0: रोशन करे,
1: क्या,
0: क्योंकि
1: माँ बाप और
0: अपने
1: क्या
0: माँ
1: ही चाहते हैं भाई, उनको
0: जी
1: क्या चाहिए, उनको यही तो चाहिए कि थोड़ा सा
0: जी जी जी
1: सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा कोई
0: जी
1: हमको पूछ ले, अच्छे से
0: जी
1: बुढ़ापे में हमारी देखभाल कर ले, और क्या
0: जी
1: चाहिए उनको, कोई बिल्डिंग खड़ी करके दे दो या कोई गाड़ियां दे दो, कोई माँ बाप
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: चाहता है, सब सिर्फ प्यार
0: जी
1: चाहते हैं, थोड़ा ध्यान चाहते हैं, वो दे दो,
0: जी जी
1: उसमें क्या है, तो और
0: जी
1: जितना दोगे उससे ज्यादा वापस मिलेगा, ये तो
0: जी
1: गारंटी है। आपने अगर किसी
0: बिल्कुल
1: की इज्जत की है आपको प्यार इज्जत आशीर्वाद सब मिलेगा, तो बस
0: जी
1: आपकी इतनी अच्छी बातें सुन के हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और हम
0: जी
1: सुनवाते हैं अब आपको आपकी पसंद का गीत, एक फूल दो माली फिल्म से आपने जो गीत कहा है सुनवाने के लिए, बहुत सुंदर
0: जी
1: गीत, धन्यवाद राकेश जी कॉल
0: जी
1: करने के
0: धन्यवाद।
1: लिए।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारी अगली कॉलर से। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं नमस्कार जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं, कहाँ से?
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार से।
0: कहाँ से?
1: हरियाणा हिसार से।
0: सोनिका जी, आपने पहले भी कॉल किया है, इतनी झिझक क्यों रही हैं आप बात करने में?
1: काफी दिन में कॉल लगी है।
0: कोई बात नहीं सोनिका जी, काफी दिन बाद भी कॉल लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। और कैसी हैं आप?
1: जी ठीक हूँ मैं।
0: ठीक है, उस बार तो आपने बढ़िया आलू के पराठे बनाए थे शायद।
1: जी।
0: आज
1: जी
0: क्या बनाया है एक बताएंगी?
1: हाँ तो जी, वो बूंदी का रायता बनाया है।
0: अरे वाह, बूंदी का रायता, वाह। चलिए बहुत अच्छा। और ठीक हैं आप?
1: जी ठीक हूँ मैडम,
0: क्या
1: आप
0: कहने?
1: ठीक हो?
0: हाँ हम भी ठीक हैं। क्या कहना चाहेंगी? कुछ तो कहिए।
1: काफी दिन में कॉल लगी, इसलिए खुशी बहुत हो रही है।
0: खुशी हो रही है, हमको भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: काफी दिन में लगी मैडम, जनवरी में लगी थी।
0: हाँ चलिए कोई नहीं, जनवरी में आलू का पराठा खाया और जून में बूंदी का रायता मिल रहा है हमको। चलिए अच्छी बात है। तो आपने गीत सुनना चाहा है सुमन कन्यानपुर की याद में, है ना?
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: पहचान फिल्म का ये गीत मुकेश जी के और सुमन जी के आवाज में सुनवाते हैं आपको, ठीक है?
1: जी मैडम,
0: और कुछ?
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में अब हम मिलते हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी से, जो कि हैं उज्जैन से।
1: जी नमस्ते दीप्ति जी।
0: नमस्ते प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, आकाशवाणी लखनऊ और दीप्ति जोशी का सबसे बड़ा फ्रेंड बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी,
1: मैं जब भी आपको बताऊं दीप्ति जी, जब आप कार्यक्रम में आते हो ना, तो सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मतलब उत्साह रहता है आपसे बात करने का और आकाशवाणी लखनऊ सुनने का।
0: अच्छा
1: जी हाँ, मैं
0: चलिए।
1: करीबन 6-7 महीने से जुड़ा हुआ आकाशवाणी लखनऊ से, और सबसे फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी ना आकाशवाणी लखनऊ में, आप ही से हुई थी।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: हाँ, आपके बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है, श्रोता से बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और जैसे आपको बताऊँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और
0: हाँ
1: बोलता
0: हाँ
1: हूँ कि मैं एक कृषक हूँ,
0: हाँ
1: तो आप
0: हाँ
1: बोलते हैं कि कितना अच्छा हो आप, खेती किसानी में काम करते हो देश के लिए,
0: सही
1: उन्नति
0: बात
1: करते
0: है,
1: हो,
0: ये तो
1: मतलब
0: बात सही है। ये तो मतलब ये सबको मानना चाहिए कि जो कृषक हैं वो तो सबसे बड़े हैं, हमारे यहाँ के पूजनीय हैं कृषक हमारे, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि
1: जैसे ही हमारे एक दोस्त है ना श्रवण सिंह जी, वो भी आपके कार्यक्रम सुनते हैं, वो जब आपका प्रोग्राम आता है ना तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सुनते हैं, वो जैसे ही आप हंसते हैं बोलते हैं तुरंत समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि आज दीप्ति जोशी जी आए हैं।
0: चलिए, अच्छी बात है, आप लोग पहचानते हैं और समझते हैं, तो ये बहुत हमारे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम आपको आभार प्रकट करते हैं अपना, आप सबके
1: जी
0: लिए।
1: एक बात और दीप्ति जी, जब हमारा कॉल लगता है ना आकाशवाणी लखनऊ में, तो हमें अपनी पसंद का गाना सुनने को मिलता है, उसके साथ में जब आप जैसे उद्घोषक से बात होती है तो और भी अच्छा लगता है। और मैंने जैसे भी मैं कहीं आकाशवाणी पर जुड़ता हूँ, और हमारे जो ऐसे दोस्त होते हैं वो पूछते हैं आकाशवाणी आरजे कि आपके दोस्त कौन कौन से हैं बताइए, तो मैं सबसे पहले आप ही का नाम बताता हूँ, आकाशवाणी लखनऊ से दीप्ति
0: ओहो,
1: जोशी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी, बस हो गया, बहुत हो गया।
1: जी बिल्कुल दीप्ति जी, आप कहना आपकी जितनी तारीफ की जाए
0: अरे
1: उतनी है,
0: नहीं,
1: मतलब
0: बस
1: हमने तो ऐसा
0: हाँ,
1: लगता है बस आपकी तारीफ करता जाओ हमेशा
0: तारीफ
1: के
0: आप
1: लिए।
0: सबकी है, आप सब इतना प्यार देते हैं, इतना अच्छी बातें करते हैं, आप सबसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, बस ये
1: जी
0: है
1: सर,
0: सबसे
1: कहते हैं
0: बड़ी
1: ना कि
0: चीज़।
1: आकाशवाणी तो श्रोता है और श्रोता है तो आकाशवाणी का
0: बिल्कुल, और
1: परिवार
0: क्या,
1: है।
0: बिना श्रोताओं के तो कुछ नहीं है, और आप ही लोग हैं जो
1: जी
0: कि आकाशवाणी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना?
1: जी और
0: तो
1: जैसे मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आने लगे हैं ना, तो
0: हाँ
1: आकाशवाणी का नेटवर्क फिर से बढ़ गया है।
0: हाँ ये तो है। चलिए तो
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी बिल्कुल, ये आकाशवाणी लखनऊ के लिए डेडिकेट रहेगा, क्योंकि मेरा आकाशवाणी लखनऊ मेरे लिए हीरो है।
0: हाँ, हीरो फिल्म का गीत है, ठीक है, तो
1: जी
0: सुनवाते
1: बिल्कुल
0: हैं आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
1: जी, थैंक यू सो मच।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से जो कि हैं प्रयागराज से। हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: मैं संगम नगरी प्रयागराज से लालमणि बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका लालमणि जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे बात होकर तो और भी अच्छे हो जाते
0: हैं। वाह क्या बात है। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्या बात बताना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कहना क्या चाहेंगे मैम, विजय शंकर पांडे और अभी राकेश जी ने जो बातें कही है, ऐसी बातें सुनकर बहुत सुंदर लगता है। नाम लेने के बजाय अगर कहने का मतलब ऐसे अपने विचार व्यक्त करें, अच्छी अच्छी बातें करें।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही कही। सही, कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, कोई मैटर होना चाहिए, तब मजा आ जाता है। तो अब जैसे यही एक मुद्दा है कि माँ बाप के लिए, अभिभावक के लिए जो सम्मान है वो बना के रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और अगर इस तरह की बातें हम, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत और जो लोग सुनते हैं ना, सबके घर में माँ बाप भी होते हैं और बेटे बहू भी होते हैं, बेटी भी होती है, मतलब बच्चे भी होते हैं, तो उनके कानों में ये बात जब जाएगी ना, तो हो सकता है किसी को अगर ऐसा लग रहा हो तो उसको कुछ समझ में आ जाए कि अरे हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं।
1: हाँ, सुनकर कुछ सीख आ जाए।
0: हाँ, तो जब ये होता है ना कि आदमी सुन के जब बातें, सब लोग, इतने लोग ये बात कह रहे हैं, तो वाकई कुछ तो इसमें होगा जो हम थोड़ा सा अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम इस दिशा में क्यों नहीं सोच सकते कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया, जो त्याग तपस्या होती है ना, जब आप माँ बाप बनते हैं ना तभी आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जो बच्चे अगर बड़े होके माँ बाप की का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराना भी ज़रूरी है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, ध्यान दो अपने पेरेंट्स पे। अगर बच्चे नहीं ध्यान देंगे तो बाहर वाले कैसे ध्यान क्या करेंगे, है ना, और क्यों करेंगे? तो इसलिए
1: यही सोच हर इंसान की हो जाए तो आज भी राम राज्य कायम।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राम राज्य हो जाए और सुख मिले, सब घरों में खुशियां हो, हर दिन एक त्योहार मने, है ना। जब बड़े खुश तो त्योहार होता है, बिल्कुल ये बात हम बता रहे हैं। और बड़ों का जो आशीर्वाद होता है वो उनके जाने के बाद भी आपके सर पे रहता है और बहुत मतलब हमेशा रहता है।
1: इससे पहले कहीं कि अगर जो नहीं करते तो जाने के बाद उनके हाथ पछतावे के अलावा और कुछ भी
0: कोई
1: नहीं
0: फायदा नहीं है उससे, वो समय बीत गया है नहीं, अब क्या हो सकता है। लेकिन जब आपने किया होता है तो क्या होता है, आपको भी, आपके आत्मा भी खुश रहती है कि चलो हमने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया, है नहीं। तो इसका फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में भी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये, इसीलिए ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठे तो जिससे कुछ लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, है ना। बस और हमें क्या चाहिए,
1: अब ये क्या, हम आपका नाम ले, आप हमारा नाम ले, इतनी
0: चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ ये बातें बहुत अच्छी रहती हैं। चलिए, मतलब आप लोग कुछ बोलते हैं ना, कोई विषय उठाते तो हमको भी मौका मिल जाता है अपने विचार व्यक्त करने का।
1: सही बात है।
0: चलिए ठीक है, तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। बहुत अच्छा आपने गीत सेलेक्ट किया है और ये आप आए बाहर आई फिल्म का गीत है जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: मोहम्मद रफी ने, हाँ।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: बहुत से लोग लगे होंगे लाइन पे।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं मुन्ना जी से। हेलो।
1: हाँ हेलो कहाँ जी।
0: जी भैया जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बहन जी ग्राम सुरैचा थाना गंगापुर तहसील सिधौली जिला सीतापुर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। कैसे हैं?
1: ठीक है बहन जी,
0: ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: क्या कहेंगे बहन जी, सब ठीक से सब बिता से रहे और सब मिलजुल के रहे, और क्या बताएंगे।
0: यही तो सब अच्छी बातें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कहें कि सब लोग मिलजुल के रहें, खुश रहें, है ना। तो जब मिलजुल के रहेंगे तो कोई भी तकलीफ आएगी, कोई भी कष्ट होगा तो मिलजुल के वो सही भी हो जाएगा, है ना।
1: और सब में सब कुछ हो जाता है।
0: और जब मिलजुल के रहेंगे तो कोई भी त्योहार आएगा, कोई भी खुशियाँ आएंगी, वो भी खूब अच्छे से मनाई जाएंगी, है ना।
1: सारी खुशियाँ आएंगी बहन जी।
0: हाँ, तो सबको मिलजुल के रहने में एक मजा ही आ जाता है अलग। ठीक है, तो
1: मजा अलग ही होता है।
0: सही बात है। तो आपकी पसंद का गीत सुनवाए?
1: हाँ बहन जी,
0: आप सुनना चाहते? हाँ,
1: आपके लिए है और बाकी सब सुनने वालों के लिए है।
0: ठीक है, आप सुनना चाहते हैं ये मदारी फिल्म का गीत? ठीक है, तो सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्ते बहन जी, नमस्ते, नमस्ते।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं आखिरी कॉलर से आज के। हेलो
1: दीदी, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए।
1: मैं शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: शिवा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहेंगे, फिर आपका गीत सुनवाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इस नंबर वन चैनल पे मेरा नंबर वन कॉल लगा है।
0: धन्यवाद धन्यवाद, बधाई।
1: मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता
0: हूँ, बताइए
1: छोटा सा।
0: जल्दी से बताइए
1: दीदी। एक RJ राय, और इसमें क्या है कि लोग वो आ रहे हैं तो अलग अलग लोगों को मौका मिल पाए, ऐसा आप प्लीज
0: देखिए। देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग के चॉइस नहीं होती है, आप फोन लगाते हैं, जिसका भी फोन यहाँ पर लग जाता है, ये एक तरह से लॉटरी होती है। ठीक है, आज आपकी लॉटरी लग गई, और अब बहुत समय जाया ना करते हुए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, या आपने तुम बिन फिल्म का गीत सुनवाने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

मत जा कहीं मत जा, लेकिन ऐसा है कि कार्यक्रम का समय हो गया समाप्त, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल

0: रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
1: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
0: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
0: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
0: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
1: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ

0: पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं?
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी
0: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में

0: अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी।
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
0: जी। देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।

0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है, आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी

0: जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी।
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
7: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
8: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
7: एक ऐसा कार्यक्रम
8: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
7: विकास की बातें, संगीत की मिठास
8: और एक नए भारत की आवाज।
7: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
8: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आज इस कार्यक्रम में हम श्रद्धांजलि देते हैं हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं की दिग्गज और प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने सुना गीत। फिल्म का ये गीत जिसे लिखा प्रेम धवन ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कण कण में भगवान से भरत व्यास की रचना को संगीतबद्ध किया शिवराम ने और आवाज दी सुमन कल्याणपुर ने।

0: 19 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जिंदगी और खाब फिल्म का गीत, जिसे लिखा कवि प्रदीप ने

1960 और 1970 के दशक में अपनी मखमली और सुरीली आवाज के लिए पहचाने जाने वाली सुमन जी ने भारतीय संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। आज आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए सदाबहार नगमे।

बात एक रात की। इस फिल्म का गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था सचिन देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सरफरोश से, गीत लिखा नक्श लालपुरी ने, धुन बनाई एस मोहिंदर ने और गाया सुमन कल्याणपुर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अप्रैल फूल से सुमन कल्याणपुर के साथ सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

आइए अब सुनते हैं साथी फिल्म का गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत जिसकी धुन बनाई नौशाद ने, आवाजें दी मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने।

सुमन कल्याणपुर आज हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनके मखमली आवाज़ में गाए ये गीत सदा गूंजते रहेंगे। ये थी हमारी आज की श्रद्धांजलि। अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली

0: में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्ड।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहाँ हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
6: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
7: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
8: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोतियाबिंद की समस्या और समाधान के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर वैभव जैन और उनसे भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। होम्योपैथी में संक्रामक रोगों से बचाव, इस विषय पर बताएंगे डॉक्टर अंबुज शुक्ला और उनसे भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे साहित्य में नारी चेतना का उदय, इस विषय पर वार्ता सुनिएगा डॉक्टर आराधना अस्थाना से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गोपाल सिन्हा के गाए गीत प्रस्तुत किए जाएंगे रात 8:10 पर। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
9: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा होनहार तलबा की तकरीब से खिताब कर

0: हुए कहा कि मैं पूरे नतायज को देख रहा हूं, खास तौर पर आज यहां मुनक्किद तकरीब में जहां 223 तलबा को इजाज़त से नवाजा जा रहा है जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मेरिट हासिल की जबकि लड़कों ने कम मेरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
1: यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्ता उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत के दाखिली, सलामती, अमन अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वज़ीर-ए-आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस की और हुकूमत की तजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदाद शुमार का मवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने, खानदानी मनसूबाबंदी, माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेशरफ्त की है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खदमात की तौसी, समाजी तहफ़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर निफाज, खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज से नाफिजुल अमल पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंड फॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरियस्ता वज़ीर-ए-आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वह तूफान, बारिश, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अव्वलियन तरजीह है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बहनी, जिनके उंगरी पकड़ के हम सब चलब सीखन और जिनके अचरे के छाव मा हम सब पलन बढ़न, वही हमार माता पिता हुए। बहनी, हम सब बरगद के बिरवा देखा है, वही के डाल दूर दूर तक फैल रहा है, जड़ गहरे तक होत हैं और इतना घना होत है कि वही पर चीर चुरंगुर के बसेरा के साथ वही के छाया में तमाम मनई घामे से बच के सुस्तात हैं और जुड़ात हैं। ठीक वैसा ही हमारे माता पिता के दिन संस्कार भी होत हैं, विशाल गहरे और जीवन भर छाया दे वाले। बरगद सैकड़न साल जियत है, वही के बिरवा जस जस पुरान हो जात है, तेस तेस और घना छायादार हो जात है। वैसन माता पिता के दीन संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलत हैं। वही हमका बचपन से ही सच बोलब, बड़ बड़कवन के सम्मान करब, ईमानदारी से रहब और मेहनत करब सिखावत हैं। यह मूल्य तो हमारी जड़ें हैं। जीवन में चाहे जतनी कठिन परिस्थिति होए, यह संस्कार रूपी जड़ें हमका गिरे ना ही देते हैं। हाँ श्रोता बहनी, जौनी मेर से बरगद के छाँव में सबका सुकून मिलत है, माता पिता के संस्कार भी हमका गलत राह पर जाए से रोकत हैं, झूठ लालच अहंकार की धूप से बचावत हैं। उनकर सीख ही हमार सबके सबसे बड़ी ढाल है। घर में अम्मा जब भूखे का खाना खिलावत हैं तो दया के संस्कार मिलत हैं। पिता जब पसीना बहाए के बाहर कमात हैं तो मेहनत के संस्कार मिलत हैं। उनका अपने से बड़न मने बुजुर्ग दादा दादी के सेवा कर देख के ही हमका सेवा के संस्कार मिलत हैं। त्योहार मनाऊ, परिवार संग मिलजुल के रहब, कठिन घड़ी में एक दूसरे के साथ देव, ई सब रोज के जिंदगी से हम उनके द्वारा ही तो सीखित है। अम्मा कैसे घर आए मेहमान के सेवा खातिरदारी करत हैं, पिताजी घर बाहर सबके मदद खातिर सदैव तत्पर रहते हैं, यह सब देख सुन के ही तो हम सब उन बातन का अपनाई थे। श्रोता बहनी, आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में बाहर की चमक दमक बहुत है, ऐसन में माता पिता के संस्कार ही हमका सही गलत के फर्क बतावत हैं। याद रखें कि पढ़ाई लिखाई के डिग्री हमका नौकरी तो दवा सकत है, मुला मानवता के संस्कार से ही आवत है। बहनी, हमरे सबके घर के बूढ़ बुजुर्ग मने दादा दादी नाना नानी होरे हमरे सबके माता पिता का सिखाइन और जौन बात हुई उनसे सीखिन, वही हमका सबका सिखाइन। अब हमार सबके कर्तव्य बनत है कि हम यही का अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचाई। वैसन ही यदि हम अच्छे संस्कार अपनाई तो हमार लड़का बच्चा भी परिवार रूपी वट के नई शाखा बनी है, और यदि हम संस्कार तोड़ब, अच्छी बातन का जीवन में ना अपनाई तो वंश रूपी वट हुए सूख जाई। तो बहनी, हम सब के कर्तव्य बनत है कि हम उन बातन का अपनाई, उन संस्कारन का अपनाई जो उन हमरे घर परिवार समाज और देश के मजबूती से ठाड़ रख सकें सदैव सदैव खातिर चिरकाल तक। और श्रोता बहनी, गीत संगीत भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे तक पहुँचत है और शामिल हो जाते हैं परंपरा और संस्कृति में, जिका सुन के गाय के हम सब वही का बनाए रखे थे। अब कौनो भी शुभ काम के शुरुआत में देवी गीत भी गाए जाते हैं और सुमिरन कीन जात है माता रानी के, और हम तो

0: श्रोता बहनी, ई बेरिया तो लड़कन बच्चन के गर्मी के छुट्टी चल रही है और मौसम भी अबे सुहावना है। तो ई सुहावने मौसम में मन तो करत है कि निकर परो बाहर घूमे टहरे। यह बात पर हम कुछ बहनन और ननुहार बेटियन से बात कीन। विषय है गर्मी की छुट्टी में घूमने की तैयारी। तो चलो सुना जाए ये स्थल रिकॉर्डिंग।
1: मई जून इस महीना होत है जौन की गर्मी की छुट्टी के महीना वाले नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। और हम नेहरूवन के खातिर ऐसा मौका भी रहा है जब लड़कन बच्चन के पढ़ाई लिखाई से फुर्सत रहा है। काहे से उनके स्कूल भी बंद हो जाते हैं, तो जब समय हुए फुर्सत के तो यह मन करत है कि घर से बाहर निकला जाए और तरी बाहर घूम फिर आवा जाए। अब केऊ का हरे भरे पहाड़ घूमे फिरे खातिर निकला रहते हैं, तो केऊ का नदियन के या समुद्र के किनारा, तो केऊ का ऐतिहासिक महलन का घूमक निहारक नीक लागत है। तो गर्मी की छुट्टी में हमारी सखियाँ बहनी होरी कहाँ जा रही हैं और या कहाँ जाए के प्लान बनाई हैं? चलो इन्हीं सब बातों का जाना जाए अपनी कुछ सखियों से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भावना बहनी से, जो उनकी राजाजीपुरम लखनऊ।

0: उम्र आती है। तो नमस्कार भावना बहनी।
1: नमस्कार। नमस्कार वंदना जी।
0: तो बहनी सबसे पहले प्रश्न हमारे यहाँ है कि गर्मी की छुट्टी में कहाँ घूमे जाए के विचार है आपके?
2: वैसे तो सबसे ज्यादा प्रेफर हम करेंगे अपना मायका।
0: अच्छा।
2: क्योंकि हाँ, हमें अपने मायके में ही नैनीताल, मसूरी और पहाड़ियाँ और सब तो दिख जाती है, मतलब मेरे मन में, मेरी आत्मा में बसा है
0: जी।
2: तो हम मायके ही जाना चाहते हैं।
0: वैसे भी बहनी क्या होता है कि एक साल में इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है बच्चों के चक्कर में, या सब
2: इतनी व्यस्तता है और हम घर से थोड़ा काम भी करते हैं
0: जी,
2: तो इस चक्कर में और टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बार सोच रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में पूरा एक हफ्ता मायके में बिताएं।
0: अरे वाह। वैसे मायके के जो है जो याद रहा तो हमेशा हम सबके साथ ही रहा थे, है ना? तो मायके का आनंद बिल्कुल अलग रहा था।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ना कि खाने का स्वाद बदल जाता है।
0: हाँ।
2: तो महिलाओं की सबसे बड़ी वो होती है कि अपने हाथ का खाना खा खा के हम लोग इतना बोर हो जाते हैं कि लगता है कि कुछ चेंज चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: तो मायके में जाते हैं, भाभी बढ़िया गरम गरम खाना परोसती है, खिलाती है, भाई है नुक्कर के समोसे लेके आ रहा है, चूड़ी वाली गलियां हैं, मतलब इतनी यादें जुड़ी है मायके से कि अपने मायके की जमीन पे पैर रखते ही ना एक अजीब सी ठंडक और सुकून महसूस होता है।
0: बिल्कुल। कहते हैं कि वहाँ हम लोग जो है ना तो गृहिणी हुए थे और न बहुरिया हुए थे, वहाँ हुए थे बिटिया, है ना?
2: बिटिया हुए थे। और पता है सबसे अच्छी बात ये है कि मायके में हम लोगों की अपनी एक पहचान है। जैसे कि होता क्या है ना कि हम लोग जब ससुराल में रहते हैं तो फलाने का लड़का, और मायके में अपनी एक अलग ऐसी पहचान होती है। जैसे हमारा घर का नाम रितु है।
0: अच्छा।
2: तो जब हम मायके में जाते हैं तो सब कहते हैं रितु का लड़का है। तो अपनी एक बचपन की जो वो रहती है, मतलब एक पहचान बन जाती है। और अपने घर के नाम से वहाँ बुलाने वाले बहुत लोग होते हैं जो ससुराल में बिल्कुल लुप्त हो गया है। ससुराल में तो हमारा बाहर वाला नाम ही चलता है, भावना रितु सुनने के लिए तरस जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो जितनी भी बहने हैं ये सुन के बहुत प्रसन्न हुई है कि आप मायके जा रहे हो। कैसे मायके जाए के अलग आनंद रहा है, वहाँ के जीवन एक अलग प्रकार के रहा है, वहाँ के माटी के जो खुशबू रहा है वो अलग रहा है, अपन बचपना याद दिलावत है, सखियन सहेलियों आप याद दिलावत है ना? और सबसे बड़ी बात है की भाभी है, अम्मा है, और हुआ बहुत सारी चाची चाची हो रही जिनसे सब अपने।
2: बिल्कुल बिल्कुल। गली में घुसते ही बिटिया आ गई, बिटिया आ गई सुन के बड़ा अच्छा अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है।
0: अच्छा। तो भावना बहनी आप गई हो मायके घूमे?
2: हाँ, इस बार तो मायके का ही प्रोग्राम है। और एक थोड़ा सा रीजन और है मायके जाने का
0: जी,
2: कि आजकल देखिए न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, बच्चे अपने कजिन से बिल्कुल भी मतलब उनका संपर्क नहीं हो पाता है।
0: हाँ।
2: तो हमारा ये मानना है कि गलिहाल पक्ष और ननिहाल पक्ष, ये दोनों पक्ष को बच्चे बहुत अच्छे से जाने पहचाने। बहुत दूर दूर के रिश्ते तो अब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन चाची चाचा बुआ फूफा मामा मौसी और मामी मामा, इनका तो बच्चों को होना चाहिए। और इनके जो बच्चे हैं भाई बहनों से इनका संपर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो साल में एक बार इन सबको जरूर मिलवाना चाहिए, ये हम ही लोगों का फर्ज है, हम ही लोगों का कर्तव्य है। बाकी इसके बाद क्या है, अगर दो चार दिन रुकने के बाद हमारे साइड ओरछा है, ओरछा में रामलला का मंदिर है, तो एक दो दिन हम लोग वहाँ भी घूमेंगे।
0: अच्छा।
2: तो पूरा कॉम्बो तैयार है हमारा।
0: अरे वाह। तो बहुत बढ़िया बात। आप बताओ कि जो है यही बहाने घर परिवार से मिलना हो जाता है, लड़के बच्चे भी
2: बिल्कुल
0: अपने सचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन से जो है
2: बिल्कुल
0: जान पहचान भी जाते हैं, उनसे मिला भेटा हो जाते हैं। और हम उम्मीद करीब है कि आपके जो सफर है मैके वाला ये बहुत आनंद पूर्वक जो है बीते। भावना बहनी आप हमसे बात करो, इतनी अच्छी बातें का हमसे जो है साझा करो, इसके खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी है। और श्रोता बहनी अब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी बहनी से जो उनकी एक शिक्षिका है। तो नमस्कार बहनी।
3: नमस्ते बहनी।
0: लक्ष्मी बहनी, जैसा कि आप एक शिक्षिका हो, लड़कन बच्चन के साथ साथ आपका भी गर्मी की छुट्टी के इंतजार रहा तो है बात की नहीं?
3: हाँ बहनी, बहुत रात है, पूरे साल हम जा ही नहीं पाई थे,
2: तो छुट्टी होती है
3: तो फिर कोनो न कोनो जगह खोज लेते समझे।
0: तो बहनी कहाँ घूमने के विचार है गर्मी की छुट्टी में?
3: देखो बहनी, सबसे पहले तो मैके की याद आवत है, तो दिन के लिए वहाँ जेबे, तो फिर सोच रहे ना कि महाकाल बाबा दर्शन कर ले, उज्जैन जाए का विचार है।
0: अरे वाह। अच्छा, उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन के लिए उसके बाद और कहूँ जाए के विचार है?
3: अगर जाए मिले ना तो हम फिर रामेश्वरम जेबे, कहे थे हमका समुद्र बहुत निक लागत है और पहाड़ों बहुत निक लागत है। अब थोड़ा ये रहा है ना कि चलो भाई भगवान के नाम ले,
0: हाँ,
3: ज्यादा मन करते है, और उधर प्राकृतिक सुंदरता भी देख लो।

0: दोनों काम गलत है।
1: हाँ, तो यानी कि आपका प्राकृतिक सुंदरता नीक लागत है ना।
0: हाँ,
1: और रामेश्वरम की आप बात करें तो वहाँ तो समुद्र है, समुद्र किनारे घूमब,
0: तीनों समुद्र मिलत है, हिंद महासागर है, अरब सागर है और बंगाल खाड़ी।
1: हाँ,
0: जाकर मन है यार बहुत सब देखी कैसे समुद्र कहाँ मतलब कैसे दिखाई देते हैं। वहाँ जब सूरज निकलत है डूबत है तो बहुत ही निकला लगा सुने ना सबसे।
1: अच्छा कि बिनोखे वाला सूरज देखो, सूर्य
0: संध्या
1: बेलिया वाला जो लाली वाली रहा था वो सूरज देखो, प्रकृति के आनंद है अलग है।
0: नाम तो देखा ना जैसे कब, लेकिन वो थोड़ा उत्साह जैसे पढ़ो कहो लिखा हुआ कि भाई वहाँ बहुत सुंदर लागत है,
1: नीचे
0: पानी दिखाते है समुद्र का डूबत है और निकलत है, तो यह मन करा था कि ऐसे ही जगह जगह घूमी तो घूमत संपर्क बहुत शौक है।
1: अच्छा घूमत तो नीक लागत है, लेकिन हुआ जो है लोकल बाजार तरफ कई लागत है आपका, कि आप वहाँ खरीदारी करो तो कि केवल घूमत तरफ जो है आपका नीक लागत है?
0: नहीं, थोड़ा बहुत यादगार के तौर पर ले आई थी कि वहाँ घूमत जो चीजें मशहूर रहती है तो वो जरूर ले ली थी।
1: कहा जो लौट के आओ ना तो मैंने एक पूछा था कि भाई नहीं हुआ गयू रहा तो हुआ से कोनो चिन्ह लायो कि नानी का कोनो लायो,
0: बाहर चिन्ह लेके आई।
1: और यह पूछा बहनी कि खाना पीना जो है आप कैसे आपका पसंद है, कि आप जब बाहर जाते तो हुआ के चीज आप पसंद करो तो खाओ, या फिर आपका अपने घर के हिसाब से खाना पसंद है कि हाँ भाई इससे दाल चावल रोटी सब्जी है तो हम वह खा भाई। नहीं बहुत जगह इडली डोसा मिला था, बहुत जगह मेरे लेके खाना मिला था हुआ के हिसाब से, तो आपका उम्र के खाना पसंद है?
0: हाँ सब चीजें नीचे लगती है, देखो जहाँ जाओ वैसा देश वैसा देश है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर वहाँ गए वहाँ चीजें न खाए वहाँ चीजें न देखे तो कौन खाए।
1: सही बात है,
0: तो वैसे दाले चावल नहीं लगे थे ज्यादा दाल चावल
1: भाई। हाँ अपनी कैसी अवध क्षेत्र में तो यह जो है रोज के खाना होते हैं है ना।
0: हाँ मुला जहाँ जाओ ना तो हम लोग खाए चाहिए कि पता लगे भाई कैसे स्वाद रहा थे और कैसे दिन जाते,
1: बिल्कुल खान पान के बारे में नई नई जानकारी मिलती है।
0: हाँ
1: तो वह व्यंजन हम अपनी रसोई में धीरे धीरे उन्हें बना सके थे,
0: बिल्कुल।
1: और बहनी कैसे जाब आपका पसंद है, मतलब बस से या ट्रेन से कैसे आपका सफर करना पसंद है?
0: हमको तो हर तरह से नीक लागत है, पास में तो बस से चले जाओ, दूर अगर तो ट्रेन में जाग पड़ी।
1: हाँ
0: है ना, रेलगाड़ी जाग पड़ी नहीं, कहाँ इतनी दूर बस से कहाँ जावा जा सकते थे।
1: हाँ हाँ
0: आराम हो चाहिए थोड़ा।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो बस जैसे दूरी देखते है वही हिसाब से सफर करने वाले साधन भी नीक लागत।
1: ये बात सही कहो वही कि जैसन दूरी वैसन साधन ठीक रहते हैं। तो वही आप अपने घूम जाए के बारे में आप हमसे जो है नीक नीक बातें साझा करे, उम्मीद करी थे कि आप जहाँ घूमे जाओ हुआ के सफर आपके जो है बहुत आनंदमय होए। बहुत बहुत धन्यवाद बहनी उनसे बात करे खाते। और अब हम बात करे जा रहे हैं अपर्णा बहनी से, तो नमस्कार अपर्णा बहनी।
2: नमस्ते नमस्ते
1: बहनी, गर्मी की छुट्टी है और हाँ। जब विचार आवत है गर्मी की छुट्टी के तो वही के साथ मन में तस्वीर बने जाते हैं बाहर घूमे फिरे के, कुछ दिन घर के कामे काजे से फुर्सत लेके बाहर के दुनिया से जान पहचान करेंगे। तो बहनी हाँ। आप कहाँ गई हो इस बार गर्मी की छुट्टी में?
2: अब इस बार गर्मी की छुट्टी में तो चित्रकूट जाने का विचार है।
1: तो चित्रकूट में कहाँ कहाँ घूमने के प्लान हो?
2: अब चित्रकूट क्योंकि पहली बार जाना होगा तो वहाँ पर जाकर ही देखेंगे कौन कौन से स्थान है, वैसे तो धार्मिक स्थल है ही।
1: हाँ हाँ।
2: और लेकिन जो प्रमुख स्थान है उन स्थानों पर घूमने का जरूर प्रयास होगा, जैसे कामतानाथ मंदिर हुआ, हनुमान धारा हुआ और कामदगिरी पर्वत है, तो इन सब स्थानों को देखने की इच्छा है।
1: पर्वत के बात आप करो तो आपका जो है पहाड़न पर घूमना पसंद है?
2: हाँ बहुत पसंद है, पहाड़ों पे घूमना तो बहुत ही पसंद है, वहाँ की प्रकृति को देखना, शांत प्रकृति होती है, कुछ देर के लिए सारी चीजें भूल जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो।
1: तो बहनी ये बताओ आप अपने परिवार के साथ घूमे गई हो कि आपके कोनो मित्र मंडली है सखियन सहेलियन के, तो उनके साथ आप घूमना पसंद करी हो?
2: हाँ नहीं, परिवार के साथ इस बार जाना नहीं हो रहा है, इस बार तो मित्र मंडली ही है।
1: अरे वाह।
2: हाँ तो उन लोगों के साथ जाना हो रहा है,
1: सखियन सहेलियन के साथ।
2: हाँ जी जी,
1: सखियन सहेलियन के साथ घूमे के जो उन्हें आनंद अलग हो,
2: आनंद
1: तो जाए के साधन आप कार चुने हो, बस से गई हो कि ट्रेने से गई हो?
2: हाँ जाने का साधन बस है, बस से जाएंगे हम लोग।
1: तो हाँ। कितने दिन के प्लान बनाए हो वहाँ घूमे फिरे के?
2: ये 3 दिन का प्लान है वहाँ पे।
1: अच्छा तो बहनी आप वहाँ जब घूमे गई हो तो वहाँ के जो लोकल सामान है तो वह आप खरीदत हो कि नहीं खरीदत हो?
2: हाँ कुछ कुछ प्रसाद के रूप में तो कुछ लेना होता ही है। हाँ क्योंकि धार्मिक स्थल है तो वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा प्रसाद के रूप में कोई ना कुछ सामान लेना ही रहता है।
1: हाँ हाँ, तो वहाँ का ऐसे एक्सचेंज

0: जरूरी रहा
1: हाँ,
0: ना कि लाओ कि भाई हम हुआ घूमन गए तो हम हुआ से एक चिन्ह लेके आए हैं
1: हाँ
0: इसी तरह के जो
1: इसीलिए,
0: उन्हें चिन्ह आई हो
1: हाँ
0: आए।
1: इसीलिए जरूरी होता है, हाँ इसीलिए।
0: हाँ, और बहनी फिर वहाँ के खान पान आप कैसन खाना जो उन्हें पसंद करत हो जब जा तो कहूँ बाहर घूमे तो वहाँ के लोकल खाना पसंद करत हो या अपने हिसाब से खाना।
1: अब वहाँ जो प्रसाद के रूप में मिल जाएगा वही पसंद हो जाएगा, उसमें अपना कहाँ हो पाएगा। वहाँ पे जो व्यवस्था होगी उसी तरह से वही चीज ग्रहण किया जाएगा।
0: तो बहनी
1: और
0: कामना करी थे कि आप अपने सफर पर जाओ तो खूब हंसी खुशी से आपके सफर बीते अपने सखी सहेलियन के साथ। धन्यवाद हमसे बात करेगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक नन्ही सी बिटिया रानी से जिनके नाम है आराध्या। कैसी हो आराध्या?
2: ठीक हो?
0: तो आराध्या आपका घूमना फिरना पसंद है
2: हाँ।
0: तो इस बार आप कहाँ जा रहे हो मम्मी पापा के साथ घूमे गर्मी छुट्टी में?
2: नैनीताल।
0: अच्छा नैनीताल। तो वहाँ तो खूब पहाड़ हैं जंगल हैं तो आपका पहाड़न तो घूमना पसंद है तो
2: हाँ, राइड भी है।
0: अरे वाह। और वहाँ सुना है नैनीताल झील भी है,
2: हाँ,
0: वहाँ लोग बोटिंग करते हैं, बहुमा लोग बैठ के जो उन्हें घूमत है तो नाव में बैठ के घूमी हो? अच्छा और का देखा वहाँ पसंद करी हो?
2: मैं जैसे देखना पसंद करूंगी पहाड़ और ऐसे होटल भी जैसे। हाँ,
0: अच्छा पहाड़ पे घूमना पसंद है। अच्छा वहाँ से क्या खरीद के गई हो?
2: मैं जैसे कुछ टॉयलेट से जाऊंगी, स्टेशनरी जाऊंगी और जैसे कपड़े जाऊंगी बहुत सारे।
0: अच्छा वहाँ से कपड़े भी ली हो, अरे वाह। और आपका बस में सफर करना अच्छा लगा था कि रेल में?
2: मुझको दोनों में
0: दोनों में पसंद है, सबसे ज्यादा कीमा पसंद है।
2: सबसे ज्यादा बस में।
0: और ये बताओ कि आपको बाहर खाना अच्छा लगा था कि घर के मम्मी के हाथ के खाना पसंद है?
2: घर पे मम्मी के हाथ का।
0: अच्छा मम्मी
2: हाँ
0: के हाथ का।
2: हाँ
0: तो आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है खाना?
2: पनीर और कढ़ी चावल।
0: पनीर रोटी कढ़ी चावल।
2: हाँ
0: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आप भी हो नैनीताल अपने मम्मी पापा के साथ में है ना? तो बहुत अच्छी बात है बिटिया रानी, आप हमसे इतनी अच्छी अच्छी बात करो, इसके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आपका।
3: और अब हम बात करे जा रहे हैं एक छोटी सी बिटिया सुनहरी से। तो नमस्ते सुनहरी,
4: नमस्ते। ठीक
3: कैसे हो आप?
4: हूँ।
3: तो सुनहरी ई बार गर्मी की छुट्टी में अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ घूमे जई हो?
4: गोवा।
3: गोवा जई हो। तो गोवा माँ का देखियो, वहाँ पे कहाँ घूमी हो गोवा माँ?
4: वहाँ पर समुद्र के किनारे खेलेंगे और बोट में जाएंगे, स्टीमर में बैठेंगे,
3: अच्छा
4: समुद्र के किनारे रेत से खेलेंगे।
3: तो रेत में कैसे खेली हो?
4: वहाँ पर एक बच्चों की छोटी वाली बाल्टी बिकती है तो उस बाल्टी को खरीद लेंगे, फिर जो मिट्टी होगी ना बालू उसमें समुन्दर से हल्का सा पानी लेंगे, उसको मिक्स कर देंगे, फिर जो पानी होगा वो रेत में मिक्स हो जाएगा, फिर जितनी रेत गीली होगी उसको बाल्टी में भर देंगे अच्छे से, फिर
3: अच्छा
4: बराबर कर देंगे, फिर बाल्टी को उल्टा करके थप थपाएंगे, फिर उठाएंगे तो एक घर बन जाएगा।
3: अच्छा तो वो घर का क्या कहते हैं?
4: सैंड कैसल।
3: सैंड कैसल कहते हैं, यानी रे

0: पर एक बच्चों की छोटी वाली बाल्टी बिकती है, तो उस बाल्टी को खरीद लेंगे। फिर जो मिट्टी होगी ना, बालू, उसमें समुन्दर से हल्का सा पानी लेंगे, उसको मिक्स कर देंगे। फिर जो पानी होगा वो रेत में मिक्स हो जाएगा। फिर जितनी रेत गीली होगी उसको बाल्टी में भर देंगे अच्छे से। फिर
1: अच्छा।
0: बराबर कर देंगे। फिर बाल्टी को उल्टा करके थपथपाएंगे, फिर उठाएंगे तो एक घर बन जाएगा।
1: अच्छा, तो वो घर का क्या कहते हैं?
0: सैंड कैसल।
1: सैंड कैसल कहते हैं, यानी रेत के घर है।
0: हाँ,
1: अच्छा, और समुद्र किनारे आपका का खेल पसंद है या का खा पिया पसंद है?
0: नारियल पानी हमको पीना पसंद है।
1: और यही के अलावा आप वहां से का ली हो?
0: वहां पर मैंने सुना कि काजू बहुत अच्छे मिलते हैं, मीठे मीठे भी मिलते हैं,
1: अच्छा,
0: तो वहां से हम खरीद के लाएंगे।
1: खरीद के लई हो काजू। तो काजू अकेले न खाई हो कि अपने मित्र मंडली का बटी हो भी?
0: बांटेंगे।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अकेले न खाए कि सबसे मिलजुल के खाई हो, है? तो हम उम्मीद करीत है हम अपनी सुनहरी बिटिया खातिर कि आप अपने मम्मी पापा के साथ जो है गोवा घूमे जाओ और हुआ से खूब अच्छी यादें लेके आओ और इतनी मीठी मीठी बात करे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी बिटिया।
2: हाँ तो श्रोता बहनी, अब हम सबे सुना स्थल रिकॉर्डिंग, विषय रहा गर्मी की छुट्टी में घूमने की तैयारी। जी माँ, हम बात कीन कुछ अपनी श्रोता सखियन से और कुछ ननुहार बिटियन से। जी माँ, वही घूमे जाए के बारे में मजेदार बातन का हमसे साझा करिन। और अब बेरिया है श्रोता बहनी की बढ़ चला जाए एक छोट से अंतराल घोरिया।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोता बहनी, घर परिवार में तो वैसे कई सदस्य होते हैं जिनसे हम हंसी ठिठोली करित है। जी माँ, पहल तो मनसेधु रहत हैं, दूसर देवर और तीसर नंदोई जी। अब मनसेधु और नंदोई जी के बारे में कौन बात कही जा रही है, चलो सुना जाए खेमटा माँ। स्वर है किरण गौतम बहनी के।

श्रोता बहनी, आज महीना के पहल सोमवार है और ई दिन हम ले के आए थे कुछ ऐसे लुप्त होत पकवान व्यंजनन के बारे में जानकारी जोन कबो हमरी सबकी तटिया के हिस्सा रहे मुला अब किस्सा बन के रह गए हैं। हाँ श्रोता बहनी, हम बात कर रहे हैं ऐस व्यंजन के जोन अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, या तो उनका बनावे के विधि जाने वाले नहीं रहे या फिर आधुनिक समय में मिले वाले अनेक मेर के व्यंजनन के विविधता के बीच कुछ व्यंजन आपन स्वाद से बिछुड़ गए। इन्हीं व्यंजनन में से एक है दुधबरिया, जी के बारे में हमरी बहुत सी बहिनी आजी काकी होरी जनती हुई हैं। बोला आज के पीढ़ी से पूछो तो ई नाही में मोड़ी हिलाए दे हैं। एक जमाना रहा श्रोता बहनी, जब गांवन में घरन घरन में गाय भैंस पाली जात रही, केव के द्वार गाय भैंस के बिना सूना नहीं रहत रहा, और तब दूध माठा दही भी खूब खावा जात रहा। मने घर में चाहे जाहे के कमी होए, मुला दूध के कमी नहीं रहत रही। तो दूध के अधिकता होए के कारण वैसे अनेकों मिठाई भी घर पर ही बनाई जात रही, जीमा से एक स्वादिष्ट मिठाई रही दुधबरिया। और ई मिठाई का पसंद करे वालन मा बूढ़ बुजुर्गन से लई के ननुहा लड़का बच्चा भी शामिल रहत रहे। जब गर्मी के मौसम कौनो नरमी नहीं बरतत रही तो घामे मा खेत से काम करके लौटे बड़बड़कवा और हरहा घोरू चराए के लौटे गिदारन का जरूरत रहत रही ऐसन खाद पदार्थ के, जोन उनमा ऊर्जा तो लावे साथ ही साथ जीप का भी पसंद आवे। तब बनत रहा घर पर दूध बरिया, जिमा गेहूं के आटा में थोड़ा शक्कर डार के वही का पानी डार के खूब फेटा जात रहा। दूसरी ओरिया चूल्हा पर बड़ी बटोली में चढ़ावा जात रहा दूध, जिका धीमी धीमी आंच पर पकावा जात रहा। फिर दूसरी ओरिया करहिया में देसी घी डार के चूल्हा पर चढ़ाए दिन जात रहा, और वही में गेहूं के आटा के घोल के छोट छोट बरिया चुवाए के तला जात रहा। और खूब फेटे के कारण ननुहार बरिया देसी घी के संगत पाए के बड़ी बड़ी बरियन के रूप रंगत पाए जात रही। जब सगरी बरिया तल लीन जात रही तो दूसरी ओरिया जोन चूल्हा पर धरा दूध गढ़ात रहा वही मा अंदाजे से मीठा करे खातिर शक्कर डाल दीन जात रहा। फिर वही मा परत रहे कुटी इलायची, वही के बाद तली भई बरियन का हल्के गाढ़े दूध में डार के बस लगभग 3-4 मिनट ले पकवा जात रहा, ताकि दूध के मीठापन और नमी बरिये सोख लें। अब आँच से उतार के वही का जुड़ाए खातिर धर दिन जात रहा। फिर जब घंटा खाड़ में दूध बरिया कुछ जुड़ाए जात रही तब आवत रही परोसे के बारी। हाँ, मन भवा तो सूखा मेवा डारा जात रहा, ना ही तो बिना मेवा के भी दूध बरिया जीव जबान के सेवा खातिर तैयार रहत रही। और दूध बरिया बनवे के महक के लपट ऐस उठत रही कि 2-4 पड़ोसी भी उई महक के लपट से दूधबरिया वाले घर तक रपट आवत रहे। फिर परसी जात रही दूधबरिया 4-4, 6-6 बरिया कटोरिया मा परोसा जा, वही पर गाढ़ा दूध डारा जात रहा जोन बरिया के संगत से पाक के लाल हुई जात रहा, और देखे मा गुलाब जामुन और रस मलाई के रस के संगत लागत रही। फिर का जब एक एक बरिया के मिठास मुँह में घुलत रही तो एक उत्सव मन जात रहा मुँह में, बरिया के मुलायमियत और गाढ़ा दूध के अनोखा स्वाद रच बस जात रहा जबान पर। और जौन के धारा दूध पिए में नखरा करत रहे उन्हों बड़े चाव से खाए जात रहे दूध बरिया का। तो ई रहे किस्सा दूध बरिया के श्रोता बहनी, मुला धीरे धीरे ई व्यंजन के स्वाद से मनई दूर होत गवा। कारण एक तो अब मनई गावन में भी गाय भैंस कम पाले लाग, जिसे दूध के कमी होए लाग। दूसर बात, जिनके घर दूध के उपलब्धता है भी उन्हों अब घर में खाए पिए के बस पर्याप्त मात्रा रखत हैं, बाकी दूध बेच देते हैं। तीसर बात,

कि अब बाजारन में अनेकों मेर के मिठाई उपलब्ध है जौन रेडी टू ईट में शामिल है। तो मनई दूधबरिया बनावे में पीछे हटे लाग, कारण पहले आटा के घोल से देसी घी में बरिया बनाऊ, फिर दूध का देर तक पकाऊ, थोड़ा गाढ़ा करब, फिर बरिया डार के अंदाजे से पकाऊ कि बरिया गल के फूटे ना पावे और उनके स्वाद बराबर बना रहे, जिका बनवे में समय भी लागत है और अनुभव भी। यह समय लागे वाली प्रक्रिया के कारण भी मनई दूध बरिया बनावे से पछड़े लाग। मुला हाँ, हमका पता है कि बहनों हमारी कुछ काकी दादी सखियां बहनन के रसोइया में दूध बरिया अपन मिठास जरूर घोरत हुई, और जिनकी रसोइया में अबेले ई मीठा व्यंजन नहीं बन पावा तो उनसे हम यह कहब कि बहनी आप भी दूध बरिया बनाओ और अपने ननुहारन का जरूर खवाओ। तो ई तो रहे किस्सा लुप्त होत व्यंजन दूध बरिया के। और दूध बरिया बनावे से याद आवा कि आज के दिन यानी 1 जून का हर बरस विश्व दुग्ध दिवस मनावा जात है। दूध जिका संपूर्ण आहार के बराबर के दर्जा मिला है, जो उन अनेकों पोषक तत्वों से भरपूर रहत है, और वैसे बने अनेकों पदार्थ मने घी, दही, माठा, पनीर हम सब के दैनिक खान पान के हिस्सा हैं। तो दूध से अनेकों मेर के व्यंजन बनाओ बहनी, और अपने घर परिवार के मनईन का, ननुहा लड़कन बच्चन का भी खवाओ और उनके स्वास्थ्य का सेहतमंद बनाओ। और श्रोता बनी बतावत चली कि हंसी ठाकन और मनोरंजन से भरपूर एक मजेदार हास्य नाटक माई मरे मौसी जिए के आनंद ले खातिर हो जाओ तैयार। रोजमर्रा के जिंदगी के मजेदार घटनावन चुटीले संवादन और दिलचस्प पात्रन से सजाई नाटक है बहुत मजेदार, जोन प्रसारित की जाई कार्यक्रम घर आंगन में दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का। तो श्रोता बहनी ई कार्यक्रम और ई नाटक का जो उन्हें सुनब न भूलो। और अब का है कि कार्यक्रम के बढ़िया समाप्त हो रही है, तो वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सुनना चाहते थे किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आपने लिखा है, भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और रक्षा प्रणाली में जुटे सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। शहीद फौजी हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को याद करते हैं। ये गिलहोटी गांव मोगा ज़िले के रहने वाले थे और पुलवामा हमले के दौरान ये फौजियों की बस चला रहे थे और हमले में शहीद हो गए थे। हम सब की तरफ से हार्दिक नमन करते हैं। आप सब सुनना चाहते हैं नसीब फिल्म का गीत, जिसे गाया कमलेश अनवर और सुमन कल्याणपुर ने, और आप सब सुमन कल्याणपुर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पण करना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सांडी जनपद हरदोई से विजयलक्ष्मी कुशवाहा और प्रिंसी सिंह। आप सुनना चाहते हैं नगीना फिल्म का गीत, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार व विजय पांडे जी। आप सबकी पसंद पे शक्ति फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से सुनना चाहते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

ग्राम है गांव, तहसील महेश्वर से। प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेधा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा ये मेल भेजा है भारती नागनपुरे ने। आप सब सुनना चाहते हैं दिल है बेटा फिल्म का गीत, जिसे गाया उदित नारायण ने।

दिल है बेताब इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: यह मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है।

0: नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय

0: श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
1: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
3: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर

0: 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में धान की संकर प्रजातियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। जहां धान उत्पादन करना चाहते हैं खरीफ में, तो धान की संकर प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनकी आप रोपाई की तैयारी में हैं या धान की सीधी बुआई की तैयारी में हैं, धान की सीधी बुआई की तैयारी में हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां संकर धान की नर्सरी डालना चाहते हैं किसान भाई बहन या धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
3: देखें, वर्तमान में
2: पहले नमस्कार
3: नमस्कार वर्तमान में जो संकर प्रजातियां हैं वो
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों
3: ते सब ऐसे बोले कुछ पूरा
2: हाँ।
3: तो फिर से शुरू करा काट दो के नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मैं यह आपके बीच में अच्छी तरह से संकर प्रजाति के बारे में बातें करना चाहता हूं और जो भी किसान भाई आकाशवाणी पर बैठे हों वह अपना ध्यानपूर्वक प्रजातियों के बारे में विश्लेषण सुने और उसके अनुसार कार्रवाई करें।
2: तो संकर धान की उन्नत प्रजातियों के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: संकर प्रजाति जो होती है 10-15% अधिक पैदावार देने वाली जो वैरायटीज होती है वो संकर प्रजाति के ही दर में आती है।
2: तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं संकर धान में डॉक्टर साहब?
3: एक पुरानी प्रजाति है KREH2। यह 1996 की प्रजाति है जो आज भी 30 कुंटल पर एकड़ उसकी पैदावार मिल रही है और किसान भाई उसको छोड़ नहीं रहे हैं, बहुत बेहतर प्रजाति है। इसके बाद करीब 70-75 कुंटल, 80 कुंटल, अर्थात करीब ये हमको 30 कुंटल पर एकड़ की पैदावार की प्रजातियां संकर की बहुत बेहतर आ गई हैं।
2: जैसे
3: जैसे आपका है अराइज गोल्ड 6444, इंदम 200-217, JKREH 401 और JKREH 174, 27P31 और 27P63। यह 5-7 प्रजातियां जो हैं ये 65 से लेकर के 77 कुंटल पर हेक्टेयर तक पैदावार देती
2: है। यानी एकड़ में
3: 30 कुंटल पर एकड़,
2: 30 से 32 कुंटल पर एकड़
3: तक किसान हमारा निकाल लेता है। रेंज 30 से 32 कहा जाता है, लेकिन 30 कुंटल किसान प्राप्त कर लेता है।
2: तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
3: देखिए, ये पौधे नाटे होते हैं, इनमें कलनों की संख्या अधिक होती है, बिगरस पौधा होता है, बालियां लंबी होती हैं, नंबर ऑफ दाना या बीज कहिए, सीड कहिए, पर ईयर

0: मैक्सिमम संख्या में होते हैं,
1: यानी बालियां लंबी होती
0: हैं, बालियां लंबी होती हैं और टीलर्स अधिक निकलने के नाते इसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी ढेर सारी प्रजातियां हैं।
0: हाँ, हमारे विश्वविद्यालय के नरेंद्र शंकर धान 2 है जो 125 से 30 दिन में तैयार होता है और इसकी भी पैदावार 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है और 27 क्विंटल
1: पर एकड़
0: है। और पंत शंकर धान 1 है, इसकी भी पैदावार 27 क्विंटल पर एकड़ है। इस तरह से प्रजातियां बहुत है, यूएस 312 है, बीएस आर 202 है और HRI 157 है। नरेंद्र ऊसर शंकर धान हमारे विश्वविद्यालय का बहुत मशहूर है, 3 नरेंद्र ऊसर शंकर धान 3, इसकी भी पैदावार करीब 25 क्विंटल पर एकड़ मिल जाती है।
1: तो ये जो शंकर धान की उन्नत प्रजातियां हैं, यानी धान की संकर प्रजातियां हैं, तो इनके चुनाव में कौन कौन सी खास सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए, इनके चुनाव में ये अनुवांशिक दो भिन्न प्रजातियां जो अनुवांशिक होती हैं, नर और मादा, उससे क्रॉस कराकर संकरण करा करके ये पैदा होता है। जो पहला बीज आता है उसमें ओजस्वी होता है, ओज होता है,
1: वही हाइब्रिड है।
0: अगर वह दूसरी श्रेणी का बीज लोग लेते हैं तो वह पैदावार 30-40% कम हो जाती है। इसलिए यह प्रथम बीज जो माना जाता है वही है जो दोनों के संकर से ए लाइन होती है।
1: तो ये तो उन्नत प्रजातियां हो गई, संकर प्रजातियां हो गई। अब ये बताएं कि जहां धान की रोपाई करनी है तो नर्सरी प्रबंधन भी तो जरूरी है।
0: बहुत जरूरी, नर्सरी प्रबंधन तो प्रथम है, आदर्श नर्सरी बनाना अनिवार्य है। आदर्श नर्सरी में 400 वर्ग मीटर जमीन 1 एकड़ की धान की रोपाई के लिए पर्याप्त है
1: जी।
0: अब 5 से 6 किलो बीज प्रति एकड़ की नर्सरी पड़ती है, इसकी नर्सरी बीरर होती है,
1: जैसा दाना हो।
0: हाँ, दाना बीरर होती है, दाना तो बोल्ड होगा ही, कोई भी संकर प्रजाति होगी तो
1: नहीं, पतला धान है कि मोटा धान है, हाइब्रिड में भी तो अलग अलग
0: है। हाइब्रिड में अलग अलग है, लेकिन इसकी हमेशा बुआई जो होती है, खेत में छिड़काव जो करता है किसान, वह नर्सरी बीरर डालता है। बीरर डालने से बिग्रस नर्सरी आती है और उसको 1 से 2 नर्सरी जब लगाते हैं तो उससे कल्ले अच्छे निकलते हैं। मजबूत नर्सरी का होना अनिवार्य है
1: जी।
0: जी,
1: तो 400 वर्ग मीटर में 1 एकड़ रोपाई के लिए नर्सरी डालनी है
0: जी। जी,
1: नर्सरी डालने का उपयुक्त समय क्या है?
0: नर्सरी डालने का उपयुक्त समय मई
1: के लास्ट में,
0: मई 15 मई से लेकर के 10-12 जून तक अगर नर्सरी पड़ गई तो आपको बहुत अच्छी पैदावार मिल जाएगी।
1: मई तो खत्म होता है।
0: हाँ, नर्सरी इसकी जून के प्रथम सप्ताह में किसान भाई अवश्य डाल दें जिससे कि उनको पैदावार बेहतर मिल सके।
1: डॉक्टर साहब, कितने दिन की नर्सरी संकर प्रजातियों में रोपाई के लिए उपयुक्त रहती है?
0: 25 से 30 दिन की नर्सरी
1: जैसी प्रजाति,
0: 25 से 30 दिन की नर्सरी 2 से 3 कल्ले, मतलब 2 से 3 नर्सरी के पौधे लगाए जाते हैं एक जगह पर
1: जी। और कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं संकर की कि एक एक जगह एक एक पूंजा लगता है?
0: अब एक एक जगह एक एक डालें तो मई की अगर नर्सरी है तो एक ही पौधा लगाइए तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर वो जून की नर्सरी है तो एक जगह पर 1 या 2 पौधे लगाएं।
1: तो जहां संकर धान की रोपाई करनी है तो उस खेत की तैयारी भी तो महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब।
0: उस खेत की अच्छी खासी जुताई करके, बहुत किसान है जो ढैचे की खेती करके करते हैं, बहुत से किसान हैं जो गोबर की खाद भी डालते हैं। गोबर की खाद कम से कम 60 क्विंटल पर हेक्टेयर पर एकड़ की दर से डालना चाहिए
1: जी।
0: ये बहुत अच्छा खेत तैयार करके इसकी रोपाई करते हैं।
1: और हरी खाद की पलटाई के बाद,
0: हरी खाद की पलटाई की बात करें तो अति उत्तम है।
1: खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी लगेगी
0: देखिए
1: प्रति एकड़ संकर धान की?
0: हाँ, ये नर्सरी में नहीं, रोपाई के लिए तो अलग खाद है, नर्सरी के लिए अलग खाद।
1: पहले नर्सरी की बात हो जाए।
0: हाँ, नर्सरी में हमेशा 40-20-20
1: प्रति एकड़ के हिसाब से,
0: प्रति एकड़ के हिसाब,
1: लेकिन 400 वर्ग मीटर के लिए उसी हिसाब से,
0: उसी हिसाब से निकाल लें। और इसी तरह से 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फॉस्फोरस, 30 किलो पोटास और 10 kg जिंक सल्फेट, यह 1 एकड़ नर्सरी रोपाई के लिए।
1: यानी जिस खेत में संकर प्रजातियों की रोपाई करनी है उसमें ये तत्व के रूप में मात्रा,

0: अच्छा। के रूप में डालना चाहिए।
1: लेकिन ये जो भी रासायनिक खाद है कब कब कितना प्रयोग करना है डॉक्टर साहब?
0: देखिए ये तो कई बार रिसर्च भी हो चुकी है, शोध हो चुका है, नत्रजन जो है 1/3, 1/3, 1/3, रोपाई की समय 1/3, कल्ले निकलते समय 1/3, इसके बाद आपका जब दुग्धा अवस्था आती है 1/3। नत्रजन का प्रयोग अगर 3 स्टेज में कर जाए तो बम्पर पैदावार होती है और पौधा भी विकसित रहता है। और फास्फोरस और पोटास हमेशा खेत की तैयारी के समय ही डाल देना चाहिए।
1: और जिंक सल्फेट भी?
0: जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, सफेदा रोग के लिए फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट 0.5% का घोल बना करके आप डाल दें।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की संकर प्रजातियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450-76-38-23 मेरा मोबाइल नंबर है। 9450-76-38-23

0: अरे डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की संकर प्रजातियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9450-76-38-23 मेरा मोबाइल नंबर है। 9450-76-38-23
0: एक बार और हिंदी में।
1: 9450-76-38-23
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं धान की संकर प्रजातियों के बारे में डॉक्टर साहब?
1: देखिए, पैदावार का सबसे बड़ा जब छोटी जोत हो रही है, अलगाव हो रहा है घरों में, तो छोटी जोत में हमेशा संकर प्रजाति ही किसान लगाएं तो पैदावार उनको 20% अधिक मिलेगी और जो उनकी भरपाई होना होगा उत्पादन की उससे हो सकती है।
0: डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान की संकर प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिसका चुनाव किसान भाई बहन चाहे धान की सीधी बुआई में करें या जहां धान की रोपाई करनी है उसकी नर्सरी में करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर राम प्रताप सिंह बता रहे थे धान की संकर प्रजातियों के बारे में और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए दिग्विजय नाथ सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं निर्गुण।

आप सुन रहे थे दिग्विजय नाथ सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। अब आज का लोक माधुरी कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 5 बजने को है, अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं आपसे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित

0: दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा युवा तरंग।

5:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नई उड़ान, जिसके अंतर्गत संकल्प वाणी @1947। इसके अंतर्गत विकसित भारत में जन भागीदारी, जनमत का विकसित संकल्प। ये कार्यक्रम आप ओबी पर आधारित सुनेंगे और इसे प्रस्तुत करेंगे आनंद। इसी के साथ अगला कार्यक्रम सुनिएगा समय के साथ। मुद्दा में विषय है माता पिता का वैश्विक दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, इन सब पर चर्चा। छह बजकर 30 मिनट पर लोक आयतन कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता आयुष्मान भारत योजना से गांवों में बदलाव। वार्ताकार हैं अनिल प्रताप सिंह। छह बजकर 50 मिनट पर खेती किसानी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, गर्मी में पशुओं के रोग कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आज शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता का कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे दो भेंट वार्ताएं। पहली भेंट वार्ता का विषय है मोतियाबिंद की समस्या और समाधान। इस विषय पर डॉक्टर वैभव जैन से बातचीत करेंगे आशीष चतुर्वेदी। और इसके बाद आप सुनेंगे एक और भेंट वार्ता, जिसका विषय है होम्योपैथी में संक्रामक रोगों से बचाव। इस विषय पर डॉक्टर अंबुज शुक्ला से बातचीत करेंगे आशीष चतुर्वेदी। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे आप सुनेंगे वार्ता साहित्य में नारी चेतना का उदय। वार्ताकार हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना। वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का है। आज रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार गोपाल सिन्हा के स्वर में कुछ गीत। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिएगा नाटक मिस्टर भोला एंड मिस्टर भोली। आलेख विकास श्रीवास्तव का है और निर्देशन डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव का। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शशिकांत पाठक का आदिताल में पखावज वादन आप सुनेंगे। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर कल का उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर मरकज की पेशकश है, जिसमें आप समात फरमाएंगे तकरीर शायर मशरक अल्लामा इकबाल से पेश करेंगी डॉक्टर शिफा मरियम। साथ में कलाम शायर होंगे जनाब अकील नोमानी। कल रात 10 बजे हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र की प्रस्तुति है। सुबह 7 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल का विषय है सुबह का पोषण अच्छे दिन की शुरुआत। इस विषय में श्रोताओं को जानकारी देंगी नीना सोनकर। 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम में कानपुर नगर के विषय में जानकारी देंगे राजेश श्रीवास्तव और रामपुर के बारे में शन्नू खान। दिन में 1:15 पर अपराजिता कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 वर्ष कुछ यादें कुछ बातें के अंतर्गत जयश्री कुलभास्कर पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका से नीना सोनकर की बातचीत आप सुनेंगे। और दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग।

0: दोस्तों, सपनों की उड़ान हो, नई सोच का आसमान हो और हर कदम पर कुछ नया सीखने का जुनून हो, तो समझ लीजिए कि वक्त है युवा तरंग का। दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया।
1: और साथियों, मैं हूँ सुरभि। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। साथियों, युवा सिर्फ एक उम्र का पड़ाव नहीं है, बल्कि जोश, जज्बे और बदलाव की पहचान है। यही ऊर्जा, यही उत्साह और यही सकारात्मक सोच लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम युवा तरंग में।
0: बिल्कुल, यहाँ होंगी प्रेरणादायक बातें, रोचक चर्चाएं, नई जानकारियां और ऐसे विचार जो आपके व्यक्तित्व को नई दिशा देने का काम करेंगे।
1: तो तैयार हो जाइए कुछ नया सोचने, कुछ नया सीखने और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि शारीरिक दक्षता जो हमारी होती है वह विभिन्न स्पोर्ट्स के स्पिरिट में देखा जाता है, तो फिर यह पाया जाता है कि हाँ एक अमुक गेम में यह आदमी आगे है, यानी यह बच्चा आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्कूल में पीटी भी एक अवयव होती है जो हमें स्वस्थ रखती है, अब तो योग भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे कुछ जो भी क्रियाकलाप होते हैं वह हमें हमारी शिक्षा ग्रहण करने में भी सहयोगी होते हैं, ऐसी स्थिति होती है, माना जाता है, समझा जाता है। क्या कुछ इसके पीछे का तथ्य है उसे जानने के लिए, जैसा कि आपने सुना ही, हमारे स्टूडियो में श्री शोभनाथ मिश्र साहब हैं, आप स्पोर्ट्स टीचर हैं तो ज्यादा उस पर जानकारी रखते हैं, शिक्षा के साथ साथ खेलकूद का कैसे समन्वय रखा जाए इसी विषय पर। स्वागत है मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा सबसे जरूरी है यही कहा जाता है, तो पहला ध्यान हमारा शिक्षा पर होना चाहिए या खेलकूद पर होना चाहिए या फिर दोनों को लेकर चलना चाहिए? प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ एक सामान्य परिदृश्य?
1: खेल को शिक्षा से तो हम अलग कर ही नहीं सकते, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरीके से अगर फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए, शारीरिक शिक्षा, दूसरी तरफ बात की जाए एजुकेशन की, तो एक तो बॉडी बेस्ड एजुकेशन है जो शरीर पर आधारित चीज़ों को हमको जानकारी मिलती है, और अब बच्चों की अगर बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि शुरुआती लेवल पे इनको देखना है, तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि बच्चे का रुझान देखा जाए और उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसका बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, वह किस गेम में अच्छा कर सकता है, तो इसकी पहचान जितनी जल्दी कर ली जाएगी उतना बेहतर होता है, क्योंकि समय बर्बाद करने लायक है नहीं। प्राइमरी लेवल पर ही अगर बच्चा कोई एक चैनलाइज गेम खेलने लगे तो वह उस खेल में भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि खेल में भी पारंगता आने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 3-4 साल उसकी जो कौशल है उनके बारे में सीखे। रह गई बात इसकी कि दोनों के समन्वय की।
0: जी, समन्वय पर आएंगे मिश्रा जी, लेकिन एक बात यहाँ जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में कुछ सुनते हैं कि खास जोर इस पर दिया जा रहा है कि बच्चे खेल के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करें या शिक्षा के साथ साथ खेल में भी रुचि रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्या कुछ फोकस है जो आप लोगों के बीच अभी आ रहा है?
1: हाँ, अब ऐसे में देखिए, अभी पहले एक जो नाम ही था, पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता था, चाहे उसमें खेल हो, चाहे आर्ट से जुड़ी गतिविधियां हो या जो भी सब्जेक्ट बाकी चीजें होते थे पढ़ाई के अलावा, लेकिन अब इनको को करिकुलर एक्टिविटी यानी सहगामी क्रियाकलाप कहा जा रहा है। हमारे यहाँ जैसे बाकी सब्जेक्ट में विषयों में सब में ग्रेड दिए जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी दिया जाता है। अब बात यही है ना कि जैसे कैसे यह चीज एक दूसरे की मददगार है। अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि खेल से केवल शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी उससे होता है
0: जी।
1: हमारे कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि हम देखते हैं, आके लोग बताते हैं कि बच्चा हमारा खाना पीना नहीं खाता है, कई चीजों को लेकर के हम लोग पीछे लगे रहते हैं, लेकिन मैंने देखा वही बच्चा अगर कहीं किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने लगे तो वो उसकी भूख भी बढ़ती है और वो खाना पीना भी खाना शुरू करता है और अपने आप को एकाग्रचित भी कर पाता है, क्योंकि बच्चों में बड़ी सरप्लस एनर्जी होती है और उस एनर्जी का एक तरीके से उपयोग देखा जाए तो हम खेल के माध्यम से कर सकते।
0: उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर आपने कहा कि हमें निर्धारित करना चाहिए कि उसे गेम की तरफ बढ़ाएं या फिर शिक्षा की तरफ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में यह चुनाव करना भी एक तरह से बड़ा कठिन कार्य होता है, तो जो कुछ बैकग्राउंड होता है वह तो होता है, लेकिन बच्चे के रुझान के अनुसार अगर उसे बढ़ाना है शिक्षा में तो कितने स्तर तक उसमें खेलकूद भी जरूरी हो, बच्चों को उतनी छूट दी जाए?
1: इसमें थोड़ा सा मतलब समन्वय की बात आएगी। जैसे आपने बताया कि बच्चा एक टाइम टेबल अगर बना लेता है कि हाँ हमारा ये खेलकूद के लिए हमें इतना समय निर्धारित है तो हम उस समय खेलते हैं और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तभी आती है जब बच्चा खेलकूद की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाता है और पढ़ाई उसकी छूटने लगती है, क्योंकि अभिभावकों को तभी समस्या ज्यादा होने लगती है और वो उसको खेल से छुड़ा दिया करते हैं। तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक जो टाइम टेबल बनाए रहें कि हाँ हमारा ये खेलकूद का समय है तो हम उतनी देर खेलेंगे, बाकी समय हम पढ़ाई का करेंगे। अब चूंकि वो अगर किसी खेल में है तो कहीं कल को किसी प्रतियोगिता में जा रहा है, वहां जाकर के हिस्सा ले रहा है, तो उतने समय की उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। तो अध्यापक के साथ में भी, जो भी उस विषय का अध्यापक है उसके साथ थोड़ा समन्वय बना करके इस काम को किया जा सकता है, जो उसका छूटा हुआ हिस्सा है उस चीज के लिए भी दोबारा देखा जा सकता है। रही बात इसकी कि अगर हम खेलों के माध्यम से बात करें कि कैसे मानसिक विकास जुड़ा है
0: जी,
1: तो हम कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि आप अगर कोई खेल खेल रहे हैं उस समय आप देखते होंगे आपका पूरी तरह से ध्यान एकाग्रचित उस खेल पर ही आप होंगे। आप चाहे उदाहरण बैडमिंटन का ले लीजिए, आप बैडमिंटन खेलते खेलते फोन पर बात नहीं कर सकते, शटल कॉक पर ही आपका ध्यान रहेगा, कहने का मतलब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये काम आप

0: टीवी देखते देखते या पढ़ाई करते करते भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो तनाव की स्थिति आजकल है, खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा जीतना ही नहीं हारना भी सीखता है।
1: सही,
0: क्योंकि यह एक ऐसी फील्ड है जहां हम हारते भी हैं, केवल जीतते नहीं हैं। और खेलों से तो सबसे बड़ी चीज आप देखिए ना, फुटबॉल का गेम चल रहा है। अब फुटबॉल के गेम में खिलाड़ी के लिए क्या सबसे प्रिय होता है? गोल मारना ना। लेकिन वह बच्चा अपनी उस सबसे प्यारी चीज को भी, चाहे बास्केटबॉल में देखिए, वो दूसरे को पास करता है और खुशी खुशी पास करता है कि उसके टीम का कोई खिलाड़ी गोल मार दे, उसके टीम का कोई खिलाड़ी बास्केट कर दे। तो एक तरह के से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप जो है, ये खेलों से हम सीखते हैं।
1: लक्ष्य केंद्रित होता है, अब उसमें अपने सहयोगियों का साथ कितना लिया जाए। ऐसे ही शिक्षा में हमको लगता है ये कि जब कभी भी है कंसंट्रेशन की बात, जो आपने कहा कि खेल के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो शिक्षा में भी वह आदमी आगे जा सकता है। वैसे भी हमने देखा ये है कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हुए हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर रहे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात हो, धोनी की बात हो, किसी की भी बड़े खिलाड़ी की बात हो। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ, जैसे आप लोग हैं, आप ही का उदाहरण ले लिया जाए, तो आप शिक्षा में भी उतना ही किए और खेलकूद में भी उतना ही आगे बढ़े उसमें। तो आपके साथ या फिर जो ऐसे बच्चे हैं उनके गार्जियन का क्या दायित्व होता है कि इन दोनों के बीच कैसे समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें गाइड कर सके?
0: अब सबसे पहले तो जरूरी ये है कि बच्चा चैनलाइज स्पोर्ट्स खेले। ये नहीं कि बाहर गली में चार बच्चे इकट्ठा हो गए हैं और अननेसेसरी का कोई गेम अनावश्यक खेल रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं
1: जी।
0: तो जैसे मैंने बताया, पहले उसकी रुचि देख लें, उसके शारीरिक स्थिति को देख लें। आसपास कहीं ना कहीं कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, शहरों में बच्चा रह रहा है, नहीं तो गाँव के भी बहुत सारे ऐसे गेम है, चाहे कबड्डी है, खो खो है, तमाम तरह के खेल है। तो उस खेल की ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई जगह है, तो वहां शुरुआती लेवल पे बच्चे को डालें
1: जी।
0: तो वहां वो बच्चा जो है ना, वो अच्छी ट्रेनिंग करके निकलेगा और आगे जा करके वो अच्छा कर सकेगा। रह गई बात इसकी कि आपने एक बात और कही कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों का रहा है कि वो शैक्षिक स्तर पे अच्छे नहीं रहे हैं। अभी आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लिया और मेरे पास तो कुछ उदाहरण भी हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। मानसी जोशी है, पैरा ओलंपिक बैडमिंटन की खिलाड़ी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है।
1: अच्छा।
0: इसी तरह से साथियान गणेशन एक है, टीटी के प्लेयर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियर है वो। और हीना सिंधु की बात की जाए, शूटिंग में डेंटल सर्जन है। तो ऐसा नहीं है, जो खिलाड़ी होता है, शिखा टंडन स्विमर रही है।
1: तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा और खेल दोनों में अब टेक्नोलॉजी समाहित हो गई है?
0: बिल्कुल।
1: तो टेक्नोलॉजिकल एटीट्यूड रखने के लिए, यानी अपनी सोच रखने के लिए, जो आपने कहा ना लक्ष्य केंद्रित होता है खेल में आदमी रहता है, तो दोनों में फायदा मिलता है, तो उसी का शायद ये सब
0: ये प्रभाव दिख रहा है। बिल्कुल।
1: और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसका महत्व इसी रूप में है।
0: कुल मिलाकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई करना कठिन काम है, तो खेलना या किसी और तरीके की गतिविधि को करना उससे भी ज्यादा कठिन काम है। और कोई भी खेल खेलने वाला अच्छा खिलाड़ी जो होगा, वो एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खेलने के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं होती है, या खेलने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती की जरूरत नहीं होती है। तो ये जरूरी है कि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो आप शुरुआती लेवल पे, मैं सभी अभिभावकों को यही कहूंगा कि बच्चे को किसी न किसी एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएं और चैनलाइज तरीके से कराएं। ऐसे नहीं कि मतलब वो समय की बर्बादी करे। हाँ, पढ़ाई लिखाई की बात है, उसके लिए भी जरूर आपको उसके शिक्षक से बातचीत करके रखनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल सही। और हमें लगता है यही कि जो चैनलाइज वाली बात आपने कही, यही एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अन्यथा तो खेलने को तो सब लोग खेलते हैं, गली में खेलते हैं, छत पर खेल लेते हैं, कमरे में खेल लेते हैं, कहीं भी खेल लेते हैं, वो समय की बर्बादी है। बहुत अच्छी बात आपने कही है और यही मूल मंत्र है, जो शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की आवश्यकता है उसके साथ समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ने की निश्चित सफलता मिलेगी अगर इस सूत्र को अपनाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और दे रहे हैं कि आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो आए।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था शिक्षा के साथ साथ खेलकूद का समन्वय। आशा करते हैं आपको इससे उचित जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आगे हम और भी विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं एक गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: दोस्तों, आज 1 जून को पूरी दुनिया में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन माता पिता को समर्पित है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वास्तव में दोस्तों, माता पिता का प्रेम, त्याग और समर्पण किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा विष्णुप्रिया आपने। साथियों, माता पिता हमारे जीवन के पहले शिक्षक, पहले मार्गदर्शक और पहले मित्र होते हैं। माता पिता हम बोलना, चलना, सीखना और जीवन के मूल्यों को समझना सबसे पहले उन्हीं से सीखते हैं। माता पिता केवल हमारा पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जीवन भर प्रयास करते रहते हैं।
1: सही कहा सुरभि। एक बच्चे की सफलता के पीछे अक्सर उसके माता पिता की अनगिनत कुर्बानियां छुपी होती हैं। वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार वो अपनी इच्छाओं और सपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें।
2: साथियों, आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है और तकनीक ने हमारे जीवन को बदल दिया है, तब परिवार के साथ बिताया गया समय कम होता जा रहा है। आप सबने ये बात नोटिस की होगी। दोस्तों, ऐसे में माता पिता के साथ संवाद बनाए रखना, उनकी भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, उन्हें केवल आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान और अपनापन भी उनकी जरूरत है।
1: बिल्कुल सही बात बोली सुरभि। युवा पीढ़ी के लिए ये समझना आवश्यक है कि माता पिता का अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने जीवन में अनेक संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया होता है। उनके अनुभव और सलाह हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और जीवन के कठिन रास्तों को आसान बनाते हैं।
2: बिल्कुल विष्णुप्रिया, माता पिता का जो साया है सिर पे, वही काफी है। वही समझिए भगवान की एक मेहरबानी है, आशीर्वाद है। दोस्तों, आज के युवाओं के सामने करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर तमाम चुनौतियां हैं और ऐसे समय में हमारे माता पिता का सपोर्ट, उनका विश्वास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उनका एक प्रोत्साहन भरा शब्द भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है और हम जीवन की तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: सुरभि,
2: हाँ,
1: मुझे लगता है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स केवल एक दिन का उत्सव नहीं है बल्कि ये हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा भी देता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने।
1: और हमें ये समझना चाहिए कि माता पिता के त्याग का ऋण कभी पूरी तरह से चुकाया नहीं जा सकता है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन उनका सम्मान और देखभाल करके हम उनके प्रति अपना प्रेम अवश्य व्यक्त कर सकते हैं।
2: जी दोस्तों, माता पिता की खुशी केवल आपकी बड़ी उपलब्धियों से नहीं जुड़ी होती है। साथियों, हमें समझना होगा कि वे तब भी खुश होते हैं जब उनके बच्चे उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ कुछ समय बिताते हैं। छोटी छोटी बातें भी उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जब बात मुस्कान की हो तो हमें एक गीत याद आता है, तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये गीत और
1: लेते हैं इसका आनंद। तो चलिए दोस्तों,

0: दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में माता पिता को विशेष सम्मान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, अर्थात यानी कि इसका मतलब है माता और पिता देवतुल्य हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। दोस्तों
1: जी साथियों, विष्णु प्रिया ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। दोस्तों, आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के इस अवसर पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में माता पिता को हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिस प्रकार उन्होंने बचपन में हमारा हाथ थाम कर हमें चलना सिखाया, हमें जब भूख लगती थी तो माता पिता अपने हाथों से हमें खाना खिलाते थे, उसी प्रकार बढ़ती उम्र में उनका सहारा बनना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य भी है। तो दोस्तों, आज तो हमने आपसे बहुत सारी बातें की और अधिक से अधिक विषयों पर चर्चा किया है और आपको जानकारी देने का प्रयास भी तो किया है, क्यों सुरभि?
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे यानी विष्णु प्रिया और
1: अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप नई युवा तरंग कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

जिस घर में इनका सम्मान रहे वहीं सच्चा सुख और भगवान रहे। नमस्ते, आरती आप सभी का स्वागत करती है आपके अपने कार्यक्रम नई उड़ान में। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। एक ओर हम माता पिता के वैश्विक दिवस पर उन रिश्तों को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने हमारा जीवन, जिनसे हमारा जीवन शुरू होता है, और दूसरी ओर विश्व दुग्ध दिवस हमें उस पहले पोषण की याद दिलाता है जो जीवन के शुरुआती क्षणों में ही हमें शक्ति और सुरक्षा देता है। संयोग देखिए, इन दोनों अवसरों का केंद्र भी एक ही भावना है, पालन पोषण और जीवन का आधार। माता पिता केवल हमें जन्म ही नहीं देते दोस्तों, बल्कि अपने त्याग, संघर्ष और प्रेम से हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। माँ अपनी ममता से हमारे व्यक्तित्व को सींचती है, तो पिता अपने परिश्रम से हमारे सपनों को उड़ान देते हैं। जिस तरह दूध को संपूर्ण पोषण का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह माता पिता हमारे जीवन के भावात्मक, नैतिक और सामाजिक पोषण का सबसे बड़ा स्रोत हैं। उनका स्नेह हमें मजबूती देता है, उनके संस्कार हमें सही राह दिखाते हैं और उनका विश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब माता पिता के प्रति सम्मान, उनका साथ और उनकी देखभाल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो आइए इस विशेष दिन पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि जिस तरह उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा, हम भी उनके सम्मान, स्वास्थ्य और खुशियों का उतना ही ख्याल रखेंगे, क्योंकि जीवन की हर उपलब्धि के पीछे किसी माँ की दुआ और किसी पिता का त्याग छपा होता है। आप सभी को विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता के वैश्विक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी प्यार, इसी मोहब्बत के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी, विकास केवल सरकारों की योजनाओं से नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से गति पकड़ता है। जब नागरिक जागरूक होकर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तब एक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की नींव और मजबूत होती है। ऐसे में विकसित भारत के निर्माण में आम नागरिकों की क्या भूमिका है, देश के विकास को लेकर लोगों की क्या सोच है और वे इस परिवर्तन के भागीदार बनने के लिए किस तरह से योगदान दे रहे हैं या देना चाहते हैं, इन पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथी एंकर आनंद मिश्रा के साथ आइए हम सब जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के विचार विकसित भारत में किस तरह से उनकी होगी जन भागीदारी।
1: ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे।
2: इस अमृत काल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है।
3: विद्यार्थियों को केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक नागरिक बनाना होगा।
4: हमारे देश में टेक्नोलॉजी विकसित हो और हम सब स्वदेशी सामान का उपयोग करें।
5: राष्ट्र निर्माण किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि देश के खेतों में, फैक्ट्रियों में, बाजारों में और हर नागरिक के संकल्प में होता है।
6: कुछ बुनियादी क्षेत्रों में अभी भी कमी है। एक नागरिक के तौर पर यदि हम इन कमियों को समझ लें तो हम केवल देशभक्त नहीं बल्कि वास्तविक राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
7: यदि युवाओं की सोच सकारात्मक, जिम्मेदार और राष्ट्रहित में होगी तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

साथियों, भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, तकनीक आगे बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या सिर्फ सरकार के प्रयासों से भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव होता है जब उसके नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से योगदान दें। तो आज हम इसी विषय पर उद्यमी, शिक्षक, इतिहासकार और समाज सेवियों से जानेंगे कि उनकी नजर में विकसित भारत का सपना कैसे साकार हो सकता है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नई उड़ान और मैं हूं आनंद मिश्रा। साथियों, कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार होता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनाने की प्रक्रिया भी है। एक शिक्षक रोजाना नई पीढ़ी को ज्ञान ही नहीं देता बल्कि संस्कार और जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाता है। तो आज हमारे साथ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अलका सिंह जी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में शिक्षा व्यवस्था की और एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है।
1: एक विश्वविद्यालय के शिक्षक होने के नाते जो मुझे लगता है कि हर एक शिक्षक को जो

0: इस क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसे संवाहक के रूप में कार्य करना होगा और विद्यार्थियों को केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक नागरिक बनाना होगा। आज के समय में ज्ञान के साथ साथ ये बहुत जरूरी है और समय की आवश्यकता भी है कि हम विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, अनुशासन, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करें और हमारे विद्यार्थी जो हैं ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए भारत को वास्तविक अर्थों में विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी निभाएं। और इस दिशा में जो हमारे प्रयास होने चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के दिशा में होना चाहिए, जैसे नवाचार है, शोध है, कौशल विकास है, विकसित राष्ट्र क्योंकि वही बनते हैं जो ज्ञान, तकनीक और शोध में अग्रणी होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में हमें विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने और सोचने और नए समाधान को खोजने की क्षमता को विकसित करना चाहिए और केवल पुस्तक आधारित शिक्षा या सिलेबस बेस्ड एजुकेशन नहीं बल्कि रोजगार उन्मुखी और जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देना चाहिए। युवाओं को आत्मनिर्भर और राष्ट्र के प्रति समर्पित करना होगा। वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के सही मायने और इन विषयों के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा और शिक्षक की अहम भूमिका का हिस्सा इसे बनाना होगा। साथ ही हमें स्वयं भी निरंतर सीखते रहने का प्रयास करना होगा और एक शिक्षक तभी प्रेरणा स्रोत बन सकता है जब वह अपने ज्ञान, व्यवहार और दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। तो मैं अंततः यही कहना चाहूँगी कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षक कार्यरत हैं, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, केवल वे कक्षा के अध्यापक नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं और हमें अपने विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कार, नवाचार, शोध और राष्ट्र प्रेम का समन्वय करना होगा, तभी भारत का लक्ष्य केवल सपना नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र जो है निकट भविष्य की सच्चाई बन जाएगा।
1: साथियों, देश का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं मापा जाता बल्कि इस बात से भी तय होता है कि समाज का आखिरी व्यक्ति कितना सशक्त और सम्मानजनक जीवन जी रहा है। समाज सेवी समाज की जरूरतों को करीब से देखते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे ही एक समाज सेवी शारदानंद सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि विकसित भारत के निर्माण में सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।
2: आज का भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। यदि युवाओं की सोच सकारात्मक, जिम्मेदार और राष्ट्रहित में होगी तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक नागरिक के रूप में हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करें। चाहे कोई छात्र हो, व्यापारी हो, किसान हो, इंजीनियर हो या सामाजिक कार्यकर्ता, हर व्यक्ति यदि अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और अनुशासन के साथ कार्य करेगा तो देश स्वतः आगे बढ़ेगा। आज के युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। हमें स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, कृषि, पर्यावरण और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में आगे आकर के देश के विकास में योगदान देना होगा। सिर्फ सरकार से उम्मीद करने के बजाय हमें स्वयं आगे बढ़कर बदलाव का हिस्सा बनना होगा। युवाओं की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि समाज में जागरूकता फैलाना। आज सोशल मीडिया का दौर है। यदि युवा सही जानकारी, सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण से जुड़े संदेश समाज तक पहुंचाए तो देश में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यदि देश का युवा जागरूक और जिम्मेदार होगा तो भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और विश्व में नेतृत्व भी करेगा। मेरा मानना है कि विकसित राष्ट्र का सपना केवल साकार नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों का जिम्मेदारी भी है।
1: साथियों, आज हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि हमारी देश की सीमाओं में हमारी रक्षा करने के लिए जवान तैनात हैं। और जब हम सुरक्षित होते हैं, हमारा समाज सुरक्षित होता है, तभी देश प्रगति करता है। ऐसे में विकसित राष्ट्र के लिए हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की कितनी अहम भूमिका है, इस पर राय जानने के लिए हमारे साथ पूर्व कर्नल बीरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने के लिए और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।
3: हम सबका यह दायित्व है कि जब भी चुनाव हो हम सब बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें और एक एक वोट का महत्व समझें। आपने देखा होगा कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में विकसित हथियार और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया और हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और उनके फाइटर और उन सबको भारी नुकसान पहुंचाया। ये भी हमें देखना है और ये तभी संभव है कि अनावश्यक खर्चों से बच के हम भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें, तब हमारा देश सुरक्षित होगा।
1: साथियों, कहा जाता है कि किसी भी देश की आर्थिक ताकत उसके उद्योग और व्यापार से तय होती है। इसी सोच के साथ आज हमारे साथ हैं उद्यमी रुद्र प्रताप सिंह और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में उनके नजरिए से उद्योग जगत और आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है।
4: एक उद्यमी और एक व्यापारी के तौर पर जब मैं इस सवाल पर विचार करता हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी के तीन मुख्य स्तंभ दिखाई देते हैं। लोकल फॉर वोकल और गुणवत्ता का संकल्प हमारी पहली जिम्मेदारी है। गुणवत्ता से कभी समझौता न करना। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम वैश्विक स्तर के उत्पादों का निर्माण स्थानीय स्तर पर करना होगा। जब हम एक उत्कृष्ट और मजबूत उत्पाद बनाते हैं तो हम सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे होते बल्कि हम विदेशी निर्भरता को कम कर रहे होते हैं। नकली या घटिया सामान के चलन को पीछे छोड़कर असली और टिकाऊ ब्रांड्स को बढ़ावा देना ही एक सच्चे और ईमानदार उद्यमी की पहचान है। हमारा हर प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो वैश्विक बाजार में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सीना गर्व से जोड़ा कर सके।
1: साथियों, कहते हैं कि इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए समय की जानकारी नहीं देता बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाता है। यानी कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी जड़ों से जुड़े रहने और अपने अनुभवों से सीखने पर निर्भर करती है। आज हमारे साथ भाषा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए और इतिहास संकलन समिति के प्रचार प्रमुख मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आपके नजरिए से विकसित भारत का सपना कैसे साकार हो सकता है?
5: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की चर्चा अक्सर जीडीपी या टेक्नोलॉजी तक सीमित रह जाती है, लेकिन किसी भी विकसित देश की असली ताकत मेरी समझ से उसके नागरिकों की आदतें, संस्थाओं और सामाजिक अनुशासन में होती हैं। भारत कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट में आप देख सकते हैं बहुत से सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, मोबाइल इंटरनेट, वैक्सीन उत्पादन इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ बुनियादी क्षेत्रों में अभी भी कमी है। एक नागरिक के तौर पर यदि हम इन कमियों को समझ लें तो हम केवल देशभक्त नहीं बल्कि वास्तविक राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं, जिसमें से नागरिक अनुशासन और सार्वजनिक व्यवहार प्रमुख है। भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जहां कमी दिखती है, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन कम करते हैं लोग, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना, लाइन तोड़ना, हॉर्न का अधिक उपयोग करना, सरकारी संपत्ति को निजी नहीं मानना, समय की पाबंदी की कमी, और विकसित देशों में आप अगर देखें तो क्या वहाँ पे क्या अलग है हमारे यहाँ से? वहाँ अलग यही है कि इसे जापान, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों में नियम जो हैं पुलिस के डर से नहीं लोग मानते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी से माने जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं जिन पे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। सभी को समान अवसर मिले, इन सब चीज़ों से हमारा देश अग्रणी भूमिका निभाएगा।
1: तो सुना आपने, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि रोजगार सृजन होना जरूरी है, किसी ने शिक्षा को विकास की कुंजी बताया तो किसी ने इतिहास से सीख लेने पर भी जोर दिया और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की आवश्यकता बताई। यानी इन सभी विचारों का सार एक ही है, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और उसे पूरी ईमानदारी से निभाएगा। तो साथियों, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का साझा संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण में हम सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ

जी, तो क्या आप तैयार हैं? हमारे साथी आनंद मिश्रा, जिन लोगों के साथ जुड़े उन्होंने अपने अपने विचार विकसित किए, और दोस्तों विकसित भारत का सपना देखिए भाई, केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके केंद्र में देश का हर नागरिक है। जब जन भागीदारी, जन जागरूकता और जन सहयोग एक साथ जुड़ते हैं, तब विकास एक आंदोलन का रूप ले लेता है। स्वच्छता से लेकर डिजिटल सशक्तिकरण तक, पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक जिम्मेदारियों तक, हर छोटे से छोटा प्रयास विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बन सकता है। बस जरूरत है संकल्प की, जरूरत है ठान लेने की। तो चलिए आप भी ठान लीजिए और कोशिश करिए कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में आप क्या कुछ योगदान दे सकते हैं, उस पर विचार करिए और काम करने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं आपके लिए एक प्यारा सा ट्रैक देती हूँ।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखाई देने लगा है। कहीं रक्षा विरासत को सहेजने की पहल हो रही है, तो कहीं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, कहीं निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, तो कहीं पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी जा रही है। तो आइए रुक करते हैं प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर, जो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, नई उड़ान दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ में देश की सैन्य विरासत को समर्पित एक नई पहचान से जो जुड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती के किनारे CGCT में नौसेना शौर्य वाटिका का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। यहाँ पर सेवामुक्त INS गोमती से जुड़े विमान, हेलीकॉप्टर्स और रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक ऐसा स्थल है जहां पर हमारे सेना के शौर्य का, पराक्रम की कहानियां देखने को, महसूस करने को मिलेंगी। ये स्थल आने वाली पीढ़ियों को भारतीय नौसेना के शौर्य और योगदान से परिचित कराएगा। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत पूर्वांचल को वैश्विक आयोजनों का नया केंद्र बनाने की दिशा में गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण तेजी से उसका काम आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये करीबन 1,087 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट है, जो 20 एकड़ में फैला है, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता होगी। 5-स्टार होटल भी होंगे, 150 कमरे होंगे उसमें, और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं पर्यटन और पर्यावरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश अब वन्य जीव पर्यटन को भी नई ऊँचाई देने की तैयारी में है। CM योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, पीलीभीत और बलरामपुर में 3 लेपर्ड सफारी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव को जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित होंगे और पर्यावरण का ख्याल तो रखा ही जाएगा। फिलहाल ख्याल हमें रखना है समय का भी, और समय हमसे ये कह रहा है, आरती अब आज के कार्यक्रम से विदा ले लो, तो दीजिए अनुमति आज के कार्यक्रम से। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्ते, जय हिंद।

अभी आप नई उड़ान कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
7: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतनमन्त्रिभ्यः मन्त्रिमण्डले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायाम् अण्डर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इति स्पर्धामालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधि CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98 मिता शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् PM स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋणप्रदानं, वित्तीयसमावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथविक्रेतिजनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतनमन्त्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमन्त्रिवर्येण सह अन्यवरिष्ठनेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। नवनियुक्तमन्त्रिभ्यः विभागानाम् आवण्टनम् अनन्तरं भविष्यति। शपथग्रहणसमारोहे स्वप्नदासगुप्ता, अर्जुनसिंहः, तापसरायः, शकरघोषः च शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्रीमाल्सः अवादीत् यत्

0: पंचो जय हिंद।
1: राजेश भैया।
0: हाँ रियाज भैया,
1: देखो अभिन तक का जो मौसम रहा ऐसा गर्मी रही और इतना लू चलत रहा कि आदमी वहां परेशान रहा।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से हम खुद परेशान रहे और अपने पंच भी परेशान रहे। हाँ, लेकिन अब काहे थोड़ा बहुत राहत मिल गई,
1: राहत मिली है और दयु जो है मेहरबान है, तो मेहरबान तो है भैया दयु, और मौसम भी ठीक हुआ है। मूल एक चीज के और ध्यान रखा
0: भैया,
1: काहे कि जब जैसे जैसे मौसम बदलत है ना, वैसे वैसे

0: जो है कुछ ना कुछ समस्या भी पैदा हुए लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया सही कहो, कहा से समस्या जब ही पैदा होती है जब बारिश वगैरह आ जाते हैं, मान लो मौसम सर्द मौसम रहा तो
0: हाँ
1: का है कि भैया जड़ हुआ बुखार आवत है, अभी देखें गरे तीन कल बीमार ही गई रहे।
0: अब का हुआ था कि जैसे गर्मी लगाती है तो पंखा और कूलर आदमी चलाए
1: बस
0: दिए थे,
1: वही चीजें हो
0: और बाद
1: जाती
0: में
1: हैं।
0: जो है जब मौसम ठंडा हुआ था तो बंद तो हुआ नहीं, तो हर हर हर चला करा, तो ऐसे जो है सर्दी और बुखार तो काव काव सब अपना लिया थे। तो ये मौसम में जो है हम पंचन के ध्यान रखे का है कि अपन का जब हम सेहत का ध्यान रखबे तब आगे चल के कोनो परेशानी ना हुए, कोनो भी अगर मौसम में परिवर्तन हुआ था तो वही हिसाब से हम पंचन का चले का है जौन हिसाब से मौसम चल रहा है। और ख़ास करके जौन रोग दोख लागत है, चाहे संक्रामक रोग के बात की जाए या और भी जौन चाहे मच्छर जनित तमाम ऐसे रोग हैं उनसे बचाव की बात की जाए तो इनसे भी बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल भैया सही क्यों काहे से हम जब बात की हो मच्छर जनित, तो अभी जैसे पानी बरस गया और बरसे के बाद में तमाम अंडा बच्चा मच्छर से तैयार हो जाए, काहे से पानी अगर भर जा रहा है तो वहाँ पर भैया अगर लग रहा है कि भरा है तो फिर पानी मतलब कि भरा ना रहा है तो गच्चा
0: हाँ
1: बनाए मतलब गच्चा में माटी डाल दो कम से कम मतलब कि भर जाए, और भर
0: बिल्कुल
1: जाइए तो फिर समझ लो अपन जो लाभ है वो तो बने रही है और बीमारी भी नहीं हुई है भैया कोई।
0: बिल्कुल, तो ये लिए कि साफ सफाई के भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, कहा है कहूँ भी अगर इधर उधर पानी भरा है तो पानी जमा ना हुए दिए, और अगर कहूँ भी ऐसी है कि वहाँ पानी जमा हो रहा है तो पानी निकाल दी जाए, या जैसे आप बताओ वहाँ गड्ढम जो है माटी भर दी जाए, या कुछ लोग ऐसा करते थे कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें डाल दिए थी जैसे जो है मच्छर नहीं पनपे पावत है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, अगर ज्यादा है तो अपन भैया मच्छरदानी का इस्तेमाल करो तब ही राहत
0: सबसे सबसे
1: मिली
0: बढ़िया जुगाड़ यही है कि जब भी सो जाए मच्छरदानी के प्रयोग की जाए, कहे से कि तमाम और ऐसे साधन है कि जैसे मच्छर से बचे के कोशिश की जाते
1: है।
0: मूल से कोनो न कोनो दुष्परिणाम सामने आए जाते, चाहे अगरबत्ती वाली बात कर लीजिए चाहे कोनो ऐसा लोशन वोशन लगाए वाली बात की जाए, तो सबसे जौन सबसे बढ़िया तरीका है
1: आसान
0: मच्छरदानी का
1: तरीका
0: इस्तेमाल
1: है कहा
0: की
1: जाए।
0: जाए और आस पास में जो है साफ सफाई रखा जाए।
1: बिल्कुल भैया जब साफ सफाई है तो अपन जो आसपास चीजें हैं अपना स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छे से बना रही है।
0: तो ये तो है ही है, लेकिन एक चीज़ और है जो उन गांव में परिवर्तन देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके जो है आधुनिक युग में तमाम चीज़ें जो है आधुनिक हो चली जा रही हैं, चाहे बात संचार के बात की जाए चाहे गांव के विकास के बात की जाए,
1: चाहे
0: तो
1: कोई फ्राड की बात की जाए।
0: हाँ तो इमा हम पंजन के ध्यान रखे का है कि जैसे जैसे हम पंच डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे जोन ठग लोग हैं उन्हों डिजिटल होते चले जा रहे हैं, तो वह हम अपन जो है जुगाड़ ठगी के हेर ले हैं।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, कहा समय साइबर ठगी से जैसे चीजें हैं उनसे बचे है, कभी कभी का हो जाते मतलब फोन आवा और हम का OTP बताए दी हैं मतलब कि 4-5 अंकन का जो भी रहा थे वो बताए दिन, वही के बाद में बैंक से यानी जो उन कुछ है पैसा वैसा सब धड़ाक से उड़ जाते हैं, तो
0: तो
1: ऐसी चीजें से हमें बचना है और बच के तब भाई हमका अपन लाभ मिल सकता है
0: बिल्कुल
1: भैया।
0: एक साथ साथ में जो है तमाम और तरीके से ठगी हुआ तो वो से हम पंचन का बचे की ज़रूरत है, जैसे आप बात की हो कि OTP नहीं बतावे का है, वैसे और भी तमाम ऐसे तरीके हैं कि जैसे हम पंच
1: अपना
0: मोबाइल
1: यानी
0: से
1: पर्सनल डिटेल
0: हाँ
1: जो
0: जो
1: रहते वो
0: मोबाइल
1: नहीं
0: से
1: लेके।
0: या इंटरनेट के माध्यम से जोन भी लेन देन कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीन जाए, कोनो अनजाने लिंक पर जो है वका क्लिक न कीन जाए, और अभी जो उन सुरक्षा के मानक जो उन सरकार की तरफ से बतावा जाता है जो उन बैंक की तरफ से बतावा जाता है वह कहीं पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए तो हम पंच जो है बैंकिंग फ्रॉड से या जो उन साइबर
1: ठगी
0: अपराध हुआ
1: है।
0: था वह से बच सकी थे।
1: बिल्कुल भैया सही कहोगा, ऐसे तो बचावे खातिन तो देखो आज आप जानकारी लाए हो कि
0: हाँ
1: भैया तो
0: तो
1: सुनावे
0: यही के
1: खातिन
0: ऊपर
1: तो
0: एक बढ़िया जानकारी लाए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, ये विषय पर जानकारी दे रहे हैं सुशील सीतापुरी भैया, तो जानकारी लीन जाए और समझा जाए का।
1: बिल्कुल भैया।
2: हमारा देश डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तकनीकीकरण का यह समय जहां एक ओर अवसरों के मामले में प्रगति का वाहक बन रहा है, वहीं दूसरी ओर तमाम तरह की चुनौतियां भी पैदा कर रहा है। ऐसे में इसको लेकर हम सबकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ग्रामीण भारत भी तकनीक के इस दौर से अछूता नहीं है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच दूर दराज के गांवों तक सुलभ है। एक आंकड़े के अनुसार डिजिटल सेवाओं के आधे से अधिक उपयोगकर्ता ग्रामीण भारत से संबंध रखते हैं। उन्हें भी किफ़ायती डेटा और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा हासिल है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, टेलीमेडिसिन और ई लर्निंग जैसी डिजिटल सेवाओं ने ग्रामीणों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन किया है, पर इसी के साथ साइबर सुरक्षा का सवाल भी सामने आ खड़ा हुआ।

है। साइबर सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो डिजिटल के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर और डेटा को गलत लोगों की पहुंच से बचाना है। आज ग्रामीण भारत में जिस तरह की इंटरनेट पहुंच बढ़ रही है, उसे देखते हुए साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा करना अत्यावश्यक हो गया है। इसके अलावा धोखाधड़ी के लगातार बढ़ते मामलों के चलते भी साइबर सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। साइबर खतरे दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक ऑनलाइन धोखाधड़ी UPI के प्रयोग के मामले में सामने आ रही है। इसमें नकली ID बनाकर या फिर QR कोड के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह करना, फर्जी सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करना तथा बेटिंग ऐप्स के माध्यम से भी धोखाधड़ी किए जाने के मामले सामने आए हैं। साइबर जोखिम का दूसरा तरीका वो है जिसमें अपराधी संदिग्ध लिंक, फर्जी SMS, फिशिंग संदेश, बैंक अधिकारी बनकर कॉल करने तथा KYC अपडेट की आड़ में अपराधों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा आधार और पैन नंबर के दुरुपयोग, वन टाइम पासवर्ड चोरी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, पार्सल और कुरियर, फर्जी होटल बुकिंग तथा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर इनाम या ऑफर से संबंधित लिंक भेजकर भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। सोचनीय बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और इनका शिकार आम लोगों से लेकर खास तक समान रूप से हुए हैं। देखा जाए तो साइबर अपराध एक बड़ी समस्या के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लगातार अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर धन का नुकसान हो रहा है। अपराधी इतने शातिर होते हैं कि लोग उनकी चालों को समझ नहीं पाते और आसानी से उनके बहकावे में आ जाते हैं। अपनी सीमित जानकारी की वजह से ग्रामीण लोग इनका शिकार आसानी से हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल धोखाधड़ी अमूमन वित्तीय जागरूकता की कमी के कारण होती है। लोग यह जान नहीं पाते कि पैसे किसी गलत खाते में चले गए हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों में भी लेन देन करते समय जोखिम की संभावना बनी रहती है। लोकप्रिय डिजिटल भुगतान करते समय भी लोग ठगी को समझ नहीं पाते और उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 2021 से 2025 के बीच लगभग 52,796 करोड़ रुपए साइबर धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए। इससे समझा जा सकता है कि साइबर अपराध किस हद तक देश के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। डिजिटलीकरण ने निश्चित रूप से ग्रामीण भारत के विकास में नए अवसर पैदा किए हैं और वित्तीय सेवाओं का उपयोग सरल बनाया है। ऐसी स्थिति में उनमें जागरूकता पैदा किया जाना अपरिहार्य है। इस संदर्भ में यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का हवाला दिया जा सकता है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण समुदाय में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग करना सिखाया जाता है। इसके साथ ईमेल भेजना, इंटरनेट चलाना और ऑनलाइन भुगतान का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह पहल 1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य बेहतर डिजिटल अवसंरचना और सुशासन के माध्यम से डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

व्यवस्था का निर्माण करना है। जहां तक साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा का सवाल है, तो कुछ सावधानियां अपनाकर इनसे बचा जा सकता है। इनमें सबसे अनिवार्य है कि ऐप और सॉफ्टवेयर सिर्फ आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से ही डाउनलोड किए जाएं। अनावश्यक सॉफ्टवेयर को सिस्टम से हटा देना चाहिए। साथ ही समय समय पर सिस्टम को अपडेट भी करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिक अपडेट का विकल्प भी साइबर सुरक्षा का

0: पे हटा देना चाहिए। साथ ही समय समय पर सिस्टम को अपडेट भी करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिक अपडेट का विकल्प भी साइबर सुरक्षा का एक उपाय है, ताकि नए नए अपडेट अपने आप इंस्टॉल होते रहें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी साइबर खतरों से बचने का एक उपाय है। साइबर सुरक्षा के अन्य उपायों में ऑनलाइन बैंकिंग करते समय एक अलग बैंक खाते का उपयोग करना भी है। इस खाते में ज़रूरी धनराशि ही रखी जानी चाहिए। ब्राउज़र की हिस्ट्री को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। अनजान और अपरिचित लोगों की ओर से आए ईमेल, संदेश या लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड भी साइबर सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करने से भी बचा जाना चाहिए। बावजूद इस सब के, यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो जाता है तो उसे तुरंत अपने बैंक, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आज के समय में जब जनरेटिव एआई और सोशल मीडिया का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डिजिटल का महत्व एकाएक बढ़ गया है। आखिर हर डिजिटल गतिविधि व्यक्ति और समाज के मूल्यों पर अपना प्रभाव डालती है। ऐसे में डिजिटल तकनीक को उपयोग करते समय सुरक्षा, नैतिक मूल्यों और ईमानदारी का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर जैसे जैसे ग्रामीण समुदाय डिजिटल सेवाओं की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उन्हें साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक करना अत्यावश्यक हो गया है। जागरूकता और प्रशिक्षण दो ऐसे हथियार हैं जिनसे ग्रामीणों का जीवन तो बेहतर हो ही सकता है, इससे साइबर अपराधों में होने वाले नुकसान को कम करके संसाधनों का उपयोग देश के विकास में किया जा सकता है।
1: राजेश भैया।
2: हाँ रियाज भैया।
1: देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा विषय पर कितनी बढ़िया जानकारी दीन सुशील सीतापुरी भैया,
3: तो इनका बहुत बहुत भैया धन्यवाद।
1: अब इनका बहुत बहुत धन्यवाद तो ही है। देखो, अब अपने पंच इंतजार कर रहे हैं कि राजेश भैया कोनो बढ़िया गमकौवा गौनई लेके आए हैं, तो का लेके आए हैं सुनवा दो जरा।
3: भैया, आज का गौनई है जो खिमटा आज की है, जो साधना भारती बहनी गाय रहे हैं, बेदर्दी से प्रीत लगावे, तो सुना जाए।
1: सुना जाए, आनंद लीन जाए फिर।

0: बेदर्दी से प्रीत लगाई मुरे गोइयां। तो ये रही साधना भारती और बहुत बढ़िया गाने रही, उम्मीद है कि अपने श्रोता पंच को भी पसंद आई हुए। और एक चीज़ और है राजेश भैया,
1: हाँ हाँ रियाज
0: कि
1: भैया,
0: हम पंचन का ध्यान रखे का है कि अगर विकसित भारत बनावे का है तो इसके लिए ध्यान रखा है, कहा है कि स्वच्छ गांव हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, जब स्वच्छ हुई है तब है बीमारी कहा जाए, फिर पहले बात की जा रहा है
0: हाँ, तो इसके लिए हम पंचन का ये ध्यान रखा है, कहा है कि अपने साथ साथ माँ जो है, अपन घर के साथ माँ, अपने साथ माँ जो अपन गली है, अपन मोहल्ला है, वह स्वच्छ रहे। कहे से कि अगर एक घर गंदा है, पूरा गांव साफ है, तब वो समझ लियो कि स्वच्छता पूरी तरीके से गांव नहीं पहुंची हो, तो पूरे गांव के संक्रमित हुए के संभावना बढ़ी रहा था।
1: बिल्कुल भैया सही कहा, तो संभावना ना बढ़ेगी, अपना आस पास पास पड़ोस में जो भी
0: हाँ,
1: है अच्छे साफ सफाई रखो तभी अच्छा रहता
0: और
1: भैया।
0: इसके लिए जरूरी है सामूहिकता, कहे से कि ये तब्बे संभव है जब सामूहिक रूप से कोनो जिम्मेदारी लीन जाए और हर आदमी इसके लिए जो है उत्साहित हुए कि हमें पूरे गांव का स्वच्छ रखे का है, साफ रखे का है। तो यही लिए जो है अपन जो सरकार है, अपने चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, एक बहुत बढ़िया जो अभियान चलाएं प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, इसके तहत अब देखो गाँवन गाँव में भी तमाम तरीके के ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं कि अब गाँव तो स्वच्छ रहते हैं, कैसे कि स्वच्छता कर्मी भी गांव में रहते हैं, लेकिन स्वच्छता कर्मी के भरोसे हमें पंचन का नहीं रहे का है। जब तक सामूहिक रूप से हम पंच जिम्मेदारी न लेवे तब तक समझ लियो कि अभियान पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से तभी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तभी अपन जो देश है देश की तरक्की तभी अच्छे से हो सकता है भैया।
0: बिल्कुल, इसके लिए जो है अब जो है अब चाहे हम घर बनवावा जाए, चाहे सरकार की तरफ से जो उन घर मिले, तो वह माँ जो शौचालय के रहा बहुत ज़्यादा जरूरी रहा था, तो हम पंच भी शौचालय बनवाए थे, जो सरकार की तरफ से आवास मिले थे वहाँ तो शौचालय की रहा जरूरी है ये है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से हमका दूसर पर ना निर्भर रहेगा, खुद अगर अपने घर से ही सफाई की जाए तो इसके बाद ही दूसरे पर लागू की जा सके थे, तभी अच्छे से जो मतलब कि स्वच्छता मिशन है या कुछ भी है जो इन पर अच्छे से काम की जा सके
0: बिल्कुल, तो ई तो होगी स्वच्छता के बाद, तो मूल एक चीज़ और ज़रूरी है, कैसे कि अगर नीके से जीवन यापन करेगा अपने पंचन का, तो अपने साथ साथ में जो अपन खेती पाती है वह के अच्छा हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से जब वो अच्छी है तो अपन जो कहा जाए जीव को पाजन है अच्छे से किन जा सकते हैं, जब जीव को पाजन अच्छे से है तो अपन कहा जाए थे पूरी तरीके से समृद्ध हो सकते हैं भैया।
0: तो यही के लिए देखो जो ना अपन देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ज़्यादातर लोग किसान लोग रहते हैं, तो यही के लिए जो अपन सरकार है किसानन के भलाई के लिए काम करा करत है, और सरकार का ई उद्देश्य है कि कैसे किसानन के आमदनी जो है दुगुनी हुए और उनके जो है जीविकोपार्जन की आप बात की हो वो अच्छे तरीके से चल सके।
1: बिल्कुल भैया जब अच्छे से चले तो यही लिए देखो, चाहे पशुपालन हो जाए चाहे अपनी खेती पाती हो जाए, तो हर चीज़ अपनी खेती पाती से ही जुड़ी है, कहे से कहा जाए कि एक जुड़वा साथी रहता है खेती पाती
0: बिल्कुल,
1: से
0: जो
1: जुड़ा जो
0: हाँ
1: पशुपालन।
0: बिल्कुल, पशुपालन की आप बात की हो, पशुपालन और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना खेती के जो है अपने हरहा गुरु की कल्पना नहीं की जाए।

0: सकत कि उनका ठीक निके तीन से हम पंच रख सकी। और अपन जो हरहा गोरू हैं वो जो उनके भी पूरी तरीके से निर्भरता जो है अपने खेती पाती के ऊपर रहा है, तो अगर जो अपन खेती पाती के जो अवशेष है वो अपने हरहा गोरू का कमी आवत है, जो हरहा गोरू के जो मल मूत्र है वो अपने खेती में जो है खाद के रूप में काम आवत है।
1: बिल्कुल भैया सही कहे, कहे से अपने जो पशुन से है जो कुछ प्राप्त होते हैं वो अपने चाहे स्वास्थ्य के लिए ले चलो मतलब रख लो, चाहे खेती पाती के लिए रख लो, वो बहुत ही लाभदायक होता है। वही बात की जाए तो जो पशुन से प्राप्त की जाते हैं दूध वो भी बहुत आवश्यक होता है, वहाँ हर तरीके के कहा जाए कि संपूर्ण भोजन मतलब कि आहार माना जाता है।
0: बिल्कुल, आप देखो दूध के बात की हो तो हम पंच जब हरहा गोरू रखी थे तो यह के सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा था कि दूध उत्पादन करके हम जो है बाजार में अच्छे से अच्छा दाम प्राप्त करी। तो यही लिए जो आज के दिन है यानी 1 जून है, यह का जो है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह का यही उद्देश्य है कि जो दुग्ध उत्पाद है चाहे डेयरी उत्पाद है वह का जो है उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए और यह के लिए जो है लोगन का आत्मनिर्भर बनावा जाए।
1: बिल्कुल भैया, आत्मनिर्भर बनावा जाए, अपने जो स्वास्थ्य है वही का भी मतलब कि अगर इस्तेमाल किए जाते हैं दूध का खान पान में तो अच्छे से भी अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है।
0: बिल्कुल, यही
1: बहुत सारे जो पोषक तत्व तो हैं वो अपने दूध में उपलब्ध होते हैं।
0: तो यही लिए अपन सरकार जो है हर तरीके के अभियान चलावा करत है, वही में से जो दुग्ध उत्पादन के बात की जाए चाहे डेयरी उत्पाद के बात की जाए या का बढ़ावा दिए के लिए तमाम ऐसी योजना चला करत है। अगर हम पंच जो है बढ़ चढ़ के उसके लाभ उठाई तो पशुपालन करके जो है डेयरी उत्पाद के लिए जो है मौका करके जो है बहुत अच्छा अपन जो है व्यवसाय खड़ा कर सके।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, जब व्यवसाय खड़ा हो तो अपन जो कहा जाए से फिर आत्मनिर्भर हो सकत है।
0: तो एक तो है ये है के साथ साथ में जो है जब हरहा गुरु की बात आवत है तो हरहा गुरु के देखभाल बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनका कौन रोग दोख ना हो पाओ, इनका आहार कैसे हो, इनके व्यवस्था कैसे की जाए, तो इके ऊपर भी जानकारी हो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही के लिए आज हम एक जानकारी अपने पंचन के लिए लेके आए हैं, पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया। उनसे बतकही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ इनके बतकही सुना जाए, जाना जाए कि अपने पशुओं का संक्रामक रोगों से कैसे बचावा जाए और टीकाकरण के कौन कौन तरीका है।
1: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती का जुड़वा भाई पशुपालन है और पशुपालन में कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं जैसे संक्रामक रोग। जहां पशुओं में संक्रामक रोग की समस्या आ रही है तो उससे बचाव कैसे हो और टीकाकरण कितना जरूरी है, इसी विषय पर आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर एस के द्विवेदी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पशुओं में संक्रामक रोग कौन कौन से हैं जिनसे पशुपालक भाइयों बहनों को सजग रहना है।
3: जी, मैं सबसे पहले तो पशुपालक भाइयों को बहनों को प्रणाम करता हूं। और इस समय पशुपालन में जो समय चल रहा है बहुत गर्मी का, इसके तुरंत बाद बारिश होना शुरू होगी तो जो तनाव है उसकी वजह से तमाम सारे संक्रामक रोगों की प्रचुरता हो जाती है। जैसे बड़े पशुओं में जो गाय भैंसे हैं उसमें गला घोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़िया और लंपी जा, वुडन टंग, ये सारी बीमारियां हैं। इनके अलावा जो हमारे छोटे पशुओं में है, बकरियों में, भेड़ों में, उनमें भी पीपीआर है
2: जी।
3: उसके अलावा
2: एक तरह का प्लेग है।
3: जी प्लेग है। और इसी प्रकार से जो ये कुत्ते बिल्ली हैं उनमें भी कई तरह की कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस इन्फेक्शन, ये सब इस समय बहुत तेजी से फैलते हैं। और उसका कारण ये है बारिश में जैसे ही उमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ती है, सभी तरह के जीवाणु, विषाणु, फंगस, ये फफूंदी, ये सब
2: सक्रिय हो जाते,
3: बहुत तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, पूरे वातावरण में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है। तो कोई सांस से, कोई खाने में, भोजन के में, पानी में, इस तरह से ये सभी पशुओं को संक्रमित कर देते हैं।
2: और जब जानवर संक्रमित होता है तो उसका उत्पादन प्रभावित
3: होता है, उसका उत्पादन प्रभावित होता है। अब जो लंबी बीमारियां हैं जैसे कि आपकी लंपी स्किन डिजीज है
2: जी,
3: LSD,
2: हाँ।
3: ये हाल ही में हमारे यहाँ 4-6 साल से इसका प्रादुर्भाव हुआ है
2: जी।
3: और ये बीमारी पशु को इतना कमजोर कर देती है कि उसका उत्पादन खत्म हो जाता है, यदि गर्भित पशु है तो उसका बच्चा गिर जाता है और मृतप्राय हो जाता है
2: जी,
3: जिससे हमारे पशुपालकों को काफी आर्थिक क्षति होती है।
2: डॉक्टर साहब ये जो गला घोंटू, खुरपका, मुंहपका और लंगड़िया बुखार का आपने जिक्र किया तो इसका संक्रमण होता कैसे है?
3: ये सभी बीमारियां, ये गला घोंटू भी और खुरपका मुंहपका भी और लंगड़िया भी, ये तीनों बीमारियां भोजन से, श्वास से और पानी से, ये खाने के द्वारा और सांस के द्वारा, ये

0: एक दूसरे में फैलती हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं, जिसमें से लंगड़िया और गलाघोटू तो जीवाणुजनित है,
1: हाँ,
0: जबकि खुरपका मुंहपका
1: विषाणुजनित
0: है। इसलिए खुरपका मुंहपका तो हवा से भी फैल जाता है
1: जी।
0: इसी तरह से लंपी स्किन डिजीज वो भी विषाणुजनित है, वो मच्छरों के काटने से, इस तरह के बाहरी जो कीड़े मकोड़े हैं इनके काटने से भी फैलता है।
1: और जो लंपी चर्म रोग है वो भी तो विषाणुजनित बीमारी
0: जी, वो भी विषाणुजनित बीमारी है। और मच्छरों के और इस प्रकार के
1: मक्खियां,
0: मक्खी, इस तरह की जो बड़ी मक्खियां हैं इनके काटने से भी ये बीमारी फैलती है।
1: तो वाहक कीट मक्खी और मच्छर है।
0: मक्खी मच्छर, हाँ, एक बड़ी टैबनस फ्लाई होती है जिसको हमारे किसान भाई गांव में डांस बोलते हैं।
1: हाँ, बड़ी मक्खी,
0: बड़ी मक्खी, उसकी वजह से जिससे सर्रा भी फैलता है।
1: हाँ, हाँ।
0: एक पशु से दूसरे पशु में सर्रा, कालाजार, अपने यहाँ तो कालाजार कम होता है लेकिन बंगाल के इलाकों में या कुछ हमारे जो जहाँ पे ज्यादा पानी का
1: लोलैंड,
0: हाँ लोलैंड या वेटलैंड टाइप की जो जगह है वहां पर भी कालाजार जैसी बीमारियों को फैलाने में डांस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है।
1: डॉक्टर साहब, पशुओं में संक्रामक रोगों की बात चल रही है तो आजकल दुधारू जानवरों में संक्रामक गर्भपात भी की
0: जी, संक्रामक गर्भपात जिसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक समस्या हो गई है। और इसमें एक पशु में जो जिसमें हुआ ये इन्फेक्शन, उसका जो गर्भपात होता है उससे निकलने वाला हर स्राव
1: जी,
0: चाहे वो गर्भपात हुआ शिशु हो, उसकी झिल्लियां हो, उसका पानी हो, उसका कोई भी वहां उसके गर्भ से निकला हुआ जो पदार्थ है वो दूसरे में संक्रमण पैदा कर देता है। और पशुओं में ही नहीं, ये मनुष्यों में भी हो जाता है। अगर आपका खाल कहीं कटा फटा हुआ है तो ये मनुष्यों में भी चला जाता है, जूनोटिक बीमारी है ये।
1: अच्छा
0: जी,
1: और जो आपने कहा कि भेड़ और बकरियों में प्लेग की समस्या,
0: जी प्लेग की समस्या, उसमें भी पीपीआर होता है और ब्रुसेलोसिस भी बकरियों में खूब देखा जा रहा है
1: जी।
0: ब्रुसेलोसिस की समस्या जो बकरियों में गर्भपात है और वहां पे ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो किसान भाई बकरी या भेड़ पालन करते हैं वो झुंड में करते हैं।
1: हाँ।
0: तो एक को हुआ तो दूसरे को होने की
1: संक्रमण आसान हो
0: जाती है। जी हाँ, साथ में जो प्लेग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पीपीआर है।
1: हाँ।
0: और पीपीआर में क्या होता है, इसको हमारे यहाँ गांव में लोकल भाषा में मुहा भी कहा जाता है।
1: मुहा,
0: मुहा। इसमें क्या होता है कि मुंह के अगल बगल छाले पड़ जाते हैं
1: जी,
0: काफी तेज बुखार होता है, नाक के अगल बगल छाले और अंदर तक छाले पड़ जाते हैं जिससे नाक से, मुंह से राल, नाक से द्रव निकलता रहता है।
1: भेड़ और बकरी में,
0: भेड़ बकरी में जी, इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है उनको और धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी भूख खत्म हो जाती है, बुखार बहुत तेज रहता है 104 से 105 फारेनहाइट तक। इस तरह से धीरे धीरे वो दुर्बल होते जाते हैं क्योंकि मुंह में छाले हैं, नाक में छाले हैं तो कुछ खा नहीं पाते, वो कुछ भी खाते हैं तो चुभता है
1: और बहुत जल्दी कालकवलित हो जाते,
0: उसकी वजह से वो कालकवलित हो जाते हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि विषाणुजनित है तो उसमें दवा भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है, इसलिए इसका बचाव तो टीकाकरण ही है।
1: डॉक्टर साहब, बचाव की बात ही हम लोग करें कि जो भी पशुओं में संक्रामक रोग हैं, चाहे गलाघोटू है, खुरपका मुंहपका है, लंगड़िया बुखार है, संक्रामक गर्भपात है, लंपी चर्म रोग है या भेड़ और बकरी में पीपीआर है
0: जी,
1: तो इसका बचाव है क्या?
0: इसका सबसे सटीक बचाव जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है वो टीकाकरण।
1: अच्छा,
0: अगर समय से टीकाकरण करा लिया जाए तो इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: तो इस साल में कब कब कैसे टीका लगेगा?
0: अब ये जैसे हमारे यहाँ एक सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम
1: जी,
0: उसमें हम इन सभी बीमारियों के खिलाफ, विशेषतर केंद्र सरकार भी FMD यानी खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस, इनके रोकथाम के लिए साल में दो बार।
1: अच्छा,
0: ब्रुसेलोसिस का तो एक ही बार जीवन में टीका लगता है।
1: अच्छा, एक जानवर को
0: एक बार जो मादा जानवर को शुरू में जब वो 7-6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच की बच्चिया होती है
1: तभी लगेगा,
0: उस समय एक बार टीकाकरण हो जाएगा, फिर जीवन में उसको ब्रुसेलोसिस नहीं होता,
1: पूरा सुरक्षित
0: हो गया। सुरक्षित हो गया। और ये आपका खुरपका मुंहपका का हर 6 महीने पर अभियान पूर्वक हम लोग FMD कंट्रोल प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें पशुपालकों के द्वार पर जाकर के हमारी टीम निःशुल्क टीकाकरण करती है।
1: और गलाघोटू और लंगड़िया,
0: गलाघोटू और लंगड़िया का साल में एक बार होता है टीकाकरण, लेकिन जो छोटे पशु रहते हैं उसके लिए हमारे पशु चिकित्सालयों पर वैक्सीन रहती है, उनको कभी भी हमारे पशुपालक भाई जाकर के टीकाकरण करा सकते हैं जो छोटे पशु हैं।
1: और लंपी चर्म रोग,
0: लंपी चर्म रोग के लिए भी हमारे यहाँ ये टीकाकरण अभियान चलाया जाता है और ये भी साल में 2 बार।
1: और जो भेड़ और बकरी पालन से जुड़े पशुपालक हैं
0: जी,
1: तो पीपीआर के बारे में,

0: पीपीआर का टीकाकरण भी निःपूर्णतया निःशुल्क है और सभी हमारे पशु चिकित्सालयों पर इसके टीकाकरण के लिए वैक्सीन भेजी जाती है और टीम बनाकर हमारे पशुपालकों के द्वार पर जाकर के यदि किसी कारणवश किसी के पशु बाहर हैं, कई बार भेड़ों का झुंड बाहर गया होता है, तो वापस आने पर हमारे पशुपालक उनसे संपर्क करके उनको टीकाकरण करा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव का उपाय केवल और केवल टीकाकरण है
0: जी,
1: तो इसमें पशुपालक भाइयों बहनों की सहभागिता बढ़े, अपने 100% जानवरों का टीकाकरण कराएं, इसके लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे?
0: मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों बहनों से आह्वान करता हूं कि वो अपने सभी छोटे बड़े पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं। बड़े पशुओं में गलाघोंटू, गर्भपात और खुरपका मुंहपका का टीकाकरण, LSD का टीकाकरण, छोटे पशुओं में PPR का टीकाकरण ये अवश्य कराएं और साथ में पशुओं को टैगिंग करा करके अपने आधार कार्ड के साथ उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें ताकि उनका पशु पंजीकृत रहे और वो वास्तव में टीकाकरण करने के बाद उनका पोर्टल पर अपलोड हो जाता है जिससे हमारे पास भी रिकॉर्ड रहता है और उनको भी भविष्य में बड़ी सुविधाएं उससे प्राप्त होती
1: है। डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में संक्रामक रोग से बचाव और टीकाकरण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, पशुपालन निदेशालय आने के लिए वो कभी भी स्वागत है उनका, आ सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर वो नोट कर लें, 9453508688 94153508688।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का?
0: मैं अपने पशुपालक भाइयों बहनों से आह्वान करूंगा कि सरकार बहुत जोर शोर से उनकी आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को अपनाने के लिए, पशुपालन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है, इसलिए उनका सहयोग आवश्यक है। समय पर टीकाकरण, समय पर कृमिनाशक दवाओं का उपयोग और पशुओं को अच्छा हरा चारा, साफ सुथरा बढ़िया रहने का स्थान ये मुहैया कराते हुए अपनी आय को बढ़ाएं और पशुपालन विभाग की सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं, ये मेरा आह्वान है उनसे।
1: डॉक्टर SK द्विवेदी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं में संक्रामक रोग से बचाव और टीकाकरण कितना जरूरी है और पशुपालक भाई बहन इसे कैसे करें ताकि पशुपालन उन्नत पशुपालन हो सके और उससे खेती में आप और कामयाब हो सकें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रियाज भैया।
3: हाँ राजेश भैया,
2: देखो कत्ते नीक तरीके से जानकारी जो बीमारियां हैं पशुओं में, जैसे खुरपका हो गई, मुंहपका, ये एक ही तरीके से विषाणु जनित भैया बीमारी जो रहते हैं और बहुत सारे PPR जैसे बताए भेड़ बकरी में रहते हैं, ये जानकारी खातिर देखो डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का। और बात की जाए जो विषय रहा आज पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण, ये विषय पर इन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ये तो है, देखो राजेश भैया, अब अपने गांव में जो है हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, अब अपने पंचन का जो है गांव छोड़ के परदेश जाए की जरूरत नहीं रहा था।
2: अच्छा,
3: अब गांव में इतनी सुविधा है कि रोजी रोटी अब यहीं उपलब्ध है। अपन सरकार के ही प्रयास है कि कैसे जो है गांव में हर तरीके की सुविधा मौजूद हुए और लोगन का जो है पलायन करके बाहर जाए की जरूरत ना पड़े।
2: बिल्कुल भैया सही।
3: तो अब देखो परदेश ना जाओ, परदेश जाए से खाली अपने नुकसान नहीं ना, बल्कि जो है घरैतिन भी जो है नाराज हो जाती कि देखो भैया कि पता लाग कि जब यहाँ जरूरत है तो पता लाग कि उनसे दूर प्रदेश में पड़े हैं।
2: बिल्कुल भैया सही, क्यों कहे थे समय समय पर हर चीज़ की जरूरत रहा है तो अपने परिवार का सपोर्ट जरूर कर चाहिए, तो यही लिए देखो एक गीत गौने के माध्यम से।
3: हाँ तो देखो जब आदमी प्रदेश में रहा था तो मन तो लागत नहीं, तो यही लिए शंकर यादव उनके साथी भैया सुनाए रहे हैं कि मन ना भावे बलम परदेशिया, तो सुना जाए आनंद लीन जाए।
2: बिल्कुल भैया सुना जाए।

0: मन ना भावे बलम परदेशिया।
1: बिल्कुल रियाज भैया, बहुत अच्छा गौनई लगा।
0: ये है शंकर यादव साथी भैया, और उम्मीद है कि अपने श्रोता पंचन का पसंद आवा हुए। अब देखो अपने पंचन को बता दीन जाए कि मौसम के का मिजाज चल रहा है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से जो अपन खेती पाती होते हैं वो मौसम आधारित होता है। अगर मौसम सही सलामत रहा है भैया, कल एक बताऊँ भैया, इधर पेपरमेंट फेर रहे रहन ठीक है और उधर बारिश हो लगी, तो मतलब कि कहा जाए कि समय से हर जगह से जागरूक रहा है कि भैया तो काम तो सब हुई हुआ, लेकिन फिर भी अपने पंच जो है वो जाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जो आज की जानकारी मिली है अगले 7 दिनों तक की, ठीक है भैया, जो मतलब मौसम का पूर्वानुमान है जो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ में बौछार पड़े की संभावना है। बात की जाए पूर्वी उत्तर

0: प्रदेश में आज के दिन कहीं कहीं गरज चमक के साथ में बौछार हुई है और साथ में 2 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख का मतलब मौसम शुष्क रही है अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और बात की जाए 5 तारीख और 6 और 7 में तो मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ में फिर वर्षा होने की संभावना है। और बात की जाए यहाँ पे चेतावनी की तो मतलब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा झोंकेदार हवाएं जैसी बहुत चलेगी संभावना बन जाते हैं भैया, तो अपना जो भी चीज़ें हैं उनका एक बचाए कर रखें।
1: बिल्कुल, इसके साथ साथ में जो है अपने खेती का भी ध्यान रखा का है और अपन जो हरहा गोरू हैं इन्हों ध्यान रखा है कि इसके साथ साथ में आपन और अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब अपने पंचांग बता दी जाए कि जो ना अपन खेत के उत्पाद है यानी जो कृषि उत्पाद है उनका जो है बाजार में का दाम मिल रहा है। तो थोक मंडी बाजार जो है 4 मंडियन का है, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और गोंडा का। तो अगर गेहूं दड़ा के बात की जाए भैया तो लखनऊ मंडी में 2590 रुपया, कानपुर में 2585 रुपया, अयोध्या मंडी में 2585 रुपया और गोंडा मंडी में 2520 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
0: बिल्कुल भैया सही गेहूँ कहा है। बात की जाए चावल मोटा वाला के तो लखनऊ मंडी का 3450 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर का 3450 रुपया और अयोध्या मंडी का 3050 रुपया, गोंडा मंडी का 3025 रुपया प्रति क्विंटल।
1: चना छोटा की बात की जाए भैया तो लखनऊ मंडी में 6650 रुपया, कानपुर में 6400, अयोध्या में 6400 और गोंडा मंडी में भी जो है दाम वही रहा यानी कि 6750 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बात की जाए भैया सफ़ेद वाली यानी उजर की जो मटर अपन होते हैं वो का लखनऊ मंडी का 4430 रुपया प्रति क्विंटल और साथ में कानपुर का 4550 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या का 4250 रुपया और बात की जाए गोंडा का तो 4200 रुपया प्रति क्विंटल।
1: करक्की जो सरसों है उके दाम रहा भैया लखनऊ मंडी में 6700 रुपया, कानपुर में 7170 रुपया, अयोध्या मंडी में 6600 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल भैया सही क्यों कहे से। अब बात की जाए अपने जो मीठे में जो अधिकतम हम लोग इस्तेमाल की जाते हैं खाए में तो गुड़ पारी की जो लखनऊ मंडी में रही बात तो 4660 रुपया और कानपुर का 4200 रुपया प्रति क्विंटल।
1: उजरकी आलू के दाम भैया रहा लखनऊ मंडी में 720 रुपया, कानपुर में 620 रुपया, अयोध्या में 710 रुपया और गोंडा मंडी में 865 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल भैया बात की जाए टमाटर जो पक्का वाला है वही का तो लखनऊ मंडी का 1550 रुपया और बात की जाए कानपुर की तो 1250 रुपया, अयोध्या की 1200 रुपया और बात की जाए गोंडा मंडी की तो 1475 रुपया प्रति क्विंटल।
1: ललकई प्याज के दाम रहा लखनऊ मंडी में 1300 रुपया, कानपुर में 1270 रुपया, अयोध्या में 1200 रुपया और गोंडा में 1200 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बात की जाए सब्जी में भैया तो बैंगन की तो बैंगन जो है कानपुर मंडी का 1670 रुपया और अयोध्या मंडी का 2100 रुपया, तो यूँ तो रहा भैया बाजार भाव आज का।
1: अब अपने पंचन की बता दीजिए कि कल के कार्यक्रम में का सुनी है तो लोकायतन में सुनी है हरित सोच निर्माण में परिवार की भूमिका, ई विषय पर जानकारी दे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय भैया। और खेती किसानी कार्यक्रम अपने पंच सुनी है मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ तैयारी, ई विषय पर जानकारी दे हैं डॉक्टर अर्चना सिंह बहिनी और इनसे बात कही करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो यूँ तो भैया रहा मतलब कल के कार्यक्रम की जानकारी। अब बात की जाए जैसे कि अपन पंच रहते हैं ठीक है तो बहुत सारे कह रहा थे कि अपने बैठकी से जुड़ब चाहते हैं तो वही के लिए कार्यक्रम का पता भी रहा थे
1: तो बिल्कुल कार्यक्रम के पता बता दी जाए। कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और जो पिन कोड है 22601 और इके साथ में जो है अपने पंच अब चिट्ठी पाती के अलावा भी अब ऐसे हर आदमी जो आधुनिक हो चुका है अपने पंच भी आधुनिक हो चुके हैं तो अगर डिजिटल रूप में अगर ईमेल करा चाहते हैं तो वह सीधे संपर्क कर सकते हैं उसके लिए जो है ईमेल पता बता दी जाए। तो कार्यक्रम का जो ईमेल पता है farmandhomeair@lucknow.com यानी lko@gmail.com एक फिर से बता दी जाए farmandhomeair@lko@gmail.com।
0: बिल्कुल भैया सही बतायो कहे से अपन मोबाइल में जाएं जो छुए वाला मोबाइल होते वही में जीमेल होते वहीं से कंपोज मैसेज होते वहीं से जाए के अपन भेज सकते हैं।
1: अरे भैया अब देखो बताओ जरूरत नहीं ना, अब अपने पंच बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं तो अब अपने पंचन से ही आग्रह है कि कार्यक्रम किस लागत है, कार्यक्रम और का सुना चाहते हैं, कार्यक्रम में कौन कौन कमी है वह के बारे में अगर बतावा चाहते हैं तो चिट्ठी लिखें या ईमेल लिखें लेकिन लिखें जरूर।
0: बिल्कुल भैया कहे से लिखें तभी हम लोगों को पता चला था कि हमका अपने हम लोग का दे रहे हैं अपने पंचन का उनका भी का अच्छा लग रहा है जो

0: भी सुनना चाहते हैं या ना ही सुनना चाहते हैं उसके बारे में बताया
1: अच्छा,
0: जा जाता
1: इसके
0: है।
1: अलावा जो है एक चीज़ और है, जैसे बात होती रही अपने हरहा गुरु के, अपने पशुअन के, तो उनके ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके जो रहन सहन है, यानी उनके जो जहाँ बांधा जाता है, वो जगह जो है साफ़ सुथरी हुए। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखा जाए कि जो उन बिछावन हुआ था वह का रोज़ बदला जाए, रोज़ सुखवा जाए, फिर नवा जो है बिछावना डाला जाए उनके लिए।
0: बिल्कुल
1: कैसे कि अगर वहाँ पर गंदगी रहा था और अगर नमी रहा था, तो इसे जो उन आप बताओ कि खुरपका, मुँहपका, इसके अलावा और तमाम तरीके के संक्रामक रोग हुए के संभावना बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कहो, कैसे ये सब ना बढ़े तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो बहुत सारे कीटनाशक आवत हैं उनका भी अपने मतलब कि जहाँ पे हरा गुरु बांधे जाए वहाँ पे छिड़काव करके जो कीट पतंग होते हैं उनका भी
1: अच्छा
0: मतलब कि नियंत्रण किया जा सके।
1: हाँ,
0: तो
1: इसके
0: अब ना
1: अलावा
0: हो तो भैया निमकौरी के वो रहा था
1: हाँ
0: भी किया जा
1: वक्त
0: सकता
1: धुआं
0: तो
1: कैसे, ये तो मच्छरों भाग जाते हैं भैया, यूँ करें। इसके साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी बाहर चरावे लेके जाएं, तो एक तो देखो अभी शायद इतनी ज़्यादा 2 दिन से तो खैर मौसम सही है, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा घाम है तब वो समय ना लेके जाएं, संझा के बेरी में लेके जाएं। ये ध्यान रखें कि जहाँ जो जगह लेके जाता है कि जगह ऐसी हुए कि वहाँ कोनो विषैला जोन है, खरपतवार ना हुए, ऐसा ना होगा खाए के हुए, या कोनो वहाँ सांप गोजर ऐसी चीज़ भी ना हुए कि अपने पशुअन का जो है वो
0: नुकसान
1: नुकसान
0: कह सके।
1: पहुँचावे।
0: बिल्कुल भैया सही क्यों कहा, हमका हर चीज़ का ध्यान रखें कि देखो अपनी बैठकी का भी समय हो रहा है तो
1: हाँ, तो देखो घड़ी इशारा कर रही है कि पंचर से लीन जाए। आज्ञा, जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है,
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों

0: को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से सम्पन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
2: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त के अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख

0: मुख्य योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: Hey girls!
4: Hi! Congratulations!
3: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 2 भेंट वार्ताएं। पहली भेंट वार्ता का विषय है मोतियाबिंद की समस्या और समाधान। इस विषय

0: पर डॉक्टर वैभव जैन से बातचीत कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
1: मोतियाबिंद एक बहुत सामान्य समस्या है आंखों की, और हम देखते हैं कि ज्यादातर 50 की उम्र जो पार कर चुके हैं उनमें अक्सर सफेद मोतिया की समस्या देखी जाती है। मोतियाबिंद क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, उनका निराकरण हम करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जैन साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर है SGPGI लखनऊ के नेत्र रोग विभाग में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जानेंगे कि सफेद मोतिया या कैटरेक्ट क्या होता है।
2: संभवतः बीमारी नहीं बोलेंगे इसको, एक एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आंख में हमारे यहाँ जो पारदर्शी लेंस होता है उसमें धीरे धीरे करके क्लाउडीनेस आने लगती है, मतलब उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है पारदर्शिता वो धीरे धीरे अफेक्ट होती है। तो वो जब पारदर्शिता खत्म हो जाती है नेचुरल लेंस की तो उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब शुरुआती लक्षण क्या है?
2: शुरुआती लक्षण मरीज को दूर दृष्टि में प्रॉब्लम होगी, कई बार पास की भी दृष्टि आपकी अफेक्ट होती है, और कई कारणवश सामने से जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक की लाइट जो है वो फैली फैली नजर आती है, क्लियर एंड हेलोज बोलते हैं। सिर दर्द भी हो सकता है अगर उसकी दूर दृष्टि अफेक्टेड है मरीज की, तो उस कारणवश सर दर्द भी, उसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स बोलते हैं, वो भी मरीजों में पाए जाते हैं। कम उम्र में भी इसकी समस्या हो सकती है। एक तो हमारा कंजनाइटल कैटरेक्ट होता है जो जन्म से होता है बच्चों में, जो को पेट से ही होता है, तो उनका भी ऑपरेशन संभवतः हो जाता है विद इन 1 ईयर ऑफ एज भी। मिडिल एज में भी ये होता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, कई बार हमारे पास मरीज आते हैं कुछ स्टेरॉइड ले रहे होते हैं या फिर कोई स्किन क्रीम फेस क्रीम लगाते हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है, उनसे भी मोतियाबिंद हो सकता है। सो उसको स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट बोलते हैं। कई और सारी बीमारियां भी हैं, दवाइयां हैं ऐसी कई सारी जिनकी वजह से भी मोतियाबिंद एक अर्ली एज में हो सकता है। चोट के बाद भी एक मोतियाबिंद होता है, उसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं, और उसका भी इलाज संभव है अगर जल्दी इलाज कराया जाए।
1: डॉक्टर साहब खान पान की अगर हम बात करें तो मोतियाबिंद के केस में क्या है?
2: बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट प्रायः जो व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं जो लोग, और हरी सब्जियां फलों का उपयोग ज्यादा करते हैं, उनमें संभवतः बीमारियां थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस भी उनकी डिले होती है। सो ऐसा लिटरेचर में तो नहीं, बट वी कैन से दैट कि मोतियाबिंद बहुत कम हद तक हो सकता है। और जितना आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर होगा, यूवी रे जैसे सनलाइट एक्सपोजर में आप ज्यादा काम करते हैं, लेबरर है, उनको जाना ही है, तो उस केस में कई बार जो है मोतियाबिंद बहुत जल्दी पाया जाता है।
1: जांच कैसे डॉक्टर साहब करते हैं?
2: मोतियाबिंद की जांच एक बहुत ही सिंपल जांच है। जैसे गांव में कई बार आपके पास अगर इक्विपमेंट नहीं है तो आप सिंपल टॉर्च लाइट से भी उसका मोतियाबिंद का पता लग जाता है, तो आंखों में एक सफेदी टाइप की जो है वो दिखने लगती है। शहरों में भी जिनको धुंधलापन है उनका एक हमारे पास सिट लैम्प करके एक मशीन होती है, एक सिंपल सिट लैम्प एग्जामिनेशन से मोतियाबिंद का पता लग जाता है।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मोतिया एकदम पक जाए तब ऑपरेशन ही कराया जाए, उसके पहले नहीं कराना चाहिए, कितना सही है कितना गलत?
2: ये बिल्कुल गलत है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराना चाहिए। जो शहर में पॉपुलेशन है, ऑफिस लोग में काम कर रहे हैं लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, तो थोड़ा भी आपका विजन अफेक्ट होता है, सो उसमें आपको डे टू डे प्रॉब्लम होती है, और मोतियाबिंद को आप जितनी जल्दी करा दें उतनी उसके कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनमें लेंस डालने की नौबत नहीं होती, पूरा मोतियाबिंद ही हिल जाता है, कई बार बैग हिल जाता है, तो उसमें होती है कॉम्प्लेक्स कैटरेक्ट सर्जरी होती है जिसमें किसी तरह हमको लेंस फिट करना होता है। हम लोग आम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर मोतियाबिंद डायग्नोज हुआ है तो उसका जल्दी से जल्दी सर्जरी कराएं, और सर्जरी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है, कोई ड्रॉप उसको ठीक नहीं करती है और ना कोई खान पान उसको ठीक करेगा, उसका एक ही इलाज है ऑपरेशन करके हमें उसमें लेंस फिट करना। देखिए ऑपरेशन काफी सहज हो गया है आज के दिन में, तो जैसे ही हमें पता लगता है कि पेशेंट को मोतियाबिंद है तो सबसे पहले हम पेशेंट का एक सिस्टमिक चेकअप कराते हैं जिसमें ब्लड शुगर है आपका वो कंट्रोल होना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट का भी ऑपरेशन हो जाता है सो बीपी कंट्रोल होना चाहिए, और भी कोई सिस्टमिक डिसीज है वो भी कंट्रोल होना चाहिए आपकी। फिर उसके बाद जो साधारणतया जो रिकमेंडेड टेक्निक है जिससे हम लोग मतलब मोस्टली वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन कर रहे हैं वो है फेको पद्धति। तो फेको के द्वारा बहुत मिनिमल चीरा 2.8 या 2.2 मिलीमीटर जो कि ना के बराबर होता है, जिसमें ना कोई टांका लगाया जाता है, और टॉपिकल एनेस्थीसिया में आजकल ऑपरेशन होता है जिसमें हम केवल मरीज को ड्रॉप डाल के सुन कर देते हैं, उसको ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं, और उसमें ना कोई आंखों में लालिमा आती है और ना कोई आंख में पट्टी आती है मरीज को ऑपरेशन के बाद। मरीज बस आते हैं 10 मिनट में ऑपरेशन करा के दे कैन गो टू होम। मोतियाबिंद पूरी तरह से डे केयर सर्जरी है और 1 घंटे में आप फ्री होके घर जा सकते हैं, इतना सिंपल आधुनिक तरीके मोतियाबिंद की सर्जरी हो चुकी है।
1: डॉक्टर साहब पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या हैं, क्या क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए?
2: सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा सिंपल सर्जरी है बट इट

0: takes years of learning to perform surgery in 10 minutes. On post-operative care में बहुत important है कि आपको आँखों को मलना नहीं है और आँख के आसपास पानी नहीं लगाना है. पानी लगाएंगे तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा है. नहाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको जो पानी डालना है वो कंधे से स्नान करना है, आपको ऊपर से सिर से स्नान नहीं करना है. खाने पीने में आप सिंपल डाइट जो है जो इजिली डाइजेस्टेबल हो उसको आप रिकमेंड करते हैं. प्रिकॉशन लगभग एक महीना तो रखना चाहिए.
1: अच्छा, चश्मा भी लगाते हैं?
0: हाँ, काला चश्मा, प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिए जाते हैं से आपको धूल मिट्टी से बचाव रख सके. प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उससे बहुत रिस्क हो जाता है. मतलब मरीज की आंख की रोशनी पूरी तरह जा सकती है. पोस्ट ऑप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मरीज को ही करनी है, उसमें डॉक्टर्स का रोल बहुत कम होता है.
1: डॉक्टर साहब, लेंस पर आते हैं. लेंस एक बहुत बड़ा विषय होता है, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से हम
0: देखिए. लेंसेज बहुत रेंज के लेंस हैं. आपकी आंखों की रोशनी डिपेंड करती है लेंस के अलावा और भी चीजों पर डिपेंड करती है कि सर्जरी कैसे हुई है, कहाँ इंसिजन लगा है, कोई इंट्रा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ. पर लेंस भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आपकी बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है. लेंसेज बहुत सारे हैं. जो रिजिड लेंसेज आते हैं सबसे पहले, जो सस्ते कैंप में लगते हैं लेंसेज, उनमें बड़ा चीरा लगाना होता है क्योंकि वो फोल्ड नहीं हो पाते हैं लेंसेज. और फोल्डेबल लेंसेज आते हैं जो बहुत मिनिमल चीरे से चले जाते हैं, तो वो फोल्डेबल लेंसेज होते हैं. मोनोफोकल लेंसेज आते हैं जो आपकी केवल दूरदृष्टि को करेक्ट करते हैं. पास के लिए आपको नंबर आता है. कुछ मल्टीफोकल लेंसेज, ट्राईफोकल लेंसेज आते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो लेटेस्ट होते हैं, वो उनको लगाए जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्टर हम चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं ऑपरेशन. अच्छा. तो उनको हम रिकमेंड करते हैं ट्राईफोकल, मल्टीफोकल. तो उनमें क्या होता है कि उनमें पास से लेके दूर तक की नजर कवर होती है. इडॉफ लेंसेज भी होते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन. इट डिपेंड्स कि मरीज का प्रोफाइल क्या है, उसका वर्क प्लेस क्या है, उसको कैसी रिक्वायरमेंट है विजन की, उस हिसाब से हम लोग लेंस को एज ए टेलर थेरेपी
1: कस्टमाइज्ड. एसजीपीजीआई में डॉक्टर साहब क्या क्या सुविधाएं हैं वहां पर?
0: कैटरेक्ट का हमारे पास फेको मशीन है और हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन से टॉपिकल एनेस्थीसिया से ऑपरेशन कर रहे हैं. तो डे केयर में ऑलमोस्ट सर्जरी मतलब हो जाती है पेशेंट्स की. मोनोफोकल लेंसेज, ट्राईफोकल, मल्टीफोकल, एवरीथिंग इज अवेलेबल.
1: डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर सफेद मोतिया कैटरेक्ट के बारे में?
0: मोतियाबिंद एक बहुत ही क्यूरेबल डिसऑर्डर है और उसको मैं बोलूंगा कि उससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपको मोतियाबिंद से ग्रसित है या शुरुआती लक्षण है, बस सिंपली आप जाइए आई डॉक्टर के पास और अपना ऑपरेशन करके लेंस डलवा सकते हैं और कंप्लीटली क्योरेबल है मोतियाबिंद.
1: डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और भेंट वार्ता, होम्योपैथी में संक्रामक रोगों से बचाव. इस विषय पर डॉक्टर अंबुज शुक्ला से बात कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी.
1: दोस्तों, जून उत्तर भारत में भीषण गर्मी का महीना है, फिर भी कभी कभी पश्चिमी विक्षोभों के कारण या लोकल साइक्लोन के कारण बारिश भी हो जाती है. तो बदलते मौसम में जो संक्रामक रोग हैं, उनका प्रभाव, उनका प्रकोप भी बढ़ जाता है. सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट की खराबी, सांस की समस्याएं, खांसी की समस्याएं, ये सब कॉमन देखी जाती है. इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबुज शुक्ला जी, जो लखनऊ शहर के जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत.
3: धन्यवाद.
1: डॉक्टर साहब, बैक्टीरिया, वायरस, जैसा कि मौसम बदल जाता है अचानक से, तो ऐसे मौसम में उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो किन किन संक्रामक रोगों का प्रभाव इस मौसम में जून जुलाई तक रहता है?
3: जी देखिए, एक तो ये है कि गर्मी है और उसके बावजूद भी चूंकि मौसम में परिवर्तन लगातार हम लोग देखते हैं कि होता रहता है, तो जरा सा टेम्परेचर में बदलाव हुआ तो उस समय जो वायरसेज हैं और बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, ये काफी एक्टिव हो जाते हैं. दूसरे क्या होता है कि इस समय जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की, वो कमजोर हो जाता है, तो यही वायरस जो है ये अटैक करते हैं और संक्रामक रोगों को जन्म देते हैं. तो सामान्य रूप से जो देखने को मिलता है, जो संक्रामक रोगों की श्रेणी है, वो ज्यादातर एक्यूट यानी जो नवीन रोग
1: तत्काल
3: हाँ, कुछ समय में वो ठीक भी हो जाते हैं. और क्रॉनिक नेचर के भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मेनली फंगस बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस और कुछ और स्किन डिजीजेस होती है, जैसे मोलस्कम बच्चों में अक्सर होता है, मोलस्कम कंटेजियोसम एक डिजीज होती है, या और तरह के रिंग वर्म जिनको बोलते हैं, जो फंगल डिजीजेस होती है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है.
1: डॉक्टर साहब, तो इन रोगों से बचाव के पहले कुछ प्रिवेंटिव दवाएं भी हैं जिनको खाके इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है?
3: हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ये एक कोई निश्चित दवा नहीं हम बता सकते हैं. कुछ जगहों पर जैसे मान लीजिए चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स के लिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो प्रिवेंटिव हैं. उसमें दो तरह की होती हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं जीनस एपिडेमिकस, वो होती है जो उस समय कम्युनिटी में जो बीमारी फैल रही है उसके एक सामान्य लक्षण लेकर के, और ये फिजिशियन द्वारा सेलेक्ट की जाती है कि कौन सी ऐसी दवा है जो कॉमन है, जो सारे सिम्टम्स को कवर कर रही है, तो ये फिजिशियन डिसाइड करते हैं और उसको जीनस एपिडेमिकस बोला जाता है. वो देने से रोग में बचाव होता है और साथ में रोग जो हुआ है वो ठीक भी.

0: होता है। और दूसरे कुछ स्पेसिफिक भी हैं, लेकिन उनको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से लेना चाहिए। जैसे कि चिकन पॉक्स है तो उसमें अक्सर वेरियोलिनम एक दवा है दी जाती है प्रिवेंटिव के लिए। इसी तरह मीजल्स है, उसमें मॉर्बिलिनम एक दवा वो दी जाती है। लेकिन ये सारी मेडिसिन कभी भी अपने आप ना लें, उसकी पोटेंसी और डोज वो हमेशा एक होम्योपैथिक
1: चिकित्सक की सलाह से। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में खांसी बढ़ जाती है खासकर बच्चों में, तो कुछ होम्योपैथिक में क्या ऐसी कुछ दवाएं हैं?
0: हाँ, बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे मौसम के हिसाब से हो सकती है, वो बेलाडोना भी हो सकती है, अरास्टॉक्स भी हो सकती है, और स्पॉन्जिया एक दवा होती है वो भी हो सकती है, रूमेक्स है, ड्रोसेरा है। लेकिन इन सब में वही बात लागू होती है कि चूंकि होम्योपैथिक जी व्यक्तिकरण का सिद्धांत लागू होता है, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के कभी भी दवा ना लें। कई बार उससे लाभ नहीं होता है और उससे ये होता है कि होम्योपैथिक दवा फायदा नहीं करती है।
1: डॉक्टर साहब, पेट की कौन कौन सी समस्याएं कॉमन?
0: हाँ, सबसे कॉमन जो मिलती है देखने को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जो कि कई बार वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल ज्यादातर होता है। और उसका प्रमुख कारण जो है वो दूषित पानी या खान पान जो होता है बाहर का, अक्सर लोग खा लेते हैं, कटे हुए फल खा लेते हैं या बाहर की चीजें खा लेते हैं, बासी भोजन कर लेते हैं। और इससे अच्छा तरीका इससे बचने का यही है कि हमेशा जो है पर्याप्त जल का प्रयोग करें, पानी पर्याप्त पिएं और बाहर की चीजों को खाने से बचें, स्पेशली जो खुली चीजें होती हैं। अगर बहुत

0: यह देखने को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जो कि कई बार वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल ज्यादातर होता है। और उसका प्रमुख कारण जो है वो दूषित पानी या खान पान जो होता है बाहर का, अक्सर लोग खा लेते हैं, कटे हुए फल खा लेते हैं या बाहर की चीजें खा लेते हैं, बासी भोजन कर लेते हैं। और इससे अच्छा तरीका इससे बचने का यही है कि हमेशा जो है पर्याप्त जल का प्रयोग करें, पानी पर्याप्त पिएं और बाहर की चीजों को खाने से बचें, स्पेशली जो खुली चीजें होती हैं। अगर बहुत मजबूरी है तो ऐसी चीजों की प्राथमिकता ज्यादातर, जैसे साबुत फल ले सकते हैं, उसको धुल करके खा सकते हैं, या जो आजकल अक्सर खीरा ककड़ी और तरबूज खरबूजे खाने का प्रचलन है कि मौसमी फल खाने चाहिए, पानी डिहाइड्रेशन ना हो, तो उसको पूरा साबुत लें और उसको अपने तरीके से काट करके खाएं। इस समय सबसे अधिक जो कॉमन होता है वो यही देखने, तो बच्चों में चिकन पॉक्स और मीजल्स ये बहुत कॉमन है मिल रहा है देखने के लिए। और दूसरा जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो हमने बात की, जिसमें डायरिया वोमिटिंग होती है, तो ये ज्यादातर कंटामिनेशन से होता है। बच्चों को विशेष रूप से बचाएं और बुजुर्गों को, और जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर आते जाते हैं, तो वो लोग जो बाहर की चीजें खाने पीने से बचें, ताकि उनको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें कि बहुत तेज पेट में दर्द हो सकता है और सूजन आ सकती है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कई बार शॉक हो सकता है अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा मिलता है और इन्हीं चीजों से बचने की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब, डोज की भी बात आती है, 30, 200, 1 mg, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको थोड़ा समझा दीजिए।
0: ये क्या होता है कि जो होम्योपैथी में पोटेंसी होती है वो असल में अल्ट्रा डायल्यूशन, होम्योपैथी में अल्ट्रा डायल्यूशन माने बहुत ज्यादा हम डायल्यूट करते हैं दवाइयों को और शक्तिकृत किया जाता है, एक तरह से पोटेंटाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रियल पावर ऑफ मेडिसिन है, जो उसकी रियल क्यूरेटिव पावर है, वो पता चलती है। और इन सारी जो मेडिसिन है, इनको स्वस्थ व्यक्तियों पर किसी समय में प्रूव किया गया था और फिर से रीप्रूविंग भी करते रहते हैं, तो जिस तरह के लक्षण वो उत्पन्न करती है उस तरह की मेडिसिन दी जाती है। दूसरी चीज, जो पोटेंसी 30, 200, 1 mg है, ये सिर्फ ये होता है कि जितना ज्यादा हम डायल्यूट करेंगे दवा को, उतना ज्यादा उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है, यानी जितनी हम दवा कम करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। पावर मतलब उसकी जो भेदन क्षमता है, यानी शरीर में रोग को भेदने की क्षमता है, वो उसकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम हाई पोटेंसी देते हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि व्यक्ति के हिसाब से, एज के हिसाब से, बीमारी के नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कहां पर हमें लो पोटेंसी देनी है और कहां पर हाई पोटेंसी देनी है, कहां पर मीडियम पोटेंसी। जैसे बहुत पुरानी बीमारी है और पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, उसका जो स्वास्थ्य है वो इतना स्वस्थ है वो कि वो उस पोटेंसी को बियर कर सकता है, तो वहां पर हाई पोटेंसी दी जाती है, क्योंकि उसकी क्रॉनिक डिजीज जो होती है, बहुत पुरानी बीमारी, इसको ठीक करना है। ज्यादातर जो नई बीमारियां होती हैं या पेशेंट की बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो वहां पर लो पोटेंसी हम लोग देते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की क्षमता बढ़ती जाती है, उसको हम फिर धीरे धीरे हाई पोटेंसी तक ले जाते हैं।
1: चलते चलते आपका फाइनल टेक अवे क्या है हमारे श्रोताओं के लिए?
0: देखिए, सबसे पहली चीज की स्वस्थ जीवन शैली, समय से उठना, समय से सोना, अपने खान पान की दिनचर्या को नियंत्रित रखना। दूसरा होता है नियमित एक्सरसाइज करें। और तीसरी चीज होती है कि जहां तक हो सके कंटामिनेशन, यानी प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण, वो चाहे वायु से संबंधित हो, जैसे अगर बाहर निकलते हैं तो ऐसी जगह जहां संक्रमण होने की संभावना, वहां पर मास्क लगाएं। पब्लिक प्लेसेस पे, जहां पर सब जगह लोग जाते आते हैं, वहां पर चीजों को छूने से बचें। क्लिनिक या हॉस्पिटल में जब भी जाएं तो अच्छी तरह से सावधानी बरतें, और बाहर की चीजों को खाने पीने से बचें, विशेष रूप से जो खुले, जैसे कटे हुए फल है, या घर पर भी जो भोजन बनाएं वो कोशिश करें कि ताजा भोजन और हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का जूस का, पानी का पर्याप्त प्रयोग करें। इस तरह से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से संक्रामक रोगों से बचाव हो सकता है। बच्चों को विशेष रूप से बचाएं, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता वो उनके अंदर विकसित करें। मच्छरों से बचाव के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, वो लगाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मक्खियों से बचाव के लिए सफाई रखें, घर में जालियां लगवाएं। तो ये सारी चीजें अगर बचाव करेंगे तो संक्रामक रोगों से काफी हद तक हम बच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, होम्योपैथी में संक्रामक रोगों से बचाव। इस विषय पर डॉक्टर अंबुज शुक्ला से बातचीत कर रहे थे आशीष चतुर्वेदी। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है छोटी सी बात।

हेमलता और शैलेंद्र के गाए अखियों की झरोखी फिल्म से गीत, ये गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी के लिए समाप्त होता है। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे आज रात 8:30 पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आज रात 11:10 पर सरकार के 12 साल पर आधारित एक कार्यक्रम सुनिएगा, गरीब कल्याण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में नारी की स्थिति, संघर्ष, संवेदनाएं तथा उपलब्धियां साहित्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। नारी चेतना का अर्थ है नारी के आत्मबोध, अधिकार चेतना, स्वतंत्र व्यक्तित्व और समानता की आकांक्षा का जागरण। समय के साथ साहित्य में नारी की छवि केवल करुणा और त्याग का प्रतीक भर नहीं रही, बल्कि वो संघर्षशील, स्वाभिमानी और आत्मनिर्णय लेने वाली सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभरी है। प्राचीन साहित्य में नारी का चित्रण प्रायः आदर्श रूप में मिलता है, सीता, सावित्री, द्रौपदी जैसे पात्रों के माध्यम से। किंतु आधुनिक युग में नारी चेतना ने नया आयाम प्राप्त किया है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा ने नारी की पीड़ा और संवेदनाओं को अत्यंत मार्मिक स्वर दिया और उनकी रचनाओं में नारी के अंतर्मन की गहराइयां और स्वतंत्र अस्तित्व की चाह स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम अमृता प्रीतम की बात करें तो उनकी कविताओं में, उनके उपन्यासों में स्त्री के आत्मसम्मान और प्रेम की स्वतंत्रता को स्वर प्रदान किया गया है। नारी चेतना का मूल उद्देश्य पुरुष विरोध नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता की स्थापना है। साहित्य ने इस चेतना को दिशा और विस्तार दिया है। आज की नारी शिक्षा, रोजगार, राजनीति और कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और साहित्य इस परिवर्तन का सशक्त साक्षी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साहित्य में नारी चेतना समाज में परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। ये चेतना न केवल स्त्री को जागरूक करती है, बल्कि संपूर्ण समाज को संवेदनशील और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में अग्रसर करती है। साहित्य में नारी चेतना का उदय, आइए इस विषय पर विस्तार से एक वार्ता आपको सुनवाते हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो,

विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। साहित्य समाज संस्कृति और मानवीय भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने वाली रचनात्मक विधा है, जिसमें हित की भावना निहित होती है। यह गद्य और पद्य के रूप में भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य में नारी चेतना के एक स्वस्थ स्वरूप और प्राचीन भारतीय समाज में नारी की गरिमामय उपस्थिति सदैव परिभाषित होती रही है। हिंदी साहित्य में नारी चेतना का उदय मुख्य रूप से 19वीं सदी के नवजागरण काल से माना जाता था। यह चेतना आधुनिकता, शिक्षा और स्वतंत्रता पाने की चाह के साथ विकसित हुई। साहित्य में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और अनेक आधुनिक कथाकारों के द्वारा आर्थिक रूप से स्वतंत्र, बौद्धिक और स्वाभिमानी रूप में प्रस्तुत किया गया है। साहित्य में नारी चेतना का अर्थ स्त्री के आत्मसम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता और अपनी अस्मिता के प्रति जागृति से है। आधुनिक साहित्य में नारी उपभोग की वस्तु नहीं, वरन निर्णय लेने में सक्षम और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में, एक शक्ति के रूप में सामने उभर कर आई है। इस काल के साहित्य में मुख्य रूप से नारी चेतना का उदय दिखाई पड़ता है, जो प्रथम काल भारतेंदु युग से आरंभ होकर छायावाद और इसके बाद के कालों में विशेष रूप से प्रखर हुआ। यह साहित्य सामंती रूढ़ियों, शोषण और परंपरागत बंधनों को तोड़कर एक ऐसी नारी के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है जो सामंती रूढ़ियों, शोषण और परंपरागत बंधनों के साथ स्वावलंबी, शिक्षित और अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्षशील दिखाई पड़ती है और इनको तोड़ती हुई सी जान पड़ती है। साहित्य में स्त्री विमर्श के रूप में इसकी स्थापना हुई है। साहित्य में नारी चेतना का उदय जिन चरणों में हुआ है उसे हम इस प्रकार से रूपायित कर सकते हैं। प्राचीन काल के साहित्य में नारी को शक्ति स्वरूप माना जाता था और व्यवहारिक रूप से उसका अस्तित्व गौड़ था। मध्यकाल में नारी चेतना का प्रथम स्वर मीराबाई के स्वरों में दिखाई पड़ता है, जो पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देकर अपना अस्तित्व कायम रखती है। आधुनिक साहित्य में नारी केवल उपभोग या त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की प्रतिध्वनि के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। इस युग में महादेवी वर्मा जैसी कवित्रियों ने नारी को एक सशक्त इकाई के रूप में उभारा है। प्रेमचंद युग और इसके बाद के साहित्य में नारी को एक ऐसे स्वरूप का चित्रण दिखाई पड़ता है जो रूढ़ियों को तोड़कर शिक्षित, आत्मनिर्भर और मुखर होने का प्रयास करती है। 1960 के बाद साहित्य में आधुनिक स्त्री विमर्श की अवधारणा दिखाई पड़ती है। इनमें उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, मन्नु भंडारी जैसी लेखिकाओं ने नारी के मन के अंतर्द्वंद, यौन शोषण तथा पारिवारिक समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया है। इस तरह से नारी चेतना का स्वर प्रमुख रूप से प्रभावी और मुख्य विमर्श के रूप में उभर कर सामने आता है। आधुनिक युग में साहित्य में नारी चेतना की प्रमुख विशेषताएं अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। पहला, आधुनिक नारी एक स्वावलंबी नारी के उभर कर सामने आती है, जिसमें आर्थिक रूप से समर्थता और सामाजिक स्वतंत्रता की जिजीविषा व्याप्त है। यह शिक्षा को महत्व देने वाली है। यह ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। आधुनिक नारी को साहित्य में जिस रूप में चित्रित किया गया है वह पुरुष की दया की पात्र या उसके हाथों की कठपुतली न होकर स्वतंत्र अस्तित्व की चाह रखती है। यह स्त्री अपनी लेखनी को माध्यम बनाकर अपने संघर्ष और भोगे हुए यथार्थ को साहित्य में लिखती भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह नारी जो प्राचीन काल में पूजनीय मानी जाती थी, नारी को साहित्य में एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया। वरन इसके मुखर स्वर, इसके चेतना समाज ही नहीं साहित्य को भी प्रतिध्वनित करती हुई सी दिखाई पड़ती है। वह अपने लिए जागरूक है, परंतु वह कभी प्रिय पथ की बाधा नहीं बनती।

0: उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उसके संबल और संपूर्ण समाज की आधारशिला है। तभी तो मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ की बाधा ही पाते।
1: साहित्य में नारी चेतना का उदय, ये वार्ता भी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थी डॉक्टर आराधना अस्थाना। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये लखनऊ केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि आज रात 11:10 पर सरकार के 12 साल के उपलक्ष्य में सुनिएगा कार्यक्रम गरीब कल्याण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गोपाल सिन्हा के स्वर में कुछ गीत। सबसे पहले सुनते हैं गिरिजा कुमार माथुर का लिखा गीत गोपाल सिन्हा के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोपाल सिन्हा के स्वर में कुछ गीत। आइए अब सुनते हैं प्रभा माथुर की रचना गोपाल सिन्हा के स्वर।

श्रोताओ, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गोपाल सिन्हा के स्वर में कुछ गीत। रचनाएं थी गिरिजा कुमार माथुर, प्रभा माथुर और वी के पुरी की। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से। आवाज है पलक मुच्छल की।

आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान के 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के

0: प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा

0: कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड

0: पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging

0: Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds will be experienced in several parts of the country. The IMD has also predicted hot and humid weather conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. On to sports, 22 Indian rowers have been inducted into the Target Olympic Podium Scheme or TOPS Development Group ahead of the Asian Games to be held in Aichi, Nagoya, Japan later this year. Among those included are Paris Olympian Balraj Panwar, Asian Games silver medalist Arvind Singh and double medalist Jaswinder Singh. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on staying safe during heat waves, precautions, preparedness and protection with Mr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, IMD, and Dr. Rupali Malik, Department of Medicine, Safdarjung Hospital. Listeners can ask questions on the subject on telephone numbers 23717117 and 23314444, prefixing the Delhi STD code. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lai hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिसरी ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिसरी ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन

0: 2 अरब डॉलर पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इकतसादी शराकतदारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिर खा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला PM किसान स्कीम का आगाज़ है जो कि मुल्क में फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुंभों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए PM मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज़ किया गया। PM कृषि सिंचाई योजना और स्वाइल

0: हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
1: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
2: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज़ कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जाँच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और ज़िला लीगल अथॉरिटीज़ के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बात कही। अर्जीगुजार का इल्ज़ाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ तावुन को फ़रोग़ देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल कहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैन अलाक़वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी तआवुन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में तआवुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोकभवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनद हुई। गवर्नर RN रवि ने वजरा की कौंसिल में शामिल होने वाले नए अरकान को अहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर अला शुभेंदु अधिकारी समेत दीगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और रितब्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क़यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में TMC की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले मशमूलत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना, कुमार सानू की आवाज में फिल्म इम्तिहान से। इस गीत का अनुरोध हमें किया था ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टक्कर से। आवाजें हैं अलका याग्निक और अभिजीत सिंह की, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेम साहू और यमुना साहू ने, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा ने।

अगले गीत का अनुरोध किया है हमारे इन श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ देवरी से केआर साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लेवई से गुलाबदास और दतरेंगी से भागवत वर्मा ने। आप सब सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे हमने लिया है फिल्म आरजू से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम व पोस्ट शुजागन रुदौली जिला अयोध्या से चंद्र कुमार, रविजीत, राहुलजीत, सूरज कुमार, देवा, देवांश और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे नगीना फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। भदभदा रोड भोपाल मध्य प्रदेश से योगेश्वर सिंह भारती, शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई भारतीय, दुर्गा अमिता और समस्त भारतीय परिवार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई।

0: इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी। तहसील रेहटी ग्राम व पोस्ट बाया जिला सीहोर से अमर सिंह, लक्ष्मी भारतीय, महेंद्र, सचिन, तरु और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक मिस्टर भोला एंड मिसेस भोली। आलेख विकास श्रीवास्तव का है और इसके निर्देशिका हैं डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।
1: स्वरा, ओ स्वरा, अरे यार एक कप चाय और पिला दो ना प्लीज।
2: अरे भाई कल वाला दूध खत्म हो गया है, बाहर से दूध का पैकेट तो उठा लाओ।
1: तुमने क्यों नहीं अब तक उठाया?
2: अरे मैं भूल गई थी, प्लीज। और अपने इस भोंपू जैसे रेडियो की आवाज़ कम करो यार, दो कमरे के मकान में ऐसे बात करनी पड़ती है जैसे किसी महल में रह रहे हैं।
1: अरे किराए का ही सही, लेकिन इतने बड़े शहर में दो कमरे का मकान भी किसी महल से कम नहीं है।
2: तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि अकेले ही रेंट बियर करते हो।
1: ये लो दूध। वैसे तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? Why you always take the conversation to the other direction?
2: Oh, I have taken the conversation to the other direction. Would you like to tell me which way you were going?
1: अरे यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहो कुछ, समझती कुछ हो।
2: हाँ भाई, तुम्हारे जैसा समझदार और कोई कहाँ मिलेगा। So, Mr. Top of the World, दूध गैस पर रख दिया है, चाय खुद बना के पी लेना। I'm getting late.
1: Oh, even I? और मेरा टिफिन?
2: टिफिन ऑफिस की कैंटीन में खा लेना।
1: अरे यार ये कौन सी बात है, पिछले 3 दिनों से ऑफिस की कैंटीन में ही तो खा रहा हूँ।
2: अगर घर से टिफिन ले जाना है डियर तो सर्वेंट रखो। मैं इतने दिनों से चिल्ला रही हूँ लेकिन तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
1: ओहो यार, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। दोस्तों को बोल रखा है, एजेंसी को बोल रखा है, कोई चीज थोड़ी ना है जो दुकान से खरीद लाऊंगा।
2: मुझे कहानी मत समझाओ प्लीज। अगर तुमने 2 दिन में सर्वेंट नहीं ढूंढा तो मैं अपने घर यानी अपने मायके वापस चली जाऊंगी।
1: अरे बाबा, 21वीं सदी चल रही है और यार तुम्हारी सोच वही पुरानी। अरे कुछ तो नया सोचो यार।
2: डिवोर्स ठीक रहेगा।
1: व्हाट?
2: अरे डिवोर्स।
1: ओफो, अच्छा अभी मैं फोन करके पूछता हूँ कि नौकर कहाँ है। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, मैं हेतल बोल रहा हूँ। अरे मैंने 1 हफ्ते पहले आपको सर्वेंट की रिक्वायरमेंट दी थी, उसका क्या हुआ? व्हाट, अभी तुरंत भेज रहे हैं? ओके ओके, थैंक यू, अभी हम लोग हैं घर पे, भेजिए। जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। लेकिन हम लोग को तो ऑफिस निकलना है अभी।
2: हमें नहीं, मुझको तुरंत निकलना है और तुम 1 घंटा लेट जाओगे। फोन कट करो और फिर मुझसे बात करो।
1: हाँ हेलो, हाँ भेज दीजिए उसे, लेकिन सुनिए जरा जल्दी भेजिएगा। स्वरा ये कौन सी बात होती है यार, तुम भी तो ऑफिस देर से जा सकती हो ना।
2: हाँ जा सकती थी लेकिन आज फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं इसलिए नहीं रुक सकती। ओके।
1: हाँ जैसे मैं तो ऑफिस में वेला ही बैठा रहूंगा।
2: नो कमेंट्स।
1: कहना क्या चाहती हो?
2: यही कि बाय।
1: अरे

0: बात तो सुनो।
1: कोई बात नहीं सुननी, बाय बाय।
0: स्वरा, ओ स्वरा। बंद गया पटाव, बिल्कुल बन गया पटाव। चली गई यार ये टीचर अपने स्टूडेंट को निर्देश देकर। फला काम पूरा नहीं हुआ तो मार मार कर लाल कर दूंगी। चल बेटा हेतल, पहले चाय बनाकर पी और शुरू हो जा काम पे। और

0: ਪਈਆ ਕੈਸਾ ਇਸ ਚ ਪਟਾ ਬੰਦਿਆ ਪਟਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾਂਸ ਕਪਟਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿਆ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨੌਕਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਾ ਦਰਦ दोपहर का एक बजने को आया है तब से दरवाजा ही देख रहा हूँ। अरे अरे क्यों इतनी बार घंटी बजाकर कानपुर में हड़ताल करने के चक्कर में हो भाई, आ रहा हूँ। अरे अरे अरे दिमाग खराब है क्या?
1: बहुत गुस्से में है साहब।
0: आप कौन?
1: होली।
0: भोली?
1: अब साहब भोली का मतलब तो शायद मासूम ही होता है ना?
0: नहीं नहीं मेरा मतलब था कि आप यहाँ क्यों आई हैं?
1: एजेंसी ने आपके यहाँ काम करने के लिए भेजा है मुझे।
0: एजेंसी ने आपको भेजा है काम करने के लिए?
1: क्यों, मैं आपको लायक नहीं दिखती क्या?
0: मेरे लायक? नहीं नहीं बात दरअसल ये है कि
1: मैं काम वाली नहीं लगती हूँ ना, यही कहना चाह रहे हैं आप?
0: हाँ यही तो।
1: अब सारी बातें बाहर खड़े खड़े ही कर लेंगे क्या, अंदर नहीं बुलाएंगे?
0: ओह सॉरी, आइए आइए अंदर आइए प्लीज।
1: और हाँ, मुझे आप आइए बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आप मुझे तुम बुलाएंगे।
0: क्यों?
1: तुम से अपनापन बढ़ता है, बनावटीपन खत्म हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले की उम्र भी कम हो जाती है।
0: ओह आप तो बहुत समझदार लगती है, कितना पढ़ी है आप?
1: हाँ?
0: नहीं नहीं तुम।
1: हाँ तो साहब पढ़े तो हम ज्यादा नहीं हैं, लेकिन कढ़े बहुत हैं।
0: क्या मतलब?
1: अरे आप जैसे लोगों के घर में काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला है।
0: अच्छा तो तुमने क्या सिखाया है लोगों को?
1: आज पहला दिन है ना, अभी मिले हुए तो 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और आप सब कुछ सीख लेना चाहते हैं, जबकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी नौकरी पक्की भी हुई है या नहीं।
0: पक्की तो उसी वक्त हो गई थी जब मैंने दरवाजा खोला था।
1: आप कुछ कह रहे हैं क्या साहब?
0: अरे हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी नौकरी तो पक्की ही समझो।
1: और मैं?
0: तुम
1: अरे साहब आप तो घबरा आ गए। खैर छोड़िए, ये बताइए मेरी पगार कितनी होगी?
0: जितनी तुम चाहो।
1: ये तो आप कह रहे हैं ना मालकिन न मानी तो?
0: अरे सुनो, वो जितना कहे वो तुम उससे ले लेना, और जितना तुम कहोगी वो मैं तुम्हें अलग से दे दिया करूँगा।
1: बढ़िया, तब तो हम आज ही से काम शुरू कर देते हैं। हाँ बस एक बात है, ऊंची आवाज में इंसानों की बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन गाना तो हम ऊंची आवाज में ही सुनते हैं, वो क्या है ना साहब काम करने का मूड बन जाता है, क्या कहते हैं आप?
0: एक्सीलेंट। अरे मुझे भी गाने का बहुत शौक है, और वो भी ऊंची आवाज में।
1: तो आप बजाइए, और हमें तो लग रहा है साहब कि अभी तक आपने सुबह की चाय भी नहीं पी है।
0: तुमने कैसे जाना?
1: चेहरा बता रहा है आपका।
0: अच्छा तो तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो?
1: हमने तो आपको भी पढ़ लिया है, बस आप गाना बजाइए और आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ।
0: हाय हाय क्या चाल है यार।
1: कुछ कहा आपने?
0: चाय
1: वही तो बनाने जा रही हूँ।
0: जल्दी से चल हेतल बेटा गाना बजा। आहा।

0: एक गिलास पानी तो पिला दोगी।
1: अरे एक गिलास क्या, दो गिलास पिला देंगे साहब।
0: दो गिलास क्या, मैं तो तुम्हारे हाथ से पूरा जग पी जाऊं भोली।
1: ये लीजिए साहब। अरे साहब आराम आराम से पीजिए, नहीं तो फंदा लग जाएगा। लगता है बड़े दिनों के प्यासे हैं आप।
0: वाकई में तुम तो दिल की बात भी समझ जाती हो भोली।
1: अरे अरे मेरी तो चाय उबल जाएगी, मैं अभी एक मिनट में आई।
0: चाय उबलने की इतनी फिक्र है, लेकिन मैं जो उबल रहा हूँ उसका क्या। इधर स्वरा के आने का भी टाइम हो रहा है, क्या करूँ।
1: अरे साहब जो कुछ करना है बाद में करिएगा, पहले ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए।
0: ओहो थैंक यू थैंक यू। तुम्हारी चाय कहाँ है।
1: किचन में।
0: किचन में क्यों है, यहाँ आओ ना, साथ बैठकर चाय पीते हैं, आओ ना
1: साथ।

0: बाद। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ।
1: अब वक्त आ गया है चीयर्स करने का।
0: लीजिए, मैं आ गई अपनी चाय लेकर।
1: अरे अरे अरे अरे, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? मेरे साथ यहाँ ऊपर आके बैठो ना।
0: अब साहब, नौकरानी मालिक के साथ बैठकर चाय पिए कुछ ठीक नहीं लगता।
1: अरे ये क्या नौकर मालिक लगा रखा है, इंसान इंसान होता है, काम से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। आओ ना मेरे पास, यहाँ पर बैठो ना।
0: आपकी सोच कितनी अच्छी है साहब, वैसे कैसी लगी?
1: क्या
0: चाय?
1: तुम्हारी तरह बहुत मस्त है। अच्छा देखो भोली, स्वरा अभी ऑफिस से लौट कर आती होगी, उसके आने से पहले सारा घर और किचन साफ करके चमका दो, ताकि उसको लगे कि भोली से अच्छा कोई नौकर हो ही नहीं सकता।
0: अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए साहब, हम घर और उनकी तबीयत भी ऐसे साफ कर देंगे कि मुंह में उंगली दबाए देखती रहेंगी। अच्छा मैं तो चली।
1: कहाँ?
0: अरे आप ही ने तो कहा कि मेम साहब के आने से पहले सारे काम निपटा डालो।
1: अरे हाँ। उठ जा भाई, स्वरा जी के आने का टाइम हो गया, उनके स्वागत की तैयारी कर भाई, चल। भोली
2: जी साहब।
1: अरे बेडरूम से जरा वो फ्लावर पॉट तो उठा लाओ।
2: अभी लाई साहब।
0: ये लीजिए साहब।
1: इसे इस टेबल पर रखकर ये फूल इसमें लगा देता हूँ। आहा, अब बताओ ये कैसा लग रहा है?
0: अरे आप लगाएं और अच्छा ना लगे, ये भला कैसे हो सकता है।
1: अरे डोरबेल बजी, भोली तुम जल्दी से किचन में जाओ, स्वरा आ गई है, और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक यहाँ आना नहीं।
0: अच्छा साहब।
1: अरे आ रहा हूँ मैम साहब, आ रहा हूँ। ओहो वेलकम मैम, वेलकम।
3: अरे भाई इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में, घर तो बड़ा साफ सुथरा चमक रहा है।
1: जी यस योर हाइनेस।
3: ओहो तो ये सब तुमने किया या फिर नौकर?
1: जी आप यहाँ जरा आराम से सोफे पर बैठ जाइए, अपना बैग भी मुझे दे दीजिए मैडम।
3: संभाल के उसमें रसमलाई रखी है तुम्हारे लिए।
1: वाह वाह, सर्वेंट के आने की खुशी में मुंह मीठा होगा। खैर पहले आपके लिए गर्मा गर्म चाय आएगी, फिर पकौड़ी आएगी, आप चाय पीजिए और पकौड़ी खाइए, फिर मैं आपको सर्वेंट से मिलवाता हूँ। भोली
0: मैंने सुन लिया साहब, आप चिंता ना करो, बस 5 मिनट में सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा।
1: क्या बात है। अच्छा ये बताओ कैसा रहा आज का दिन?
3: बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें मिल जाए तो मेरा प्रमोशन पक्का।
1: अरे आप डील करें और कॉन्ट्रैक्ट आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता।
3: भाई बड़ी मक्खन पॉलिश कर रहे हो, क्या बात है।
1: अरे अगर बीवी के काम की तारीफ करना मक्खन पॉलिश है तो हाँ भाई, मैं तो कर रहा हूँ अपनी बीवी की मक्खन पॉलिश।
3: अच्छा ठीक है भाई, अगर पॉलिश हो गई हो तो प्लीज चाय भिजवा दो, बहुत तेज सर दर्द कर रहा है।
1: ओके ओके। भोली अरे चाय बन गई क्या, ले आओ।
0: हाँ साहब ला रही हूँ, बस 2 मिनट।
3: व्हाट, ये क्या, ये तो फीमेल की आवाज है।
1: जी हाँ ये हमारी सर्वेंट है, फीमेल ही है।
0: लीजिए साहब चाय और पकौड़ी।
3: नाम क्या है तुम्हारा?
0: साहब ने बताया नहीं क्या? भोली।
3: तो मैंने पूछ लिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या मैडम?
0: लेकिन नाम तो वही रहेगा ना, भोली। अच्छा साहब अपना जल्दी से बता दीजिए कि आप डिनर में क्या खाएंगे।
3: इन्होंने आज तक कभी कुछ बताया है जो आज बताएंगे?
1: हाँ लेकिन आज तो मैं ही बताऊंगा।
3: क्या कहा तुमने, आज तुम ही बताओगे और मैं कुछ ना बोलूं?
0: मेम साहब आप लोग आपस में तय कर लीजिए, मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ।
1: अरे भोली ये रसमलाई का डब्बा भी तो साथ लेती जाओ।
0: जी साहब।
1: अरे भाई अब इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। अच्छा सुन, पहले चाय पी लो और पकौड़ी खा लो, नहीं ठंडी हो जाएगी, और इसको खा के तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। प्लीज लो खाओ ना।
3: अच्छा ठीक।
1: ये हुई ना बात, मैं देख कर आता हूँ कि शाम के डिनर की तैयारी कहाँ तक पहुँची।
3: तुम क्यों जाओगे देखने?
1: अरे बाबा आज वो नई नई आई है, अभी पूरी चीज भी उसको समझ में नहीं आई होगी कि कौन सी चीज कहाँ रखी है।
3: और तुमको तो जैसे सब कुछ मालूम है।
1: मैं ढूंढ लूंगा ना, तुम पकौड़ी खाओ ना, इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो।
3: और 1 मिनट, आज तुम ऑफिस नहीं गए?
1: अरे भाई पहले ही ये बहुत लेट आई, मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत

0: हो गया था। और फिर एक अनजान शख्स को घर में अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है, थोड़ा सोचो तो।
1: ओहो, सोच तो मैं रही हूँ।
0: अरे यार, मेरा मतलब ये नहीं था यार। अच्छा, ये कप प्लेट किचन में रखकर अभी आता हूँ मैं।
1: अरे बुलाओ उसको।
0: ओहो, अरे भोली, जरा यहाँ आना।
2: आई साहब।
1: देखो तो जरा, क्या मोहब्बत से बुला रहे हैं।
0: अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम स्वरा?
2: जी साहब, कहिए।
0: अरे भाई, पहले मैं ऐसा करता हूँ कि तुम दोनों को मिलवा देता हूँ। भोली, ये है तुम्हारी मालकिन।
2: और आप हमारे मालिक।
1: तुम्हारे नहीं, घर के मालिक, समझी?
2: अरे मेम साहब, हमारा मतलब वही था।
1: एक बात सुन ले
2: मेम साहब, हमको ऐसी भाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, ऊंची आवाज तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। काम लेना है तो प्यार से लो।
1: अरे वाह, नौकरानी मुझे ही उपदेश देने लगी।
0: अरे स्वीट हार्ट, भोली ठीक ही तो कह रही है।
1: तुम चुप रहो जी, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं सब समझती हूँ।
0: भोली, तुम ऐसा करो, ये कप प्लेट है ना, इसको अंदर ले जाओ और खाने के लिए अभी बताता हूँ मैं।
2: देखिए साहब, जरा जल्दी बता दीजिए, मुझे देर हो रही है और मुझे दूसरे घरों में काम करने भी जाना है।
1: देखा कैसी कमर मटका के चली गई?
0: अरे कमर तो मटकाएगी ही, कमरा थोड़े ही मटकेगा।
1: तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं मोटी भी हूँ?
0: अरे भगवान, ये सब तुम्हें नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अब सुनो ना, भगवान के लिए अंदर जाओ, हाथ मुंह धो लो, भोली के हाथों का बढ़िया बढ़िया भोजन करके देखो वो कैसा बनाती है।
1: ठीक है, तो तुम ही बता दो आज उसे क्या क्या बनाना है।
0: नहीं नहीं, अब तो तुम बताओगी उसे।
1: नहीं नहीं, तुम बता दो।
0: नहीं तुम प्लीज।
1: अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे।
0: भोली। ओह भोली, अरे तुम्हारी मालकिन तुम्हें बुला रही है।
2: जी कहिए। अरे आप ऐसे खूर के क्या देख रही है मुझे?
1: अरे क्या खा रही है तू?
2: रसमलाई।
1: रसमलाई क्या मैं तेरे लिए लाई थी?
0: ओहो ओ, अरे अरे भाई स्वरा, अगर खा लिया तो क्या हुआ?
1: तुम चुप रहो जी।
2: देखिए मेम साहब, खाने पीने के बारे में हमको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ कह देती हूँ मैं।
1: तो क्या कर लेगी?
2: हम रोने लगेंगे।
1: तो तू हमें रोने की धमकी दे रही है?
2: हम धमकी वमकी नहीं दे रहे, हम सच में रोने लगेंगे।
0: अरे अरे अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे भोली भोली, चुप चुप हो जाओ, रो नहीं, रोते नहीं भोली, भोली।
1: और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इसे मना रहे हो?
0: अरे और क्या करूं, देखो ना वो रो जा रही है, देखो ना।
1: और तुम्हारी हरकतों से मुझे भी रोना आ रहा।
0: अरे अरे अरे, मेरी प्यारी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए और रसमलाई लेकर आऊंगा, चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। अरे ओफो, अरे बोली अब तुम फिर रोने लगी, अरे चुप हो जाओ। अच्छा सुनो, अच्छा मैं तुम्हारे लिए रबड़ी लेकर आऊंगा।
1: अब तो मुझे रबड़ी भी खिलाओगी?
0: अरे तो फिर क्या करूं?
1: बहुत हुआ, इस घर में अब वो ही रहेगी, अब मैं रहूंगी।
0: अरे क्या बकवास कर रही हो स्वरा, नौकरानी से अपने आप को कंपेयर कर रही हो?
2: क्या आपने मुझे नौकरानी कहा? तो अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने वाली।
1: तू क्या रुकेगी, मैं तुझे अभी निकालती हूँ, तू निकल, इसी वक्त निकल मेरे घर से।
2: हाँ हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन पहले मेरा पूरा हिसाब कर दो।
1: कितने हुए तेरे पैसे?
2: पूरे 500 रुपए हुए मेरे।
1: ये ले अपने 500 रुपए और निकल यहाँ से, और खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है, भाग यहाँ से।
2: अरे साहब ने तो कहा था कि जितना आप दे चुपचाप ले लेना, और मैं अलग से दे दिया करूंगा।
0: अरे अरे मरवाएगी क्या, मैंने ऐसा कब कहा था? अरे मेरी माँ, ये ले 500 रुपए मेरी तरफ से, और जा तलाक करवाएगी क्या?
2: आप भी आखिर औरों की तरह ही निकले।
0: What?
1: और लगाओ उसे अपने मुंह, क्या कमाल की बात है, काम वो शख्स समझा रहा है जिसे घर की ABCD भी नहीं आती। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? और हाँ, वो क्या कहना चाह रही थी?
0: देखो स्वरा, अब ज्यादा हो रहा है, तुम मुझ पर शक कर रही हो।
1: शक नहीं जनाब हेतल, मुझे पूरा भरोसा है, मैं जा रही हूँ सोने।
0: अरे ऐसे कैसे सोने जा रही हो? अरे खाना तो ऑर्डर कर दो, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं।
1: मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो ठूसो, और हाँ मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना।
0: अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कमाल है यार, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आना, आज सोफे पर सो बेटा। वाह रे भोली, दे गई तू हमें मीठी गोली।
1: हेतल हेतल।
0: अरे क्या है भाई?
1: डार्लिंग 7 बज चुके हैं।
0: अरे क्या, और यार रात तो देर हो जाएगी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं?
1: रात के लिए सॉरी बाबा।

0: इट्स ओके।
1: क्या हुआ?
0: अरे कुछ नहीं, बैक पेन हो गया है।
1: आई एम सॉरी अगेन डियर।
0: कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, तुम चाय के साथ टिफिन भी रेडी कर दो। सोचो ना, अगर सर्वेंट होती तो तुमको कुछ भी ना करना पड़ता है ना।
1: अरे तुम्हें क्या पता, नौकर का इंतजाम मैंने कर लिया है। ओहो, घड़ी 7:30 बजा रही है, अभी तक नहीं आया। मैंने तो उससे कहा था कि हर हाल में 7 बजे तक आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो ये हेतल मेरी खोपड़ी खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी लाज रखना। लगता है आ गया। दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जाओ। ये जीन्स पैंट वाला कौन आया?
2: एक्सक्यूज मी, मिस्टर हेतल यहीं रहते हैं क्या?
1: माफ कीजिएगा, आपको किससे मिलना है?
2: हेतल साहब से।
1: वो अभी वॉशरूम में हैं, कोई खास काम?
2: काम की ही तो बात करनी है।
1: मैं समझी नहीं।
2: दरअसल एजेंसी में आपने सर्वेंट की रिक्वायरमेंट नोट कराई थी।
1: हाँ हाँ, कहाँ है सर्वेंट?
2: बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है।
1: तुम घर का काम करोगे?
2: आपको कोई शक है? मैं फर्स्ट क्लास कुक भी हूँ, घर के सारे कामों के अलावा पर्सनल काम भी कर सकता हूँ।
1: नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि आपके पहनावे और बातचीत से लगा कि खैर छोड़ो, क्या नाम है तुम्हारा?
2: पुराने चौक का रहने वाला हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ, लोग प्यार से मुझे भोला के नाम से पुकारते हैं।
1: भोला?
2: क्यों, अच्छा नहीं लगा?
1: नहीं नहीं, अच्छा है। चलो घर देख लो पहले। ये लेफ्ट वाला कमरा हमारा बेडरूम, राइट हैंड साइड वाला हमारा दूसरा कमरा, उसके बगल में किचन, और ये हाँ जहाँ हम खड़े हैं ये ड्राइंग रूम। ये छोटा सा ही घर है हमारा।
2: घर छोटा बड़ा नहीं होता मैम साहब, वहाँ रहने वालों के दिल बड़े होने चाहिए। दिल?
1: बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो। तुम किचन में चलो, मैं अभी आती हूँ।
2: ओके।
1: भोला तुम क्या कर रहे हो?
2: जी हाँ, ये लीजिए मैम साहब, आपकी गर्मा गर्म चाय।
1: लेकिन तुमको तो किचन के बारे में कुछ
2: भी मालूम नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, यही ना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये दिक्कतें वहाँ आती हैं जहाँ सुघड़ गृहिणी का हाथ किचन में नहीं लगता है। यहाँ तो आप हैं, सब कुछ अपनी जगह पर, ढूंढने में मुश्किल ही नहीं हुई। अरे सब छोड़िए, आप तो बस गर्मा गर्म चाय पीजिए।
0: अरे स्वरा, चाय बन गई क्या?
1: यस माई डार्लिंग। भोला तुम जल्दी से ये चाय लेकर किचन में जाओ, और मैं जब बोलूं तो 2 कप चाय लेकर आना। मैं हेतल को तुम्हारा सरप्राइज देना चाहती हूँ।
2: ओके मैम साहब।
0: हाँ भाई, हाँ लाओ, चाय कहाँ है?
1: अरे भाई पहले आप आराम से बैठिए। ये रहा तुम्हारा अखबार, ये रहा तुम्हारा चश्मा, आराम से बैठकर पढ़ो हेतल।
0: क्या बात है, आज चांद पश्चिम से कैसे निकला है? और भाई मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों?
1: इसलिए कि अब कोई टेंशन नहीं है, नौकर जो आ गया है।
0: अच्छा कहाँ है वो?
1: किचन में। भोला चाय लेकर आओ।
0: अरे तुम्हें मेरे बचपन का नाम कैसे मालूम हुआ?
1: तुम्हारे बचपन का नाम? मजाक मत करो हेतल।
0: मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ स्वरा।
1: भाई भोला तो हमारे नौकर का नाम है।
0: ये सो कॉल्ड भोला तो हमेशा से तुम्हारा नौकर रहा है जाने मन।
1: तुम नहीं जी, ये जो नौकर अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, उसका नाम भोला है जनाब।
0: व्हाट?
1: जी हाँ, व्हाट नहीं, भोला इज आवर सर्वेंट नाउ। भोला साहब के लिए चाय लाई जाए।
3: ओके मेम साहब।
0: ओके मेम साहब।
2: लीजिए गर्मा गर्म चाय हाजिर है।
1: और भोला ये है हमारे हस्बैंड भोला
2: जी,
1: मेरा मतलब है हेतल। अभी अभी मुझे पता चला कि इनके बचपन का नाम भोला था। हाँ तो भोला
0: जी।
1: ओह सॉरी सॉरी, ये तो है हेतल और ये है
2: मैं हूँ इनका सर्वेंट।
0: अबे इनका नहीं, हमारा कहो, हमारा।
2: एक ही बात है सर, मैं पेड, आप अनपेड। लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए।
0: अच्छा तेरे रंग रंग देखकर मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो गया है।
2: तो पहले एक गिलास ठंडा पानी लीजिए।
1: भोला नाश्ता बनाकर जल्दी से एक टिफिन तैयार कर लो।
2: ओके मैम साहब, टिफिन में क्या बनाकर दूं?
1: पराठा सब्जी।
2: ठीक है, नाश्ते में ब्रेड बटर और टिफिन में पराठा आलू मटर की सब्जी।
0: स्वरा तुमने एक ही टिफिन तैयार करने को क्यों कहा इससे?
1: डियर आज मैं घर में रुककर भोला को सारा काम समझाना चाहती हूँ, और तुम अब फटाफट चाय पियो और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाओ।
0: रेडी तो हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी बातें सुनकर मेरे पेट में कुछ खलबली सी हो रही है, दोबारा फ्रेश होना पड़ेगा मुझे।
1: लो चाय पिए, बगैर ही चले गए। भोला ये दोबारा से गर्म कर दे भाई।
2: अरे अरे ये क्या कर रही है मैम साहब, मेरे रहते आपको किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।
1: भोला तुम इतना काम करोगे?
2: मैम साहब आपके और

0: काम के प्रति मेरी निष्ठा तो होनी ही चाहिए।
1: अरे खड़े क्यों हो भाई, बैठ जाओ।
0: जी मैं खड़ा ही ठीक हूँ, बैठ गया तो सब्जी पक रही है जल जाएगी। मैं साहब की चाय ले जा रहा हूँ, आप अपनी चाय खत्म कीजिए।
1: अरे यार इनके चक्कर में तो मैं चाय पीना ही भूल गई। वाह क्या बढ़िया चाय बनाई है।
2: चलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में,
3: चलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में।
0: मेम साहब चाय पीते पीते डांस मत कीजिए, गिर जाएंगी, दाग लग जाएगा।
1: तुम चिंता ना करो भोला, दाग आजकल आसानी से साफ हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़े हो?
0: BA पास हूँ।
1: तो सरकारी नौकरी की कोशिश नहीं की?
0: सरकारी नौकरी तो छोड़ी मेम साहब, कहीं प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिली।
1: किसी के घर में काम करना तुम्हें बुरा नहीं लगता?
0: देखिए मेम साहब कोई काम छोटा नहीं होता, आदमी जरूर छोटा होता है।
1: ठीक कहते हो भोला। कल से इतना टेंशन था, सर में दर्द हो रहा है।
0: मालिश भी अच्छी कर लेता हूँ, कहिए तो दबा दूँ?
1: कहते तो अच्छा नहीं लगता है पर बहुत मजबूरी है, बहुत तेज सर दर्द कर रहा है मेरा।
0: आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, 2 मिनट में आपका दर्द गायब।
4: अरे ये क्या हो रहा है?
0: मालिश चंपी।
4: अरे खबरदार जो मेरी बीवी को हाथ लगाया।
1: क्या कर रहे हो हितल, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है।
4: अरे तो डार्लिंग मुझसे कहा होता।
1: तुमसे आज तक जितनी बार तुमसे कहा है तुमने कभी मेरी चंपी की है?
4: लेकिन आज करूंगा, तू हट बे। ये लो, कैसा लग रहा है?
1: अरे यार आराम से सर दबाओ, तुम तो सर पे डंडा चला रहे हो।
0: साहब ऐसे नहीं, जरा प्यार से करिए ना।
4: तू मुझे मत समझा, समझे? स्वरा अब बताओ कैसा लग रहा है?
1: अब क्या बताऊं यार।
0: साहब आप जैसे कर रहे हैं इससे मेम साहब को आराम नहीं मिलेगा बल्कि दर्द बढ़ जाएगा।
4: तो फिर बोला बीच में।
1: ठीक ही तो कह रहा है।
4: अच्छा जी ठीक कह रहा है, ठीक है आओ तुम करके बताओ कैसे की जाती है मालिश।
0: मालिश ऐसी होनी चाहिए कि मालिश कराने वाले की आंखें सुकून से अपने आप बंद हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले उंगलियों से बालों के बिखराव को समेटना होता है, ऐसे ऐसे। कैसा लग रहा है मेम साहब?
1: बहुत अच्छा।
0: फिर उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे दबाना शुरू करिए। अब कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा।
0: देखा साहब, मेम साहब की आंखें अपने आप बंद हो गईं।
4: हाँ इसकी तो बंद है अबे, लेकिन मेरी खुली है। अब तुम ऐसा करो मेरे सिर की मालिश करके दिखाओ, चलो
0: अभी लीजिए।
1: भोला पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाओ।
0: अभी लाया मेम साहब।
1: हेतल तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे?
4: क्योंकि सिर दर्द तक तो चलो ठीक था, मेरे जाने के बाद कहीं बदन भी दर्द करने लगा तुम्हारा तो, और तुम कहीं वो भी ना दबवाने लगो।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो?
4: हाँ खोपड़ी सटक गई है मेरी, कह दिया ना ऑफिस नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा बस।
0: मेम साहब लीजिए पानी। और साहब आप ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? मैंने तो टिफिन भी तैयार कर दिया है।
4: चुप बे नौकर।
0: देखिए साहब मुझसे अबे तबे से बात मत कीजिए।
4: अच्छा नहीं तो क्या कर लेगा तू?
0: चुपचाप छोड़कर चला जाऊंगा।
4: तो तू अभी चला जाना, दरवाजा खुला है, देख उधर।
1: हेतल तुम्हें क्या हो गया है?
0: आप क्या कहती है मेम साहब?
4: अबे ये क्या कहेगी, नौकर तू मेरा या इनका है?
0: महाभारत में भगवान कृष्ण जब सो करके उठे थे तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा था, दुर्योधन को नहीं, इसलिए मैं इनका हूँ।
4: अच्छा तो अब मैं दुर्योधन और तू कृष्ण, चल निकल यहाँ से, हैं बाहर निकल।
1: भोला कहीं नहीं जाएगा।
4: अच्छा जाएगा?
1: नहीं जाएगा।
5: अरे अरे क्या कर रहे हैं इनके साथ, हटिए हटिए छोड़िए इन्हें।
4: अरे भोली तुम वापस आ गई?
1: तुम चुप रहो। भोली तुम वापस आ गई?
5: हाँ आ गई अपने खसम को लेने।
1: क्या ये तुम्हारा पति है भोली?
5: हाँ भोला मेरा पति है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं काम के लिए एजेंसी चली गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि उन लोगों ने भोला को यहाँ भेजा है। मैं समझ गई कि मेरे भोला बाबा का तुम लोग क्या हाल करोगे, तुम दोनों का कैरेक्टर खराब है।
1: ये क्या बदतमीजी है?
5: बदतमीजी नहीं है ये सच है, और मैं सच बोल रही हूँ, तेरा खसम मुझ पे डोरे डाल रहा था डोरे।
0: और ये मुझ पे, संभालो अपने आदमी को, चूड़ियां मैंने भी नहीं पहन रखी है। हाँ
1: तुम लोग फौरन यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊँ, प्लीज आउट फ्रॉम माय प्लेस।
5: हाँ हाँ जा रहे हैं, वैसे भी ऐसे छिछोरों के साथ हमें काम नहीं करना। चलो बोला।
4: अरे ऐसे कैसे चले जाओगे?
1: हेतल प्लीज जाने दो उन्हें।
4: लेकिन वो हम लोगों को कितना भला बुरा कहकर गए हैं।
1: हेतल गलती हमारी है।
4: क्या बात करती हो?
1: और शायद मेरी से

0: औरों को देखकर मुझे भी नौकर रखने का शौक हो गया था, जबकि इस घर में काम ही कितना होता है।
1: नहीं स्वरा, मुझे लगता है कि तुम ही खाली गलत नहीं हो, गलती मेरी भी है। मैं भी भूल गया था कि शादी से पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बजाय इसके मैंने भी वही गलती की जो समाज में अक्सर मर्द करते हैं। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे रोजमर्रा के काम में भी हाथ बटाऊंगा। आई एम सॉरी स्वरा, आई एम वेरी सॉरी।
0: पागल हो क्या, रुला के ही मानोगे?
1: तुम मनाऊंगा भी तो मैं।
0: अच्छा, अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे?
1: तुम्हारी कसम, बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर खाना मैं बनाऊंगी और बर्तन मैं माजूंगी,
1: और मैं झाड़ू पोछा लगाकर घर को कर दूंगा चमाचम।
0: फिर हमें नौकर की जरूरत ही क्या है, तुम हो ना मेरे मिस्टर नौकर।
1: और तुम होगी मेरी मिसेज नौकरानी।
0: यानी तुम मेरे मिस्टर भोला
1: और तुम मेरी मिसेज भोली।
0: अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो?
1: मुझे साथ ले लो जहाँ जा रहे हो।
0: तो चले किचन में।
1: बिल्कुल, रेडी फॉर मूव।

मिस्टर भोला एंड मिसेस भोली, अभी आप ये हास्य नाटक सुन रहे थे। आलेख विकास श्रीवास्तव का था और कलाकारों के नाम थे अनामिका श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, रोहित सिंह, अनुष्ठा मिश्रा। निर्देशन डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव का था। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शशिकांत पाठक का राग ताल चौताल में पखावज वादन।

Dagger,

छत्रपति जगतपति देवपति महान त्रिगड़ त्रिगड़ गले मुंड माल सुहे तहे चंद्र बाल सो डेमिक डेमिक डमरु भई दारुण दुख दूर करत शारद ही धरत जा गुण जन सब कर पति मृदंग राज भई धाकड़ तक धुमकड़ तक धाकड़ तक धुमकड़ तक धाकड़ तक।

तरा दा धान दा दा तरा जय दुर्ग दुर्ग ति नाश नी दल दल असुर दल दल मुर दल शम शम वन काटी मार पठारी डारत तनक में रह भुवन त्रिभुवन जयति जय जयति जय जय जयति जय सुर सकल निरभय गान गावत ताल दय दय मृदंगन टंग जन गण दड़ित नगद तनगद तनगद धागे तक दिन धागे तक दिन धागे तक दिन।

தெரிகிட்டு தக்கிட்டு தக்கரிகள்.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चौताल में पखावज वादन, कलाकार थे शशिकांत पाठक। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम

0: हाँ, पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है,
1: जी
0: कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है
1: जी
0: कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस, गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभ, मैं सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ, मैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारे जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमा, अदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, ऑफ कोर्स शुभमा आल्सो मेंशन्ड अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। नाउ हेल्थ इज वन थिंग व्हिच जस्ट कैन नॉट बी ignored, that is one, and of course the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of you know, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe

0: effect later. But already you can see from the PLFS survey, the periodic labor force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment, and that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubham. Diti, abhi Shubham ne self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं। तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक, लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है।
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब

0: 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।